आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। स्टूडियो की घड़ी इस वक्त सुबह के 7 बजे हैं। आज दिन गुरुवार है। शक संवत 1948 के भाद्र मास की 5वीं तिथि, तदनुसार 27 अगस्त 2026। अब हमारी सुबह की सभा आरंभ होती है। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो।

0: रूस के सुप्रसिद्ध साहित्यकार मैक्सिम गोर्की एक बार अमेरिका गए हुए थे। एक व्यक्ति उन्हें अमेरिका में उन जगहों को दिखा रहा था जो मनोरंजन के लिए विशेष रूप से अमेरिका ने बनाए थे। दिखाने वाला लगातार सोच रहा था कि गोर्की अवश्य बहुत प्रभावित होंगे। मनोरंजन के तमाम साधनों को दिखाने के बाद वो व्यक्ति उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करने लगा कि शायद गोर्की कुछ कहें। लेकिन ये क्या, गोर्की की आंखों में आंसू थे। उसने आश्चर्य से पूछा, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या आपको मनोरंजन के लिए बनाए गए ये स्थान पसंद नहीं आए? इस पर गोर्की ने कहा, जिन लोगों को जीने के लिए इतने मनोरंजन के साधनों की आवश्यकता है, निश्चित ही वो लोग भीतर से बहुत दुखी होंगे, भीतर से बिल्कुल खाली। स्वयं को उलझाए रखने के लिए इतनी व्यवस्था एक दुखी आदमी ही करता है। मुझे बहुत दुख है कि ये देश कितना दुखी है। जीवन सौरभ।
1: अभी आपने सुना जीवन सौरभ। आइए अब आपको बताते हैं आज की सभा में प्रसारित किए जाने वाले अन्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से ठीक बात सुनेगा कार्यक्रम अक्षनिधि सूक्त 5 और उसके बाद सुनिएगा भक्ति संगीत। रोजाना की तरह सुबह 8 बजे का समय हुआ कार्यक्रम वतन के राग का। गणेश श्री कृष्ण खापड़े जी की जयंती पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वर होगा सुनीता सिंह का। 8:30 ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 8:30 पर। प्रकृति के लिए रक्षा सूत्र रक्षा बंधन पर विशेष कार्यक्रम में स्वरों का परिकल्पक और मनीषा चतुर्वेदी का। हमारी सेना हमारा गर्व ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 9:00 भारतीय सशस्त्र सेनाएं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भाभा से पूर्वाखली की चर्चा इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे। हमारा विशेष कार्यक्रम कविता कृष्णमूर्ति के कार्यक्रम की झलकियां आपको सुनवाएंगे सुबह 9:30 पर हमारे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की फराज फैयाज ने। सुबह 10:00 का समय होगा कार्यक्रम देश के संस्थान का। इसमें आज मिश्र धातु निगम लिमिटेड पर आपको कार्यक्रम सुनवाएंगे। स्वर होगा कार्यक्रम में दीपक नेमा और भगवती सक्सेना का।

सुबह 11 बजे सुनिए परिक्रमा। और युग प्रवर्तक कार्यक्रम सुनिए सुबह 11:30 पर।

तो अब से लेकर दोपहर 12 बजे तक बने रहिए मेरे यानी रत्नेश के साथ और आनंद लीजिए विभिन्न कार्यक्रमों का। और आइए अब सुनते हैं अक्षय निधि एक अंतराल के बाद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के पांचवे सूक्त से वाचन। ऋषि हैं सोमाहूति भार्गव, देवता है अग्नि और छंद है अनुष्टुप।
2: होता जनिष्ट चेतनः पिता पितृभ्य ऊतये प्रयक्षञ्जेन्यं वसु शकेम वाजिनो यमम्। शरीर में चेतना उत्पन्न करने वाले ये होता एवं पिता रूप अग्निदेव पितरों की रक्षा के लिए उत्पन्न हुए। ये हमें बलशाली, पूजनीय, रक्षा साधन से संपन्न तथा विजय दिलाने योग्य, धन प्रदान करने में समर्थ हों। आ यस्मिन् सप्त रश्मयस्तता यज्ञस्य नेतरी मनुष्वद्दैव्यमष्टम् पोता विश्वम् तदिन्वति। यज्ञ के नायक रूप अग्निदेव में सात रश्मियां व्याप्त हैं। पवित्र बनाने वाले वे अग्निदेव मनुष्य की तरह यज्ञ के आठवें स्थान में पूर्ण रूप से व्याप्त होते हैं। दधन्वे वा यदि मनु वोचद् ब्रह्माणि वेरुतत् परिविश्वानि काव्या नेमिश्चक्रमिवा भवत्। अग्निदेव को लक्ष्य करके इस यज्ञ में मंत्रोच्चारण के साथ जो हविष्यान्न समर्पित किया जाता है उसे ये अग्निदेव जानते हैं। जिस तरह धुरी के चारों ओर चक्र घूमते हैं उसी तरह सभी स्तुतियां इन अग्निदेव के चारों ओर घूमती हैं। साकम ही शुचिना शुचिहि प्रशास्ता क्रतुनाजनि विद्वाम अस्य व्रता ध्रुवा वया इवानुरोहते। उत्तम प्रकार से शासन करने वाले ये अग्निदेव शुद्ध करने वाले पवित्र कर्मों के साथ ही उत्पन्न हुए। जो अग्निदेव के इस सनातन स्वरूप को जानता है वह वृक्ष की शाखाओं के समान बराबर वृद्धि को प्राप्त होता है और क्रम से ऊंचे ही ऊंचे चढ़ता है। ता अस्य वर्णमायुवो नेष्टुः सचन्त धेनवः कुवित्ति सृभ्य आवरम स्वसारो या इदम ययुः। नेता रूप अग्निदेव के तीनों रूपों को उत्तम प्रकार से तेजस्वी बनाने वाली, बहनों के समान परस्पर प्रेम करने वाली अंगुलियां प्रज्वलित करती हैं। ये अग्निदेव मनुष्य को दुधारू गौ के समान सुखी बनाते हैं। यदि मातुरूप स्वसा घृतम भरन्त्यस्थित तासा मध्वर्युरागतौ यवो वृष्टिव मोदते। जब माता रूपी वेदी के पास बहन रूपी उंगलियां घृत भर कर जाती हैं तब अध्वर्यु अग्निदेव के समीप उंगलियों के आने पर उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जैसे वर्षा के जल को पाकर अन्न। स्वः स्वाय धायसे कृणुता मृत्विगृत्विजं स्तोमं यज्ञं चादरं वनेमा ररिमा वयम्। हे अग्निदेव, श्रेष्ठ कार्यों के निमित्त सामर्थ्य प्रदान करने हेतु ऋत्विक के समान हैं। हम उन ऋत्विक रूप अग्निदेव के निमित्त स्तोत्रों का उच्चारण करते हुए हविष्यान्न समर्पित करते हुए यज्ञ करें। यथा विद्वाम अरंकरद्विषेभ्यो यजतेभ्यः अयमग्ने त्वे अपि यम यज्ञम चक्रिमा वयम्। हे अग्निदेव, जिस प्रकार ज्ञानी जन भली भांति सभी देवों को संतुष्टि प्रदान करते हैं, उसी प्रकार हमारे द्वारा जो भी यज्ञीय कार्य संपन्न हो वह आपकी तृप्ति के लिए हो।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के पांचवे सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सब के मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं।

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही हैं।

मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। उदुम्बरावती, उमरावती और बाद में अमरावती, ये एक ही शहर के नाम हैं जो समय काल में बदल गए। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में नागपुर के पास दूसरा महत्वपूर्ण नगर है अमरावती। 18वीं शताब्दी में बसा ये नगर अकाल के कारण उजड़ा भी। लोग मालवा और गुजरात की ओर पलायन कर गए, फिर लौट भी आए। सन 1860 में ये नगर व्यवस्थित रूप से अंग्रेजों ने बसाया था। रेल आई और आज ये एक प्रसिद्ध नगर है, व्यापारिक केंद्र है। सन 1897 में अमरावती में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 13वां अधिवेशन आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष थे चट्टूर संकरन नायर। इस समय नगर के राव बहादुर नरसिंह मुधोलकर, गणेश श्रीकृष्ण खापरडे और मोरोपंत विश्वनाथ जोशी यहां स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय थे। अमरावती नगर अपने प्राचीन मंदिरों और मठों के अलावा हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है। पूरे भारत में ये सबसे बड़ी व्यायामशाला है। शहीद आजम भगत सिंह भी अपनी फरारी के दिनों में यहां 3 दिन आकर रुके थे। अमरावती के प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी गणेश श्रीकृष्ण खापरडे का जन्म 27 अगस्त सन 1854 को पास के ही इंगरौली गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा के तहत उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और बाद में अंग्रेजी स्कूल में भर्ती हो गए। महाराष्ट्र के सामाजिक जीवन में भक्त संतों का बहुत प्रभाव है। गणेश श्रीकृष्ण खापरडे भी शेगांव के संत गजानन महाराज के अनन्य भक्त थे। लोकमान्य तिलक का एक भाषण सुनने के बाद संत गजानन महाराज ने उनसे कहा था कि आपको अंग्रेजों से कठोर सजा मिलेगी, और बाद में ऐसा हुआ भी। गणेश खापरडे का अमरावती निवास संतों के साथ साथ स्वाधीनता सेनानियों का मिलन स्थल भी था। यहां नियमित बैठकों के साथ स्वराज की प्राप्ति के उपायों पर चर्चाएं हुआ करती थीं। आध्यात्मिक ऊर्जा की तलाश में खापरडे जी बड़े बड़े संतों से मिल रहे थे। एक ओर स्वाधीनता आंदोलन की गतिविधियां और दूसरी ओर जीवन दर्शन की खोज, इन दोनों के बीच समन्वय और संतुलन ही उनकी दिनचर्या का अंग था। शिरडी के साई बाबा के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा थी। शिरडी के साठेवाड़े में रहकर उन्होंने साई बाबा के जीवन को समझा। नियमित पठन पाठन में रामायण, एकनाथ भागवत, योग वशिष्ठ आदि का अध्ययन और चर्चा, और फिर शिरडी के साई बाबा का सानिध्य, इन सारे अनुभवों को उन्होंने शिरडी की डायरी नामक 141 पृष्ठों की पुस्तक में संकलित किया है। साई बाबा के निष्प्रिय और विरक्त जीवन की एक झांकी है इस डायरी में।

खापरडे जी की गृहस्थी बहुत बड़ी थी। उनके साधन संपन्न परिवार में लगभग 50 सदस्य थे। तीन परिवारों को उन्होंने शरण दे रखी थी तथा 12 से 15 विद्यार्थी पढ़ने के लिए उनके घर पर रहते थे। श्रीमती लक्ष्मीबाई एक सुघड़ पत्नी के रूप में सारा कार्यभार संभालती थीं। खापरडे जी वकालत के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते थे। लोकमान्य तिलक से भेंट होने के बाद तो वे उनके अनन्य भक्त और साथी हो गए थे। लोकमान्य तिलक ने सन 1906 में कलकत्ता में शिवाजी जयंती का आयोजन किया था। खापरडे जी उनके साथ कलकत्ता यात्रा में गए और पूरे आयोजन को सफल बनाने में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। प्रकटतः खापरडे जी उस समय तक कांग्रेस के चरमपंथी गुट से जुड़ चुके थे, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के हाथ में था। खापरडे जी व्याख्यान कला में बहुत कुशल थे। मराठी, गुजराती, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं पर उनका असाधारण अधिकार था। इन भाषाओं के विशद साहित्य के अध्ययन से उन्हें अपनी भाषण कला निखारने में बहुत मदद मिली थी। लोग उन्हें रुचि और आनंद के साथ सुनते थे। सामाजिक सुधारों में भी उनकी बहुत रुचि थी। उन्हें अपना बचपन याद आता था, जिसमें गरीबी और अभाव के बीच उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की थी। उनके पिता पोस्टमैन की नौकरी करते थे। अंग्रेज अधिकारियों कर्मचारियों से निरंतर मेलजोल के कारण उनकी अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ हो गई थी। पिता का यही गुण गणेश श्रीकृष्ण खापरडे को विरासत में मिला। कॉलेज में उन्हें प्रसिद्ध कवि विलियम वर्ड्सवर्थ के पोते प्रोफेसर वर्ड्सवर्थ से अंग्रेजी भाषा पढ़ने का मौका मिला। संस्कृत में उनकी प्रवीणता की तारीफ एक बार स्वयं स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। शिक्षा और ज्ञान दान के महत्व को समझकर उन्होंने कई निर्धन बच्चों को अमरावती में अपने घर पर रखकर उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की थी। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में पुणे और उसके आसपास प्लेग के प्रसार को रोकने में भी उन्होंने तन मन धन से योगदान दिया था। वकालत से उन्होंने इतना धन कमाया था कि लोग उन्हें बरार के नवाब के रूप में जानने लगे। उनका उदार स्वभाव और सबकी मदद करने की इच्छा ने धीरे धीरे उनकी आमदनी पर भी प्रभाव डाला। स्वाधीनता आंदोलन में सक्रियता की वजह से वकालत पर भी असर पड़ने लगा। लोकमान्य तिलक पर जब देशद्रोह का मुकदमा चला तो उन्होंने उनका केस लड़ने के लिए जनता से धन संग्रह किया। स्वयं इसमें बड़ा योगदान दिया, पर तमाम बहस और प्रयत्नों के बावजूद तिलक जी को 6 वर्ष के लिए मांडले जेल बर्मा में भेज दिया गया। सन 1911 में राजनीतिक आंदोलन दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार दमन की नीति अपना रही थी। तिलक जी के साथ उनकी सक्रियता को देखकर चरमपंथी के रूप में खापरडे जी भी खुफिया पुलिस के निशाने पर थे। उनकी सारी गतिविधियों पर नजर थी, लेकिन खापरडे जी इन सब से बेखबर, बेखौफ स्वाधीनता और स्वदेशी के प्रचार में जुटे रहे।

लोकमान्य तिलक के जेल जाने के बाद खापरडे जी इतने व्यथित हुए कि उन्होंने इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल में तिलक जी की सजा के खिलाफ मुकदमा लड़ा। लंदन में गोपाल कृष्ण गोखले के इंडिया हाउस में वो 2 वर्ष से भी अधिक समय तक रहे और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपील की। स्वतंत्र विचारकों और लेखकों के बीच भारत की स्वाधीनता के पक्ष में प्रखर वक्तव्य दिए उन्होंने। उनके भाषण बड़े रोचक हुआ करते थे और वे इंग्लैंड में भारत के मार्क ट्वेन के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। 2 वर्ष से भी अधिक समय तक केस लड़ने के बावजूद तिलक जी की रिहाई का फैसला नहीं हो सका। खापरडे जी लौटकर मांडले जेल आए और तिलक जी से मिलकर फिर वापस भारत लौटे। इस दौरान एक रोचक प्रसंग भी हुआ। दिसंबर सन 1911 में खापरडे जी के आंदोलन की तहकीकात करने एक ब्रिटिश जासूस शेट्टी को नाटेकर नाम से स्वामी बनाकर अमरावती भेजा गया। परंपरा अनुसार स्वामी जी खापरडे जी के परिवार के आतिथ्य में रहे। खापरडे जी रोज डायरी लिखा करते थे। गुप्तचर ने इन डायरियों को भी देखा। डायरी में शिरडी के साई बाबा का जिक्र पाकर जासूस शिरडी गए और वहां साई बाबा और अन्य लोगों से खापरडे जी के बारे में पूछताछ की। खापरडे जी की डायरियां ब्रिटिश सरकार के पास पहुंची, पर उनमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। जासूस नाटेकर को खापरडे जी के पक्ष में अपनी रिपोर्ट देना पड़ी। खापरडे जी का मानना था कि सारा घटनाक्रम शिरडी के साई बाबा की इच्छानुसार स्वयं ही संचालित हुआ और वो सारे अभियोजनों से बच गए। तिलक जी की रिहाई के बाद 19 मई सन 1917 को खापरडे जी तिलक जी को साथ लेकर शिरडी आए। साई बाबा से भारत की स्वाधीनता के बारे में तिलक जी ने गुप्त रूप से विचार विमर्श भी किया। लोग ऐसा कहते हैं कि इस मुलाकात के बाद तिलक जी का रुख उग्र गतिविधियों की अपेक्षा अहिंसक आंदोलन के पक्ष में अधिक झुकने लगा था। इतना ही नहीं, लोकमान्य तिलक के शिरडी से जाने के बाद अहमदनगर के जिला कलेक्टर ने शिरडी के साई बाबा की गतिविधियों और उनसे मुलाकात करने वालों पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए गोपनीय तरीके से एक सीआईडी अधिकारी को शिरडी भेजा था। सन 1916 में तिलक जी द्वारा घोषित इंडियन होम रूल लीग में गणेश श्रीकृष्ण खापरडे उसके संस्थापक सदस्य बने। वे संवैधानिक सुधारों पर वासुका जोशी के साथ सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। मई सन 1919 और 1920 में खापरडे जी संयुक्त संसदीय समिति में होम रूल लीग के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड की यात्रा पर गए। सन 1920 से 25 तक वे केंद्रीय विधानसभा के सदस्य रहे, लेकिन सन 1920 में लोकमान्य तिलक के असामयिक निधन से खापरडे जी का मन भी टूट सा गया और उनके राजनीतिक जीवन पर कुहासा सा छा गया। 1 जुलाई सन 1938 को स्वाधीन भारत का स्वप्न आंखों में लिए बरार प्रांत का ये स्वाधीनता सेनानी हमसे विदा हो गया। शत शत नमन ऐसे महान देशभक्त को।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल।
1: ये वतन का राग।
2: ये रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज देश का चैनल देश के लिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम वतन का राग।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मिर्जा एहतेशामुद्दीन, वह मुगल दूत जिसे लंदन एक अजूबा समझ बैठा। 1766 में मिर्जा एहतेशामुद्दीन नामक एक व्यक्ति अपने साथ एक गुप्त विश्वासघात और एक पैनी पारखी नजर लेकर लंदन की सड़कों पर उतरा। वह मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का दूत था, जिसे राजा जॉर्ज तृतीय को सैन्य सहायता के लिए एक हताश भरी अर्जी देने के लिए भेजा गया था। लेकिन वह इस बात से अनजान था कि शक्तिशाली रॉबर्ट क्लाइव ने पहले ही उसका पत्र रोक लिया था, जिससे उसका उच्च स्तरीय कूटनीतिक मिशन एक अकेले और अनचाहे अवकाश में बदल गया। 18वीं सदी के लंदन वासियों के लिए एहतेशामुद्दीन एक चलता फिरता अजूबा थे। वे गरीब भारतीय नाविकों को देखने के अभ्यस्त थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी मुंशी पगड़ी और शॉल पहने एक परिष्कृत भारतीय विद्वान को नहीं देखा था। लोग उन्हें एक नजर देखने के लिए खिड़कियों से बाहर गर्दनें निकालते थे। बच्चे डर के मारे सुन्न हो जाते थे और चीखते हुए अपने घरों में भाग जाते थे। देखो, एक काला आदमी, या यहां तक कि उन्हें काला शैतान भी कहते थे। फिर भी वह डर क्षणभंगुर था। कुछ ही महीनों में वह शैतान एक हस्ती बन गया। एहतेशामुद्दीन बाजारों में किसी अछूत की तरह नहीं, बल्कि एक सम्मानित अतिथि की तरह घूमते थे, जहां वह लंदन के यांत्रिक चमत्कारों को देखकर हैरान थे। वहीं उन्हें एक चरम विडंबना का एहसास हुआ। वह यूरोप के दृश्यों का आनंद लेने आए थे, लेकिन उन्होंने पाया कि वे खुद वहां के सबसे बड़े दृश्य यानी तमाशा बन गए थे। उन्होंने अंततः इंग्लैंड का पहला भारतीय यात्रा वृतांत लिखा, जिससे यह सिद्ध हुआ कि भले ही लंदन वासियों ने उन्हें एक अजीब नमूने के रूप में देखा, लेकिन वे वास्तव में उस व्यक्ति को देख रहे थे जो अंततः भारतीय इतिहास में अंग्रेजों के बारे में लिखेगा।
2: नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रजा मुराद और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है रक्षाबंधन। प्रकृति के लिए भी एक रक्षा सूत्र जरूरी है।
4: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
3: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। सावन का महीना है, बाहर बारिश की रिमझिम है, पेड़ धुले धुले से लग रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है। सच कहूं तो सावन आते ही मन भी जैसे हरा हरा हो जाता है। भाग दौड़ के बीच भी मन करता है कि थोड़ी देर रुक कर बारिश को देखें, पेड़ों के पास बैठें और इस मौसम को महसूस करें। तो बस आज स्टूडियो में मैंने सोचा क्यों ना हम सावन के इस बहुत ही सुंदर से रंग को और सावन में आने वाले एक और भी सुंदर त्योहार को आप सब बच्चों के साथ मनाएं। तो बच्चों, रक्षाबंधन का तो बहुत सारे बच्चों को इंतज़ार रहता ही है, और जब ये त्यौहार आने वाला है और हम इसे मना रहे हैं, तब ये ज़रूरी है कि हम कुछ कुछ बातें और सोचें। और आपको ये भी पता है कि जब भी बाल सभा होती है, मैं आपके लिए कुछ ऐसा, कहते हैं ना कि फूड फॉर थॉट, कुछ ना कुछ ऐसा फूड ज़रूर तैयार करती हूँ जो आपके दिमाग के लिए हो, विचारों के लिए हो, क्योंकि बच्चों सोचना बहुत ज़रूरी है। सोचने से दिमाग चलता है, और जब दिमाग चलता है तो एक वो गाना था ना एक फिल्म में, सोचो सोचो क्या ये पेड़ है, तो वही वाली बात है कि हम ज़रा चीज़ों को थोड़ा अलग तरह से सोचें तो बच्चों हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। तो आज हम लोग जो सोचने वाले हैं वो यही कि क्या रक्षाबंधन हम जैसे मनाते हैं उसमें हम कुछ थोड़ा सा, बहुत ज़रा सा ट्विस्ट दे सकते हैं क्या, क्योंकि बहनें तो इंतज़ार कर रही हैं भाई को राखी बांधने के लिए और उससे कोई सुंदर सी गिफ्ट लेने के लिए। लेकिन हम आपको ऐसे रक्षाबंधन की बात बताने वाले हैं बच्चों, जो आपको गिफ्ट में हो सकता है उस समय कुछ ना दे, लेकिन जीवन भर बहुत कुछ देता रहेगा। तो तैयार हो जाइए, सबसे पहले हम आपको एक चीज सुनाने वाले हैं जो मुझे एक बच्चे ने लिखकर भेजी थी। उसने लिखकर भेजा था कि रिमझिम रिमझिम बरसे पानी, हरियाली की आई कहानी, पेड़ हंसे और धरती मुस्काए, सावन सबके मन को भाए। ये बच्ची है मेदिनी और वो आ जाने वाली थी। उसने मुझे ये छोटी सी कविता लिख के भेजी, लेकिन वो क्या हुआ ना, सावन में भीग गई, और भीग गई तो तबीयत खराब हो गई बच्चों। तो बस मैंने कहा जो तुमने छोटी छोटी सी कविताएं लिखी हैं वो मुझे भेजो, मैं आज बच्चों को सुनाऊंगी। अब क्या होता है बच्चों कि हम बाकी दिनों में कितनी भी चीज़ों में उलझे रहें, स्कूल, पढ़ाई, मोबाइल, टीवी, घर का काम, लेकिन बारिश आते ही हम और आप खिड़की के बाहर झांकते ज़रूर हैं, पेड़ों को देखते ज़रूर हैं, बारिश की आवाज़ सुनते ज़रूर हैं, मिट्टी की खुशबू को महसूस करते हैं। यानी हमें प्रकृति थोड़ा रुकना सिखाती है ना? और इसी को बच्चों माइंडफुल लिविंग कहा जाता है। यानी हम जिस पल में जी रहे हैं उसे हमें ध्यान से जीना है, और प्रकृति इसके लिए बहुत अच्छी जगह है। कभी आप लोग पेड़ों के नीचे बैठे हैं, अच्छा लगता है ना, पत्तियां हिलती हैं, कभी कभी चुपचाप बैठ जाते हैं बच्चे तो भी ऊपर से पत्तियां गिर रही होती हैं, और कभी कभी हवा चलती है तो बच्चों को और मज़ा आ जाता है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, जो हमारे मन को बहुत सुकून देती हैं, जैसे

0: चिंता नहीं कर रहे थे कि उनके कपड़े गंदे हो रहे हैं। बस यही बचपना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए आज जो बात मैं करने वाली हूँ आपसे रक्षाबंधन की, वो ये है कि बच्चों, रक्षाबंधन पे हम भाई को राखी बांधते हैं, लेकिन इस बार मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन के दिन या फिर कभी भी आपको जब लगे, तब एक रक्षा सूत्र किसी पेड़ को, किसी पौधे को बांध कर देखिए। इसलिए क्योंकि वो आपका प्रकृति से एक अलग तरह का रिश्ता बनाएगा बच्चों। क्योंकि रक्षा सूत्र, अगर हम रक्षा के लिए कहें तो पेड़ और प्रकृति भी तो कितनी चीजों से हमारी रक्षा करती है। ये पेड़ हमें सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं बच्चों, और उससे बड़ा क्या है बताइए। और जब हम उनको रक्षा सूत्र बांधेंगे तब हमारा एक रिश्ता कायम होगा पेड़ के साथ। कुछ बच्चे तो पौधों में पानी देते हैं और ध्यान रखते हैं कि कोई फूल ना तोड़े, कोई फल ना तोड़े, कोई पत्थर ना मारे पेड़ पर, ये सब ध्यान रखते हैं। लेकिन कुछ बच्चे शैतानी करते हैं, अगर आम लगा हुआ है तो फट से कंकड़ मार देंगे और आम तोड़ लेंगे। लेकिन आपको ये नहीं करना है। हाँ, तो इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना है, पेड़ को एक रक्षा सूत्र बांधना है, और हो सके तो कुछ और बच्चों को भी ले जाइए अपने साथ। जब आप ढेर सारे बच्चे लेकर पेड़ के पास जाएंगे, उसको तिलक करेंगे ऐसे सांकेतिक रूप से, और रक्षा सूत्र बांधेंगे, और कॉलोनी और मोहल्ले के बच्चों को जब आप ये बताएंगे कि इस बार रक्षाबंधन हम प्रकृति के साथ भी मनाएंगे, है ना, तो फिर आप देखिएगा कि आपका उस पेड़ के साथ कितना गहरा नाता हो जाएगा, उसके प्रति आपकी एक जिम्मेदारी बन जाएगी। अब एक बहुत सुंदर सी बात है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जन्म देने वाली माँ और हमें पालने पोषण करने वाली मातृभूमि, दोनों का स्थान स्वर्ग के सुखों से भी ऊपर और महान होता है। तो बच्चों, इस धरती के लिए, इस जन्मभूमि के लिए अगर हम बच्चे कुछ सबसे अच्छा कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं अपनी प्रकृति की रक्षा और सेवा। ऐसे ही एक और गतिविधि मैंने देखी कि कुछ लोग नर्मदा नदी के किनारे जाते हैं, कलश में जल भरते हैं और जल पर रक्षा सूत्र बांधते हैं। और बच्चों, यही देखने के बाद आज मैंने आपसे ये बात कही है। क्योंकि क्या होता है ना बच्चों, जब वो रक्षा सूत्र बांधते हैं तो वो एक खुद से संकल्प भी लेते हैं कि अब से हम जल को बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेंगे। नर्मदा नदी आपको पता है हमारे मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी है, सालों से, लाखों वर्षों से ये नदी बह रही है बच्चों। और खास बात यह है बच्चों कि इस नदी के पास कोई ग्लेशियर से पानी नहीं आता। जो ये जंगल, जो ये बड़े बड़े पेड़, जो बहुत सारे जंगल मिलकर जो पानी को बचाते हैं, अपनी जड़ों में जो पानी को सोखते हैं, वो पानी धीरे धीरे रिस कर इस नदी में आता है और फिर ये जाने कितने लोगों को जीवन देती हुई बहती है। तो कितनी बड़ी भूमिका है ना पेड़ों की। तो इस बार आप याद रखिए कि आपको पेड़ों के साथ, जल के साथ और प्रकृति प्रदत्त हर चीज के साथ रक्षा सूत्र का एक बंधन मन ही मन जरूर बांधना है, ताकि आप प्रकृति की सेवा करने का एक संकल्प अपने भीतर जरूर लें। और जो बच्चे ऐसा करेंगे वो मुझे बाल सभा में बाद में भी बता सकते हैं। आप लोगों को तो मैं मिलती ही रहती हूँ, कभी आपके स्कूल से निकलते वक्त, कभी आपके कॉलोनी, कभी आपके मोहल्ले, बहुत सारी जगह आप मुझसे मिल सकते हैं। और मुझसे ही क्या, आप अपनी माँ को बता सकते हैं, पिताजी को बता सकते हैं कि हमने इस बार रक्षाबंधन पर प्रकृति की जितनी भी संसाधन है, चाहे वो जल है, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो पौधे हैं, किसी ना किसी को रक्षा सूत्र बांधिए और खुद से प्रॉमिस कीजिए कि अब मैं जल को व्यर्थ नहीं बहाऊंगा, या नल खुला देखूंगा तो बंद कर दूंगा, और पेड़ों के साथ भी ये वचन निभाऊंगा कि मैं उसकी रक्षा करूंगा या रक्षा करूंगी। कुछ बच्चे मुझसे बता रहे थे कि हम पेड़ों को पानी रोज देते हैं, लेकिन मैडम क्या होता है ना, कुछ बच्चे आकर वहाँ बहुत कचरा कर देते हैं, घर का सारा कचरा लाकर पेड़ के पास फेंक देते हैं। तो मैंने बोला ये चीज कि बच्चों सब लोग मिल जाओ और एक छोटा सा क्लब बना लो, कॉलोनी का, मोहल्ले का। वो क्या होगा, आपका किड्स क्लब हो जाएगा, वो आपका बच्चों का क्लब हो जाएगा। और उसमें यही सब शिकायतें आए, आप लोग कहानियों की किताबें पढ़ो और उन्हीं कहानियों को फिर आप डिस्कस करो। कम से कम सप्ताह में एक बार तो मिलो सारे लोग मिलकर। फिर अगर कोई बच्चा कंकड़ पत्थर फेंक रहा है पेड़ों के पास, या पेड़ों के पास अपने घर का कचरा लाकर फेंक रहा है, तो उस आपकी जो समिति या क्लब बनाओगे बच्चों का, उसमें उन चीजों को डिस्कस करो। फिर आप में धीरे धीरे सिर्फ ये डिस्कशन ही नहीं होगा, आप में धीरे धीरे लीडरशिप आएगी। आप धीरे धीरे अपनी बातों को ओन करना शुरू करोगे, आप में गंभीरता आएगी, आप चर्चा करोगे उन बातों की। और बच्चों, वो कॉन्फिडेंस अलग होता है जब आप कोई निर्णय लेते हो, जब आप सबके साथ बैठते हो, कुछ अच्छी बातें करते हो, खुद से प्रॉमिसेस करते हो, उन्हें निभाते हो, तो बड़ा मजा आता है बच्चों। तो क्या मैं ये उम्मीद करूं कि एक बच्चों का क्लब जल्दी से बनने वाला है और फिर मुझे आप लोग बताने वाले हो? एक कहानी सुना दूं इसी बात पर आप लोगों को, एक ईमानदार बच्चे की कहानी सुनाती हूँ, ईमानदारी का फल। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। माता पिता की इकलौती संतान, बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके माता पिता ने हमेशा अच्छाई और सच्चाई का पाठ पढ़ाया था। एक दिन रामू स्कूल से घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बटुआ पड़ा हुआ मिला। बटुआ समझते हो, जो हाथ में लोग लेकर चलते हैं ना, बटुआ कपड़े का भी बनता है और उसमें वो पैसे रखे रहते हैं, मतलब पर्स समझ लीजिए आप एक तरह से। तो जैसे ही रामू ने बटुए को देखा, उसने बटुए को उठाया, उसने क्या देखा कि उसमें तो बहुत सारे पैसे थे। रामू ने सोचा, ये पैसे तो किसी के बहुत काम आ सकते हैं, मुझे इसे उसके मालिक तक पहुंचाना ही है। उसने बटुए में रखे पते को देखा और उसी दिशा में चल पड़ा। वो पता गांव के एक धनी व्यापारी का था। रामू ने उनके घर जाकर दरवाजा खटखटाया। व्यापारी ने दरवाजा खोला और रामू को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। रामू ने विनम्रता से बटुआ उन्हें वापस कर दिया। व्यापारी ने बटुआ खोलकर देखा और पाया कि उसमें सभी पैसे बहुत सुरक्षित थे। वो रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। व्यापारी ने रामू से पूछा, तुम्हें पता था कि इस बटुए में इतने सारे पैसे हैं, फिर भी तुमने इसे वापस कर दिया, तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? रामू ने जवाब दिया, सर, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। ये पैसा मेरा नहीं है, इसलिए मैं इसे आप तक वापस लाया हूँ। व्यापारी रामू की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे इनाम के स्वरूप कुछ पैसे दे दिए। उन्होंने रामू के माता पिता से भी मुलाकात की और उनकी परवरिश की प्रशंसा की। तब रामू के पिता ने कहा कि मुझे इसे आगे की पढ़ाई करवाने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब उस व्यापारी ने कहा कि जब आप इतनी अच्छी परवरिश कर सकते हैं, तो इतनी मदद तो मैं आपकी कर ही सकता हूँ कि आपसे रामू की पढ़ाई लिखाई सब का खर्च मैं उठाऊंगा। फिर क्या था, उस व्यापारी ने रामू को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया और देखते ही देखते रामू ने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की और एक दिन बड़ा होकर वो एक सफल डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद वो फिर गांव लौटा और उसने जाकर उस व्यापारी के पैर छुए और कहा कि अगर आप ना होते तो मैं आज डॉक्टर ना होता। उस व्यापारी ने पता है क्या जवाब दिया? उस व्यापारी ने जवाब दिया, रामू, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे माता पिता की परवरिश का आज ये रिजल्ट मिला है तुम्हें, मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन जब तुमने मेरे पैसे लौटाए थे, तब मैं चकित था कि कोई बच्चा इतना ईमानदार कैसे हो सकता है, कि इतने सारे पैसे देखने के बावजूद उसके मन में कोई गलत ख्याल नहीं आया, ऐसे बच्चे की मदद तो मुझे करनी ही थी। रामू ने उसके पैर छुए और वहां से निकल गया। फिर उसी गांव में गांव वालों के लिए एक क्लिनिक खोला। तो बच्चों, सुना आपने कि किस तरीके से छोटी सी घटना आपके जीवन पर कितना प्रभाव डाल देती है। अगर उस दिन रामू पैसे वापस ना करता और उनसे नहीं मिलता तो क्या वो पढ़ने के लिए शहर जा पाता? हो सकता है चला जाता, लेकिन ज्यादा संभावना यह है कि नहीं जा पाता, क्योंकि उनके माता पिता के पास बच्चों इतने पैसे नहीं थे। वो गांव के ही किसी स्कूल में फिर आगे पढ़ाई करने के लिए भेजते नहीं भेजते, ये सब भविष्य के हाथों में था। लेकिन उस दिन की एक घटना ने रामू का भविष्य ही बदल दिया। तो कई बार आपके अच्छे काम का अंजाम हो सकता है आपको बच्चों उस वक्त दिखाई ना दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में, भविष्य में कुछ ना कुछ बेहतर जरूर होता है, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। तो जो बार बार मैं आप लोगों से बच्चों बात करती हूँ ना, कि आप अपने विचारों को बहुत अच्छा रखिए, अपनी बातचीत का लहजा, अपने बातचीत की तहजीब, बड़ों के प्रति सम्मान, आपकी भाषा, आपका व्यवहार, बच्चों ये बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। आपका हर दिन, हर पल, हर प्रतिपल आप जो व्यवहार करते हो बच्चों, आपको उसका ही रिजल्ट मिलता है। तो जिस तरह रामू अपनी ईमानदारी के बल पर इतना अच्छा व्यक्ति बनकर निकला, उसी तरह आप लोग भी अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए बच्चों। और फिर से हम उसी बात पर लौटते हैं कि हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी है, और इस रक्षाबंधन हमको क्या करना है, रक्षा सूत्र पेड़ों को या जल के कलश को भी बांधने का प्रयास करना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है बच्चों। रक्षा का जो भाव होता है वो केवल हमारे परिवार तक क्यों रहे, हमारे जीवन में पेड़ हैं, नदियां हैं, जल हैं, इनके बिना तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है। इसलिए प्रकृति के नाम यदि हम रक्षा सूत्र बांधें, तो हमको उस समय ये नहीं सोचना है कि ये हम सिर्फ धागा बांध रहे हैं, इससे एक कदम और आगे बढ़िए। एक छोटा सा वादा करिए कि इस पेड़ को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसकी देखभाल करेंगे, इसको पानी देंगे, इसको बड़ा होते हुए देखेंगे। जब आप लोग अपने आप वादा करेंगे, और वो जो किड्स क्लब की बात मैंने कही, एक छोटी सी समिति बच्चों की बनाइए, वहाँ भी जब ये बात रखेंगे तो और बच्चों को भी समझाइएगा, और मिलकर अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में कोई जगह आपको खाली दिखे, कहीं भी आपको ऐसा लगे कि मिट्टी है और खाली जगह है, वहाँ पौधे लगा दीजिए। क्योंकि बच्चों पौधे आपसे कुछ नहीं मांगते, बस थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी जगह, और बदले में कितना कुछ देते हैं। एक आम का पौधा बड़ा होकर जब बड़ा आम का वृक्ष बनता है तो कितने लोगों को आम के फल देता है, देता है कि नहीं देता है। आपने सुबह सुबह देखा है नीम के पेड़ से कितने सारे आंटी अंकल जब निकल रहे होते हैं तो पत्तियां तोड़ते हुए चबाते हुए जाते हैं, कोई नीम की पत्तियां उबाल कर नहाने के लिए ले जाता है, क्योंकि नीम बहुत अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए भी, हमारी सेहत की बेहतरी के लिए भी। ऐसे कितने पेड़ हैं, कितने पेड़ हैं बच्चों, जो बहुत अच्छी गिलोय की बेल होती है बच्चों, जो अगर हम उसके पत्ते खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है गिलोय। ऐसे कितने पेड़, कितने फूल, कितने फल हैं जिनकी कहानियां अगर मैं आपको सुनाने बैठूं तो वो बच्चों ख़त्म ही ना हो। गुलाब के फूल तो आपने देखे ही हैं, टीचर्स डे हो या कोई भी खास दिन हो, आप बाहर से लेकर जाते हो, सोचो खरीदते हो आप, कितने लोग खरीदते हैं। लेकिन अगर आपके घर में ही पौधे लगे हों और खूब सारे फूल आ रहे हों, तो बस पौधे से जरा सी विनती कीजिए और एक छोटा सा फूल ले लीजिए। लेकिन इन सब के लिए हल्की फुल्की मेहनत तो लगती है, थोड़ा आपका डिटर्मिनेशन लगता है, थोड़ा आपका खुद के प्रति ईमानदारी लगती है कि अब आप पेड़ पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अच्छा, मुझे एक बच्चा ये भी बता रहा था पिछली बार कि जब वो स्कूल में होता है हमेशा हाथ धोता है और भाग जाता है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे कोई खड़ा नहीं होता है, घर में होता है मम्मी डांटती है तो बंद कर देता है। और ये बात उसने खुद ही एक्सेप्ट की, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि देखिए गलती कर रहा है लेकिन स्वीकार भी कर रहा है। तो क्या आप में से भी कोई बच्चा है क्या बच्चों, जो नल खुला छोड़ने की आदत है जिसकी, अगर आप घर में हो, ब्रश कर रहे हो, नल बह रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है आप लोग के साथ? ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी बात हुई ना कि आपको पानी व्यर्थ नहीं बहाना है। याद रखना है बच्चों हमें कि प्रकृति के जो भी संसाधन है वो सीमित संसाधन है। आपने देखा है बच्चों, हम कई बार खरीद के पानी पीते हैं, बोतल का पानी खरीदते हैं और फिर पीते हैं। तो क्यों ना जब भी हम घर से निकलें, भले ही हम किसी यात्रा पे जा रहे हैं या हम खेलने जा रहे हैं, तो अपने लिए एक बोतल में पानी लेकर जाएं। उससे दो फायदे होंगे बच्चों। पूछे क्या? पूछ लिया आप लोगों ने अपने घर पे बैठ के, बोल दिया क्या? अब मैं बताती हूँ, फायदे ये होंगे। एक तो हर बार बच्चों जो प्लास्टिक की बोतल आप खरीद रहे हो ना, वो नहीं आपको लेनी पड़ेगी। वो बड़ी बड़ी लंबे समय तक परेशान करने वाली चीज़ है। और दूसरी बात, आपके पैसे भी खर्च होते हैं हर बार जब आप पानी खरीदते हो। कभी किसी ऐसी जगह फंस जाओ जहाँ आपका पानी खत्म हो गया है, वहाँ ठीक है, लेकिन एक आदत डालिए कि अपने घर से जब भी निकलेंगे तब हम पानी की बोतल लेकर ही निकलेंगे और कोशिश करेंगे कि वो प्लास्टिक की ना हो। कोशिश ये भी करेंगे कि जब हम कुछ खरीदने जाएंगे या आपकी मम्मी या आपके पापा कुछ खरीदने जाएंगे तो क्या बोलेंगे आप, आपने थैला लिया या नहीं? क्योंकि जब हम घर से कपड़े का थैला लेकर चलते हैं ना बच्चों, तब फिर हमें वो पॉलीथिन नहीं लेनी पड़ती जो सामान के साथ बेवजह हमारे घर में आ जाती है। और एक पॉलीथिन, एक जो वो पन्नी भी बोलते हैं, पॉलीथिन भी बोलते हैं, प्लास्टिक की थैली भी बोलते हैं, उस एक पॉलीथिन को डिस्ट्रॉय होने में बहुत लंबा समय लगता है बच्चों, बहुत लंबा। आप सोच भी नहीं सकते कि वो ज़मीन में बरसों बरस पड़ी रहती है, नष्ट नहीं होती, और उसके कारण कई बार जानवरों को बहुत नुकसान होता है। कई बार जब नदी में आप जाते हैं और पॉलीथिन कोई छोड़ आते हैं, अपना सामान जो आप पॉलीथिन में लेकर आते हैं, तो जो जलीय जीव हैं उनको बहुत नुकसान होता है बच्चों। कई ऐसे रिसर्च हैं बच्चों, कई। अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत थोड़े से दिन पहले की बात है, बच्चे कुछ बात कर रहे थे कि महासागर, अगर हम नदी को गंदा कर रहे हैं तो क्या महासागर भी गंदे हो जाएंगे? हाँ, एक छोटी सी की जाने वाली गलती बहुत लंबे समय तक, कई कई वर्षों तक वो गलती ही रहती है। जैसे नदी में अगर आप पानी गंदा कर रहे हैं तो आप सिर्फ नदी में नहीं कर रहे हैं, वो समुद्र तक, फिर समुद्र से महासागर तक वो सब कुछ पहुंच रहा है। कहते हैं ना कि पृथ्वी एक ऐसा प्लैनेट है जिसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा भाग पर जल है, है ना बच्चों? तो उस जल को सुरक्षित रखने के लिए, उस जल को स्वच्छ रखने के लिए, हमारी नदियों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है हमको? हमको नदियों के पास केमिकल यूज़ नहीं करना है। जब हम नदियों के पास जाएं तो हमें साबुन से नहीं नहाना है, है ना, जो साबुन में भी केमिकल होते हैं और वो नदी के पानी को ख़राब करते हैं बच्चों। केमिकल फ्री साबुन, अब आप सोचोगे कि केमिकल फ्री साबुन कैसे ले जाएं? तो बच्चों, जो मुल्तानी मिट्टी होती है और जो खुद नदी की मिट्टी होती है वो भी बड़ी अच्छी होती है। आप चाहें तो नदी में आप वैसे ही पानी से नहा कर आ जाएं, लेकिन कोशिश करें कि कोई गंदगी नहीं करेंगे। तो बच्चों, आज मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं ना, अगर उनको आप अपनाएंगे तो आप थोड़े से और समृद्ध हो जाएंगे, आपका व्यक्तित्व और बेहतर हो जाएगा। तो बस इस बार त्योहारों के इस मौसम में हमें अपनी प्रकृति के किसी भी संसाधन को, चाहे वो जल हो, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, आपको किसी ना किसी को रक्षा सूत्र जरूर बांधना है। ध्यान रखिए, जल को कलश में लेकर रक्षा सूत्र बांध सकते हैं आप। और जब आप बांधेंगे तो खुद से एक प्रॉमिस जरूर कीजिएगा कि हम प्रकृति के किसी भी संसाधन का दुरुपयोग नहीं करेंगे। अब चलिए थोड़े से संकल्प ले लेते हैं, आंखें बंद कर लीजिए। आज के बाद मैं कभी भी जल को व्यर्थ नहीं बहाऊंगा या बहाऊंगी। रक्षा का रिश्ता इंसानों के अलावा प्रकृति के साथ भी निभाऊंगा या निभाऊंगी। अपनी नदियों को स्वस्थ और स्वच्छ रखने की कोशिश करेंगे। मैं प्रकृति से प्रेम करूंगी या करूंगा। अब एक आखिरी संकल्प, जहां तक संभव हो घर से थैला लेकर निकलेंगे, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। बस अब आंखें खोल लीजिए, हल्के हल्के से अपने दोनों हाथों को मलिए और अपनी आंखों पर लगा लीजिए। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगता है बच्चों। जब भी हम इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में दो पल ठहर कर कुछ अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही लगता है। अब बस आज से नई शुरुआत और रक्षाबंधन के लिए भी एक नया विचार। अब मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलूंगी आपसे कुछ और बातें करने के लिए। लेकिन अभी के लिए बच्चों नमस्ते, अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा। बाय बाय। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। आज बाल सभा का विषय था प्रकृति के लिए रक्षा सूत्र। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और आपके साथ थी मैं आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
1: बाल सभा।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: फ्रेम, बॉम्बे का वे गुप्त हथियार जो फ्लोटिंग ताबूत बन गया। क्या आप जानते हैं कि 18वीं सदी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा अजीबोगरीब और विशाल गुप्त हथियार बनाया था जिसे एक महान और शक्तिशाली तैरने वाली मशीन कहा गया था। ये था फ्रेम, एक ऐसा जहाज जिसे बॉम्बे के गवर्नर चार्ल्स बून की हताशा ने जन्म दिया था। बून मराठा नौसेना और उसके महान सेनापति कान्होजी आंगरे को नष्ट करने के जुनून में सवार थे। 1721 तक भारत के पश्चिमी तट पर अंग्रेजों द्वारा समुद्री डकैती, जैसे कि वे कहते थे, को दबाने के प्रयास शर्मनाक विफलताओं की एक श्रृंखला बन चुके थे। बून ने फैसला लिया कि कोंकण तट के चट्टानी और ऊंचे किलों, जिन्हें भारतीय जिब्राल्टर कहा जाता था, को तोड़ने के लिए पारंपरिक युद्धपोत काफी नहीं थे। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने फ्रेम का निर्माण कराया। क्या आप जानते हैं कि यह मशीन वास्तव में कैसी दिखती थी? ये आधा बेड़ा और आधा किला था। इसका निचला हिस्सा सपाट था ताकि ये केवल 6 फीट गहरे पानी में भी किनारे के करीब रेंग सके। इसके किनारे एक विशेष मिश्रण से बने थे जिसके बारे में दावा था कि वे पूरी तरह से कैनन प्रूफ, तोप के गोलों का असर ना होने वाले हैं। इसमें 12 विशाल तोपें लगी थीं जो 48 पाउंड के गोले दागती थीं, जो उस समय की मानक भारी तोप खाने के आकार से दोगुना था। फ्रेम को उस अचूक हथियार के रूप में देखा जा रहा था जो युद्ध को समाप्त कर देगा। 1721 में मराठों को मजबूत गढ़ घेरिया पर हमले के दौरान बड़े उत्साह के साथ इस मशीन को खींचकर मोर्चे पर लाया गया। अधिकारियों ने अपनी सांसें थाम ली और तोपों में आग लगा दी गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसने अंततः फायर किया तो क्या हुआ? किले की दीवारों को नष्ट करने के बजाय विशाल लोहे के गोले जहाज से थोड़ी ही दूर समुद्र में गिर गए। किसी ने इंजीनियरिंग की एक बड़ी गलती कर दी थी। तोप की गाड़ियां या तो बहुत ऊंची थी या पोर्ट बहुत नीचे थे, जिससे तोपों को सही ढंग से निशाना साधना असंभव हो गया था। अपमानित अंग्रेजों के संशोधनों के लिए फ्रेम को वापस ले लिया, लेकिन दूसरा प्रयास और भी बदतर रहा। घेरिया का किला ऊंची खड़ी चट्टानों के ऊपर स्थित था और फ्रेम एक सपाट निचली सतह वाला बेड़ा था। दूर से इसके गोले दुश्मन से ज्यादा ब्रिटिश लैंडिंग पार्टियों के लिए खतरा थे, और अगर ये बेहतर कोण पाने के लिए करीब जाता तो ये एक आसान शिकार बन जाता। क्या आप इसके कैनन प्रूफ कवच की विडंबना जानते हैं? जबकि इसके किनारे सीधे प्रहार को रोक सकते थे, इसके सपाट और भीड़भाड़ वाले डेक ऊपर से पूरी तरह असुरक्षित थे। मराठा रक्षकों ने बस बेड़े पर ऊपर से गोले बरसाए, जिससे उस पर सवार नाविकों को भारी नुकसान हुआ। वह शक्तिशाली मशीन अब एक तैरता हुआ ताबूत बन चुकी थी। फ्रेम की विफलता कंपनी के सैन्य इतिहास के अंधकार युग का एक सटीक प्रतीक है। एक ऐसा युग जो कुप्रबंधन से भरा था। इसके विलियम जेम्स जैसे पेशेवर नौसैनिक कमांडरों के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को इन किलों को जीतने में 3 दशक से ज्यादा का समय लगा।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को और ये कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। अभिवादन स्वीकार कीजिए पूर्वा खले का। श्रोताओं, ये दुनिया आज एक नए युग की दहलीज पर खड़ी है, जहां युद्ध के मैदानों की कोई तय सीमाएं नहीं होती और विजय के लिए केवल शक्तिशाली राष्ट्र का होना ही जरूरी नहीं, बल्कि विजय के लिए शक्ति के साथ ही हमेशा ही मुस्तैद और तत्पर राष्ट्र का होना भी उतना ही जरूरी है। श्रोताओं, अपनी सदियों की परंपराओं से प्रेरित और भविष्य के लिए तैयार, हिमालय से लेकर थार मरुस्थल तक भारतीय सशस्त्र सेना का हर कदम उभरते हुए भारत की नियति को आज आकार देता हुआ दिखाई देता है। सम्मान में निहित और नवाचारों से प्रेरित एक सशक्त और सुदृढ़ भारत के लिए आज हमारी भारतीय सशस्त्र सेनाएं प्रतिबद्ध दिखाई देती हैं। श्रोताओं, पिछले कुछ दशकों से भारतीय सेना नए कलेवर में अपना रूप ले रही है, एक अत्याधुनिक और आत्मनिर्भर शक्ति के रूप में, जहां ज्ञान, डेटा, ड्रोन्स और नई तकनीकें सैनिकों के साथ समान गति से चलती हैं। कभी आयात पर निर्भर भारतीय सेना के हथियार अब स्वदेशी हैं और हमारा देश इनका निर्माता ही नहीं, निर्यातक है। थार से लेकर अरुणाचल और लद्दाख से लेकर अंडमान तक हर प्रणाली पर स्वदेशी छाप है। ये कहना ना होगा कि इस नए स्वरूप में पहुंचने के लिए भारत की सशस्त्र सेनाओं ने एक लंबा सफर तय किया है। देश की आजादी के बाद लगभग 8 दशकों में हमारी भारतीय सेना ने जिन महत्वपूर्ण पायदानों को पार किया है, इसका जिक्र हम इस कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में करते हुए चले आ रहे हैं और इसका हमने पूरा प्रयास भी किया है, और इस प्रयास का श्रेय हमारे कार्यक्रम विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा सर को है, जो हर कड़ी में बड़ी ही शिद्दत और गहन अध्ययन के साथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं से संबंधित जानकारी हमारे लिए संजोते रहे हैं। श्रोताओं, भारतीय सेना को जानते समझते अब इस कार्यक्रम की हम अंतिम कड़ी पर आ पहुंचे हैं। आइए आज की इस कड़ी में हम पुनरावलोकन करें, फिर से दृष्टि डालें हमारी सेनाओं की भूमिका पर, जिनके कारण आज हमारा राष्ट्र पूरे विश्व में सशक्त और सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में पहचाना जाता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज फिर हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्हें लगभग 20 वर्षों का सेना में अपनी सेवाओं का अनुभव है। सर, स्टूडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है।
3: जय हिंद पूर्वा जी, जय हिंद श्रोताओं। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं,
2: जी,
3: आप सबको मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: जी सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: दिस ईयर वी आर 79th ईयर ऑफ अवर इंडिपेंडेंस,
2: जी,
3: एंड आई मस्ट से दैट द चेंज इज द ओनली कांस्टेंट फैक्टर,
2: बिल्कुल,
3: इन दिस वर्ल्ड।
2: जी, परिवर्तन हमेशा का नियम रहा है संसार का सर।
3: एग्जैक्टली,
2: जी,
3: उसी हिसाब से देखें,
2: जी,
3: there are a lot of changes which has taken place, development has taken place, upgradation has taken place in our country,
2: जी,
3: और उसी के साथ साथ जो है हमारी जो सेनाएं हैं वो भी निरंतर जो है अपग्रेडेड हो रही हैं, मॉडर्नाइज हो रही हैं।
2: बिल्कुल,
3: हमने सीरीज जब शुरू करी थी तो हमने 47 से शुरू करी थी,
2: जी,
3: और हमने देखा था कि 47 से लेके अभी तक हमारी सेना निरंतर जो है वॉर्स में इन्वॉल्व रही है।
2: बिल्कुल,
3: 47 में, 65 में, 71 में हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा,
2: जी,
3: और चाइना के साथ हमने 62 में युद्ध लड़ा है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं,
2: जी,
3: कारगिल में रहा, सियाचिन में रहा, इंडियन आर्म फोर्सेस ने IPKF में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के तहत श्रीलंका में जो है इंसर्जेंसी में पार्टिसिपेट किया था।
2: बिल्कुल।
3: अभी भी अगर हम देखते हैं जो आर्म फोर्सेस हैं वो टेररिज्म के अगेंस्ट जो है टेररिज्म रोल में J&K में जो है यहाँ पे कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है आतंकवाद है उससे लड़ रही है। नॉर्थ ईस्ट में भी जो है काफी जगह पे इंसर्जेंसी से लड़ रही है। इसके अलावा भी जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी और जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी को तो देखते ही हैं
2: जी बिल्कुल
3: एंड एड टू सिविल अथॉरिटी के लिए भी जो है आप देखते हैं कि जो सेनाएं हैं हमेशा जो है तत्पर रहती हैं हमेशा जो है उनका प्रयास रहता है हर जगह जो है सपोर्ट करती
2: जी।
3: तो ओवरऑल इफ यू सी द आर्म फोर्सेस हैज बीन इन्वॉल्वड थ्रू आउट सिंस इंडिपेंडेंस गार्डिंग अवर नेशंस इंटरेस्ट एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री ठीक है एंड सपोर्टिंग
2: जी राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है।
3: तो ये सब हमने जो है हमारी जो पूरी सीरीज में हमने जो है देखा था
2: जी।
3: तो जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ा है वैसे वैसे जो है आर्म फोर्सेस भी कॉन्स्टेंटली जो है अपग्रेडेड हुई हैं।
2: देश के विकास के साथ सेना का भी विकास
3: जी सेना का भी विकास हुआ और जो ये चेंजेस हैं अपग्रेडेशन है मॉडर्नाइजेशन है ये मतलब हर तरह से हर जगह पाए जाते हैं जैसे कि पॉलिसीज में चेंजेस आए हैं
2: जी
3: ट्रेनिंग में चेंजेस हैं जो हमारे पास वेपन्स हैं इक्विपमेंट्स हैं वो उनका मॉडर्नाइजेशन अपग्रेडेशन रेगुलरली हुआ है। तो इससे जो है हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स को डील करने की कैपेबिलिटी हमारी जो बढ़ती है
2: बढ़ती गई।
3: आपका दुश्मन जो कर सकता है तो आपको वो अपग्रेडेशन होना चाहिए
2: कि आप मुकाबला कर पाए
3: उसका आप मुकाबला कर सकते हैं
2: बिल्कुल
3: ठीक है ओके रादर आप उससे आगे रहें ठीक है। हमने 47 के वॉर में जो देखा था जब शुरू हुआ था 47 में जो श्रीनगर में जब शुरू हुआ था इफ यू सी वी वर इन अ काइंड ऑफ अ रिएक्टिव रोल हमारे पर अटैक हुआ कबाइलीज का अटैक हुआ उसके बाद वो संधि साइन हुई थी एंड देन वी एंटर्ड ठीक है तो इट वाज अ रिएक्टिव एक्शन बिकॉज उस समय जो पॉलिसीज थी 47 में क्योंकि हमने जो ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी उसी समय हम आजाद हुए थे तो जस्ट फॉलोइंग द ब्रिटिश आर्मी उसी तरह का हमारा ऑर्गेनाइजेशन था उसी तरह से हमारी पॉलिसीज थी उसी तरह से हमारे बैटल फॉर्मेशंस थे। ब्रिटिशर्स के लिए तो हम तो इट वाज मोर ऑफ अ पुलिसिंग ठीक है डिफेंसिव रोल वाला तो उस समय जो हमारा रिस्पांस था एंड जो पॉलिसी के हिसाब से डिफेंसिव होता था
2: केवल प्रतिक्रिया स्वरूप था
3: प्रतिक्रिया स्वरूप। अभी अगर मैं सीधे जंप करूं 2025 जब हम ऑफ सिंदूर देखते हैं ऑफ बंदर देखते हैं तो यू फाइंड एब्सोल्युटली
2: पूरी मतलब तरह से विपरीत हो गई है वो हमारी जो नीतियां
3: वी आर एक्चुअली प्रोएक्टिव
2: जी बिल्कुल सर।
3: अब हम मतलब वो है कि आप कुछ करोगे तो हम पूरी हिम्मत रखते हैं और हम करके दिखाते हैं
2: जी।
3: तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है ये बहुत बड़ा चेंज है ये बहुत बड़ा मतलब आई विल से अपग्रेडेशन है एंड ये एक माइंडसेट चेंज होता है और जब ये माइंडसेट ऐसा चेंज होता है तो इसके साथ साथ फिर बहुत सारी चीजें
2: बदलती हैं
3: बदलती हैं
2: जी।
3: जो ये मॉडर्नाइजेशन है या अपग्रेडेशन है वो किस कारण से आता है पहले तो जो हमने लड़ाइयां लड़ी हैं जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उनसे हमें सबक मिले
2: जी बिल्कुल सही।
3: हर लड़ाई ने हमें कुछ ना कुछ
2: सिखाया है
3: हर युद्ध में हमें कुछ सीखा है हर कॉन्फ्लिक्ट में सियाचिन हो कारगिल हो कहीं पे भी IPKF हो हर जगह हमने कुछ सीखा है तो वो जो हमें सिखलाई मिली उसने हमको प्रेरित किया कि हम ये चेंजेस लेकर आए चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हो चाहे वो इक्विपमेंट में चेंजेस हो चाहे हमारे बैटल फॉर्मेशंस में हो हमारी डॉक्ट्रिन्स में हो ये ट्रेनिंग में है तो ये चेंजेस उसके कारण है। दूसरा बहुत बड़ा रीजन होता है द चेंजिंग एंड द प्रेजेंट सिनेरियो रीजनल इंटरनेशनल सिनेरियो
2: आसपास क्या चल रहा है
3: आपके इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या है मतलब जियोपॉलिटिकल कंडीशंस
2: क्या है
3: उनका जो इम्पैक्ट होता है देन अगर हम देखें हमारी जो सीमाएं हैं उसपे हमें एक साथ दोनों सीमाओं पे यानी कि पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ लड़ने की हमारी काबिलियत कैपेबिलिटी होनी चाहिए
2: बिल्कुल सर।
3: तो वो एक और फैक्टर है
2: तो सर ये हमारे पारंपरिक दुश्मन है समझ लीजिए इस तरह से कहा जा सकता है
3: बिल्कुल कहा जा सकता है। तो ये एक और फैक्टर होता है विच इज द की ड्राइविंग फैक्टर जो कि चेंजेस में अपग्रेडेशन में
2: जी हमें हमारे सेना में हमेशा परिवर्तन बनाए रखना इनके लिए जरूरी है
3: करेक्ट है ना। देन गार्डिंग अवर सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन अगर देखें तो हमारा 90% जो ट्रेड होता है थ्रू सी लेंस
2: समुद्र के द्वारा
3: है तो उसमें हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं उसको सेफगार्ड करने का देन लाइक द एयर डिफेंस ऑफ द कंट्री सर्विलेंस एंड एयर डिफेंस ऑफ द कंट्री सो दैट हमारे ऊपर जो है कहीं मतलब स्पेस कुछ ना हो तो ये सब जो है कि ड्राइवर्स होते हैं जिनके तहत जो है हम नई पॉलिसीज आती हैं नए ट्रेनिंग्स होती हैं ठीक है नए डॉक्ट्रिन्स बनते हैं नेशनल लेवल पे जो डिसाइड होता है तो अगर हम अपने देश की बात करें
2: जी
3: हम सब जानते हैं कि जो हमारी प्रगति है इस समय
2: जी
3: उसमें निसंदेह अगले 25 साल में 20 साल में जो है हम वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में शामिल हो जाएंगे उसके लिए जो है ये बहुत जरूरी है कि हमारी आर्म फोर्सेस भी
2: उसी के हिसाब से तैयार हो जी बिल्कुल
3: क्योंकि अगर एक कंट्री को इकोनॉमिकली ग्रो करना है ठीक है पीसफुल एग्जिस्टेंस लेना है तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि वो किसी भी तरह के एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट्स का मुकाबला करने के लिए उसके पास फोर्सेस हो
2: जी बिल्कुल
3: और वो फोर्सेस की कैपेबिलिटी भी उस हिसाब से हो ये जो है एक बहुत जरूरी फैक्टर है ठीक है
2: जी
3: टुडे अवर फोर्सेस अगर हम अपने फोर्सेस की आज बात करें तो वर्ल्ड में इसको ऑलमोस्ट फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स कहा जाता है रिपोर्ट्स जो होती हैं उससे बेस पे कि व्हाट इज अवर स्ट्रेंथ व्हाट इज अवर इक्विपमेंट ट्रेनिंग सबको
2: मिलाकर
3: एंड आपको पता ही है कि हमारी भारतीय सेना में ये वॉलंटियर फोर्स है
2: जी स्वैच्छिक संगठन है
3: बिल्कुल एंड इट इज वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो है वॉलंटियर फोर्स है
2: बिल्कुल सर
3: इसके अलावा जो है अगर आप देखें हमारी फौज को वी आर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ यूएन मिशन ये सब जो चीजें हैं इसको देखते हुए ये जो हमारे अचीवमेंट्स हैं उसी तरह से जो है हमारा प्रोग्रेस भी रहा है ये है भी इसीलिए क्योंकि हमने जो है अपने आप को मॉडर्नाइज किया है और ये जो मॉडर्नाइजेशन है एडवांसमेंट है
2: जी
3: अगर आप देखेंगे पिछले दो दशकों में
2: बहुत
3: तेजी से हुआ है
2: जी बिल्कुल सर
3: और उसका कारण भी बहुत ही ज्यादा विदित है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत जल्दी हुआ 2009-2007 में ड्रोन यूज टू बी अ वेरी बिग थिंग आज ड्रोन हैज बिकम अ वेरी कॉमन थिंग
2: जी बच्चा बच्चा जानता है सर
3: जी उसके बारे में जो है तो डिफेंस फोर्सेस ने जो ये अडॉप्शन किया है टेक्नोलॉजी का इससे देखिए कम्बैट एफिशिएंसी बढ़ी है ऑपरेशनल एफिशिएंसी में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है एक और जो बात है
2: जी
3: जो हमारी तीनों फोर्सेस हैं आर्मी नेवी एयर फोर्स उनकी जो जॉइंटमैनशिप है उनकी जो काबिलियत है इकट्ठे काम करने की
2: जी
3: उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ क्योंकि इससे क्या है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है टेक्नोलॉजी जो है स्पेशली द कम्युनिकेशन
2: जी
3: ठीक है द ट्रांसपेरेंसी आज क्या है कि आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसी से भी बात करने के लिए रहते हैं द रियल टाइम इन्फॉर्मेशन जो है हमें सबको मिलता है एक साथ मिलता है
2: सूचनाएं तुरंत मिल जाती
3: है बिल्कुल और समय पे जो है बिल्कुल जो रियल टाइम होता है वो मिलता है
2: हमने इसे सर ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छे से देखा
3: एग्जैक्टली
2: जो चल रहा था हमने उसको लाइव देखा कि क्या हो रहा है मतलब हर व्यक्ति ने देश के हर नागरिक ने इसे देखा
3: ये ऑफ कारगिल वॉर के बाद शुरू हुआ है ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट
2: जी
3: नॉट ओनली आई विल से कि अमंग द फोर्सेस इवन जो और भी एजेंसीज हैं
2: जी
3: जो डिसाइसिव एजेंसीज हैं वो भी जो है जुड़ती हैं उनसे भी मदद मिलती है
2: जी बिल्कुल
3: और अगर हम जिक्र करें जो हमारी एडवांसमेंट है उसमें जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं नेचुरल है उनका तो सबसे बड़ा योगदान रहता ही
2: जी, है सर,
3: और उनके कारण जो है बहुत मेजर डेवलपमेंट्स आए हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो रिसेंटली आपने 2019-20 में जो है आप देखा होगा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की अपॉइंटमेंट
2: हाँ जी ये नया पद बनाया गया
3: था जिसकी डिमांड काफी टाइम से हो रही है ऑलमोस्ट कारगिल के बाद से भी चल रहा था
2: जी
3: He is the head of the Department of Military Affairs. And जो CDS होते हैं ये the principal military advisor to the defense minister.
2: सर यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी इनकी काबिलियत क्या होती है इनको किस तरह से चयन किया जाता है सर
3: ठीक है इनके चयन प्रक्रिया ये रहती है कि ये मतलब लेफ्टिनेंट जनरल जनरल के रैंक के होते हैं एंड पॉलिसीज के हिसाब से होता है कि उनकी कितनी एज होगी क्या होगा और तीनों सेनाओं में से कोई भी हो सकते हैं
2: अच्छा
3: आर्मी नेवी एयरफोर्स में से कोई भी जो है जो सीनियर होते हैं वो इसमें मतलब जो है बन सकते हैं।
2: अच्छा
3: हाँ, अब उनका अगर रोल देखें तो ही इज वन पर्सन हु लुक्स आफ्टर ऑल द थ्री सर्विसेज। स्पेसिफिकली वो एक सर्विस के लिए होते हैं, वो तीनों के लिए देखते हैं, तो उसके कारण जो है जॉइंट मैनशिप जो है बढ़ता है। देन ही इज एबल टू मतलब दिस इज हिज प्राइम जॉब रादर कि जो एक्विजिशन है मतलब डिफेंस के लिए
2: जी,
3: उसको प्लान करना, उसको इम्प्लीमेंट कराना जो है उनका बहुत बड़ा काम रहता है
2: जी। यानी किस तरह से बांटा जाएगा सोर्सेज को तीनों सेनाओं में।
3: एग्जैक्टली एग्जैक्टली ही कैन हैव ए होलिस्टिक व्यू कैसे किसको क्या जरूरत है एंड अकॉर्डिंगली ही कैन एडवाइज द गवर्नमेंट, ही कैन एडवाइज सब जो है डिफेंस मिनिस्टर।
2: यानी इस तरह से वो सरकार और सेना के बीच की कड़ी है।
3: बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बोला आपने, जो है वो एक कड़ी है जो कि मिसिंग थी।
2: बिल्कुल सर।
3: अभी एक और पॉलिसी आने हुए है जिसको हम बोल रहे हैं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड।
2: अच्छा,
3: अभी क्या है जैसे आर्मी एयरफोर्स नेवी ऑल्दो जॉइंटमैनशिप में भी काम करते हैं
2: जी, जी।
3: लेकिन उनका अपना अपना एक रोल होता है, वॉर में भी अपना एक रोल होता है
2: जी,
3: वो अपने हिसाब से होता है। अभी एक नया कंसेप्ट ये आने वाला है कि थिएटर कमांड होगा।
2: अच्छा,
3: थिएटर कमांड का मतलब होगा कि जैसे एक एरिया है तो उसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स जो भी है, आर्मी एयरफोर्स जैसे भी है,
2: जैसा भी कॉम्बिनेशन
3: कॉम्बिनेशन है, वो एक ही कमांडर के अंडर में होंगे।
2: अच्छा,
3: नेचुरल है कि उसमें जो है रिएक्टिवेशन अच्छा रहेगा, रिएक्टिव टाइम कम होगा ठीक है
2: जी,
3: तो उसके लिए जो है इवन कॉमन लॉजिस्टिक्स नोट्स रहेंगे ठीक है। और मतलब यू कैन से कि जो थ्रेट है उसको डील करने की हमारी क्षमता जो है बहुत
2: बढ़ जाएगी जी। बिल्कुल सर,
3: तो वेरी सून वील फाइंड दिस कमिंग अप ठीक है, जो की ज्योग्राफिकल एरिया फंक्शनिंग के हिसाब से
2: जी
3: बनाए जाएंगे।
2: ओके,
3: तो अकॉर्डिंगली जो है ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि जो ज्वाइंट ट्रेनिंग्स है, सेमिनार्स एक्सरसाइज है, वो काफी ज्यादा बढ़ गई है,
2: बढ़ गई।
3: टेक्निकल इंटीग्रेशन जो है वो काफी हाई है
2: जी।
3: अभी जैसे डिफेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि तीनों सर्विसेज को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है,
2: जोड़ता है।
3: आप भी जानती हैं एक और चीज है, आत्मनिर्भर भारत जो हमारा जो एक कंसेप्ट है
2: जी,
3: सेल्फ रिलायंस, उसने डिफेंस के ऊपर जो है उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। आपने अपने अभी इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि हम एक
2: निरातक की भूमिका में आ गए हैं सर।
3: बिल्कुल
2: जी,
3: है ना?
2: तो कहां तो हम हथियार आयात करते थे सेना के लिए, आज हम यूज तो कर ही रहे, उनका निर्यात भी कर रहे हैं।
3: तो इंपोर्ट डिपेंडेंट मिलिट्री फोर्स से जो है हम बिकम सेल्फ रिलायंस
2: जी, सेल्फ रिलायंस।
3: इंडिजिनियस प्रोडक्शन जो है हमारा बहुत बड़ा है
2: जी जी।
3: तो मेक इन इंडिया जो पॉलिसी है इसके तहत जो है हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है
2: जी,
3: उसमें जो है आत्मनिर्भरता का जो है फैक्टर जो है इमर्ज हुआ है। एंड जो हमारा नेशन है नाउ इट इज इमर्जिंग एज ए हब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट
2: जी,
3: जहां हम बाहर से जो है क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी हो गई हैं कि मतलब इवन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है
2: जी,
3: उसको अलाउ कर रहे हैं ठीक है। देन डिफेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन जो है, प्राइवेट कंपनीज काफी आ गई हैं। एक और चीज है वो है जैसे डीआरडीओ जो हमारा है।
2: हाँ जी सर, मेरा यही प्रश्न था कि अंतरिक्ष में अनुसंधान जो है वो एक एक नया आयाम है। आकाश, धरती और जल तो था ही, अब एक अंतरिक्ष भी एक नया आयाम है जो सेना के लिए एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है।
3: स्पेस
2: जी,
3: स्पेस कमांड।
2: हाँ जी, स्पेस के लिए
3: जिसके ऊपर आईएसआरओ काम करते
2: जी, आईएसआरओ काम करते हैं। तो सर इसका क्या उसमें भूमिका है हमारे सेना के लिए?
3: इसकी जो भूमिका है मतलब इन द सेंस यू सी द सैटेलाइट्स जो हम लॉन्च कर रहे हैं
2: जी,
3: एंड नाउ वी हैव गॉट द डिफेंस सैटेलाइट्स
2: जी,
3: ठीक है, जो कि हमारे को डिफेंस पे मदद मिलती है
2: जी,
3: हमारे ऑपरेशन प्लानिंग्स पे, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में मदद मिलती है। एंड स्पेस इज गोइंग टू बी द न्यू एरिया
2: जी, वही
3: इन फ्यूचर
2: जी,
3: फ्यूचर वॉर का एरिया, एंड इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड दैट वी डोमिनेट दैट। ओके
2: जी,
3: उसी तरह इसमें भी काफी जो है प्रगति हुई है और चल रही है ठीक है। इसी तरह से जो है हमारे डीआरडीओ से
2: हाँ जी जी,
3: तो इसमें जो है काफी गवर्नमेंट ने एनकरेजमेंट दिया है, एनहांस फैसिलिटीज बढ़ाई है, एंड इवन दे प्रमोटेड इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो क्षेत्र में काफी जो है प्रमोशन है
2: जी।
3: इवन अगर आप देखेंगे कि इनोवेशन जो होती है, आपने देखा होगा आजकल स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा
2: जी
3: प्रोत्साहन दिया किया जाता
2: जी,
3: है
2: बिल्कुल।
3: तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस बोलते हैं, आईडेक्स बोलते हैं, जिसमें कि ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि डिफेंस से कनेक्टेड जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं
2: जी,
3: और उनके लिए जितने नई टेक्नोलॉजीज हैं प्रोडक्शन हैं उनको बढ़ावा देते हैं, और उसके कारण जो है काफी ज्यादा स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट मिल रहा है
2: जी।
3: जाहिर है कि इन सबसे जो है हमें आगे बढ़ने में मदद मिल रही है,
2: बिल्कुल सर,
3: हमारे को मॉडर्नाइजेशन में मदद मिल रही है। तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं इसके कारण अगर आप देखें तो आज काफी जो है इक्विपमेंट जो हम बाहर से लगवाते थे, जैसे अभी तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट जो इंडक्ट हुए हैं, कम्बैट हैप्टर्स हैं हमारे पास, मिसाइल सिस्टम्स तो खैर हमारा मतलब बहुत ही एडवांस लेवल पे है। रिसेंटली वी हैव टेस्टेड द अग्नि 4000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल को, ICBM को हमने टेस्ट किया है, एंड नाउ वी आर गनिंग लुकिंग फॉरवर्ड फॉर के 5000 किलोमीटर रेंज में जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स व्हिच इज न्यूक्लियर केपेबल, ठीक है। तो आप समझ

0: है, नहीं तो लद्दाख यूज्ड टू गेट कट ऑफ फॉर 6 months.
1: ठीक है,
0: ऐसी तवांग जो है मुश्किल हो जाता था एक वक्त में. एंड जैसे जो ब्रिजेस आए हैं, जो रोड डेवलपमेंट हुआ है, हमारा इवन ट्रेन जो है अभी श्रीनगर तक
1: जा रहे
0: हैं, उसके आगे तक जा रही है, तो दीज आर द मेजर डेवलपमेंट विच हैड टेकन प्लेस.
1: तो सर, युद्ध और सीमा की सुरक्षा के अलावा जो सेना ये कार्य कर रही है, उसका योगदान तो हम कभी भूल ही नहीं सकते, सड़कों के रूप में या पुलों के रूप में या रेलवे के रूप में. खुद स्वयं सेना का योगदान है.
0: सेना को इससे फायदा हुआ है कि बनने से जो है
1: जी,
0: हमारी जो मोबिलिटी बढ़ गई है,
1: बढ़ गई है ना, जी,
0: तो उससे हमें फायदा हुआ है. जो सेना का एक अंग है, दैट इज मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट दैट कम्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हिच इज BRO, ग्रेफ एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो आती है. यस, उनका बहुत बड़ा योगदान है सड़कें बनाने में.
1: जी,
0: जो है ऑफकोर्स उसमें जो कमांड एंड कंट्रोल एलिमेंट्स होते हैं वो फौज के होते हैं.
1: हाँ,
0: उनका बहुत बड़ा योगदान है सड़कें बनाने में, पुल्स बनाने में. दैट इज राइट. इन चीजों को अगर आप देखेंगे जो है, लाइक अभी बॉर्डर एरियाज पे यू फाइंड की जो एयरफील्ड्स हैं वो डेवलप हुए हैं, एडवांस एयर बेसिस हैं जो बॉर्डर एरियाज में है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत इम्प्रूव है, रोड नेटवर्क बहुत ज्यादा इम्प्रूव है. तो आई विल से कि जब हम 47 से देखा है और 2025 पे जब हम आते हैं तो हमें सिनेरियो पूरी तरह से चेंज मिलता है. और ये सिर्फ आर्मी में नहीं है, जब हम नेवी की कभी जिक्र करते हैं या एयरफोर्स का भी जिक्र करते हैं तो उनका भी एडवांसमेंट उतना ही उस लेवल से बड़ा है. आज एयर डिफेंस सर्विलेंस सिस्टम, आवर डोमिनेशन इन द सी, ठीक है, अब कैपेबिलिटीज हैव गॉन अप टू वेरी हाई,
1: बहुत उच्च स्तर की
0: उच्च स्तर की है. हमारे जो इतने फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, साइबर टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स हैं, ठीक है, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, तो इन सब के कारण जो है कैपेबिलिटीज जो है हमारी जो डिफेंसिव ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज है उसमें काफी इजाफा हुआ है.
1: कुल मिलाकर हमारी सेना जो है आज बेहद ही सशक्त स्थिति में है.
0: बिल्कुल, मैं मानता हूँ. लेकिन एक बात का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा.
1: जी सर.
0: जो है एडवांसमेंट है, सब कुछ है, लेकिन आज भी
1: जी
0: सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सोल्जर.
1: जी बिल्कुल सर.
0: सदियों से चाहे हम हमारे आस में, मतलब इवन प्री हिस्टोरिक में भी जाएंगे,
1: जी,
0: तब से जब से हम देखते आ रहे हैं, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन हु मैटर्स. एंड आज भी जो ये इंडियन सोल्जर है, हमारे जो सोल्जर हैं, जो मतलब सतत खड़े हैं
1: जी
0: देश की सुरक्षा के लिए जो है, वो सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है.
1: बिल्कुल सर.
0: सबसे महत्व रखते हैं, ये उनकी स्पिरिट है, देश प्रेम है जो है, मतलब दे आर द ड्राइविंग फोर्स जिसके कारण जो है देश की जो है सुरक्षा.
1: जी सर. तकनीक और हथियार अपनी जगह है, लेकिन सैनिक का जब तक साहस नहीं होगा तब तक तकनीक और हथियार भी कुछ नहीं कर सकते.
0: बिल्कुल. और उनका जो जज्बा है बलिदान का,
1: बिल्कुल,
0: जो है
1: मातृभूमि के प्रति समर्पण,
0: मातृभूमि के प्रति उनका जो समर्पण है वो मतलब ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज माई कंट्री, ठीक है, देन कम्स एनीथिंग एल्स. वो जो जज्बा है, जब तक वो है तब तक कोई हमें हाथ नहीं लगा.
1: स्वयं से पहले सेवा.
0: बिल्कुल, स्वयं से पहले सेवा. ठीक है, आज जो भी कुछ हम हैं, I must say it is because of the bravest of the braves. All those people who had contributed so much to for the country. People like Major Somnath Sharma, Flying Officer Nirmaljit Singh Sekhu, Captain Mahendra Mula, and Captain Vikram Batra. Bravest of the braves. And aur bhi bahut jitne hain. हमने इन सब का जिक्र भी किया था अपनी पूरी सीरीज में.
1: बिल्कुल सर, हम पिछली कड़ियों में इन सब को हमने कभी भी भुलाया नहीं है और हर एक को याद करने का अपने इस कार्यक्रम में प्रयास किया
0: जी. और इसके अलावा भी जो हर वो जवान जिसने जो है इस देश के लिए बलिदान दिया है, उनके लिए तो उनके सामने हम नतमस्तक हैं.
1: बिल्कुल सर, ये हमारे देश के अनसंग हीरोज हैं सर.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वक्त में भी ये जो सोल्जर्स हैं, इन्हीं के कारण जो है हमारा देश हमेशा जो है स्ट्रांग रहेगा, सुरक्षित रहेगा.
1: बस सर, यही भावना हमारी भी है और इसी भावना से प्रेरित एक गीत है, कुछ पंक्तियां हैं सर, वो मैं जरूर आज शेयर करना चाहूंगी कार्यक्रम में अंत में. मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे अभी कुछ और भी दूं. माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन. थाल में लाऊं सजा कर भाल, जब स्वीकार कर लेना दया कर ये समर्पण. गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे अभी कुछ और भी दो, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, इस आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे अभी कुछ और भी दो। तो श्रोताओं, हम भी अर्पित करते हैं अपनी श्रद्धांजलि देश के उन वीर सपूतों को जिन्होंने राष्ट्र को, अपनी मातृभूमि को सर्वप्रथम रखकर अपना सर्वस्व बलिदान दिया। और हम आभारी हैं हमारी सेना और हमारे सैनिकों को जो हमें हमारी स्वतंत्रता का हमेशा आभास कराते रहते हैं। आज की कड़ी और इस कार्यक्रम को भी अब हम यहीं समाप्त करते हैं। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने भारतीय सेना के बारे में हम जैसे आम नागरिकों को इतनी अच्छे से सेना के बारे में समझाया और बताया कि हमारे जीवन में सेना का क्या महत्व है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वेलकम, एंड इन फैक्ट आई मस्ट से थैंक्स टू यू दैट एंड टू द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज प्रोवाइडेड दिस अपॉर्चुनिटी टू मी टू शेयर द व्यूज। थैंक यू वेरी मच एंड सैल्यूटिंग ऑल द सोल्जर्स। जय हिंद।
1: जय हिंद सर। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना की अदिति गौड़ ने, ध्वनि संपादन रहा अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का। मैं थी आपके साथ आपके अपने रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: ये प्रस्तुति हुई भोपाल के रविंद्र भवन के हंसध्वनि सभागार में।
1: जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का।
2: प्यार भरा नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। ये मेरे सौभाग्य कि आज ऐसे मीठे वाले दिन में मुझे गाने का मौका मिल रहा है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब साल की शुरुआत होती है और 15 अगस्त को मुझे गाने का मौका मिलता है, मुझे लगता है कि ईश्वर ने बहुत मेरे पर कृपा की। और आप जैसे लोग जो भोपाल हम जानते हैं, भोपाल इतना कल्चरली कॉन्शियस है, यहाँ पे शास्त्रीय संगीत की इतना प्रचार है इस स्टेट में और भोपाल में, आज के दिन मैं यहाँ गा रही हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर टुडे। मैं सबसे पहला जो गीत गा रही हूँ ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत निर्देशन में मैं गा रही हूँ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मुझे फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहला गाना दिया था और ये मैंने फिल्म भैरवी के लिए गाया, जिसके शब्द, बहुत सुंदर शब्द अमित खन्ना साहब ने लिखा है। इसी गीत से शुरुआत कर रही हूँ।

थैंक यू सो मच। अभी आपको मैं देवदास फिल्म का गीत सुनाऊंगी। ये गीत मुझे बहुत पसंद है उस फिल्म में।

रोक ले और चक्कर चूम ले।

0: बहुत शुक्रिया।
1: आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति का गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने और परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे मिश्र धातु निगम लिमिटेड यानी मिधानी और धातुओं में छिपी रक्षा की ताकत के बारे में।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान। श्रोताओं, पिछले कुछ दिनों से हम दादू और रुचि के साथ भारत की समुद्री यात्रा पर थे। कभी मुंबई के मझगांव डॉक में पनडुब्बियों और युद्धपोतों के निर्माण को समझा, तो कभी गोवा शिपयार्ड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की कहानी के माध्यम से जाना कि कैसे भारत ने समुद्र में अपनी शक्ति को नई पहचान दी। आज दादू और रुचि अपनी यात्रा पूरी करके घर लौट आए हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। युद्धपोत, लड़ाकू विमान, रॉकेट, मिसाइल, पनडुब्बियां, इन सब में एक ऐसी चीज समान होती है जिसे हम अपनी आंखों से तो देखते हैं पर इसके महत्व को शायद ही समझते हैं। वो है धातु।
1: लेकिन क्या हर धातु एक जैसी होती है? क्या साधारण इस्पात से लड़ाकू विमान बनाए जा सकते हैं? रॉकेट का इंजन हजारों डिग्री तापमान कैसे सह लेता है? और भारत ने ऐसी विशेष धातुएं स्वयं से बनाना कब शुरू की? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए आज दादू और रुचि हमें लेकर चलेंगे हैदराबाद, जहां स्थित है मिश्र धातु निगम लिमिटेड, अर्थात मिधानी। तो आइए चलते हैं दादू के घर।
2: दादू, आखिरकार हम घर लौट ही आए। सच कहूँ ना तो इस बार की यात्रा मेरी सोच से भी ज्यादा रोचक निकली है।
3: हाँ बेटा, लेकिन इस यात्रा ने बूढ़े शरीर को थका दिया है।
2: दादू, थोड़ी सी थकी थकी सी तो मैं भी हूँ, लेकिन मैंने ना बहुत कुछ जाना है आपसे। थैंक यू सो मच दादाजी।
3: जी बेटा, मुझे खुशी है कि तुम्हें इस यात्रा से कुछ नया सीखने को मिला।
2: दादू, एक बात मेरे मन में बार बार आ रही है।
3: पूछो पूछो बिटिया।
2: दादू, हमने जहाज देखे, पनडुब्बियों के बारे में जाना, लड़ाकू विमानों के बारे में जाना, लेकिन एक बात मैंने हर जगह सुनी, विशेष इस्पात, विशेष धातु, मिश्र धातु। आखिर ये सब इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्या साधारण लोहे या इस्पात से काम नहीं चल सकता?
3: शांत शांत रुचि बेटा। वाह, तुम्हारा ये प्रश्न बताता है कि हमारी यात्रा सफल रही। अब तुम केवल ये नहीं पूछ रही कि क्या बनता है, बल्कि ये जानना चाहती हो कि वो कैसे बनता है।
2: तो फिर तो ये सस्पेंस खोल ही दीजिए दादाजी।
3: हाँ हाँ, बताऊंगा बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें रसोई तक चलना होगा।
2: रसोई? मिश्र धातु और रसोई का क्या संबंध है भला?
3: बहुत गहरा संबंध है बेटा। चलो चलो, आज की पढ़ाई प्रयोग करके करेंगे, ठीक है?
2: चलिए।
3: चलो आओ। देखो, रसोई में कप रखे जाने की आवाज सुनो। ठीक है, सुनी कि नहीं सुनी?
2: हाँ हाँ।
3: हाँ, अब गैस पर पानी उबलने की हल्की ध्वनि को सुनो।
2: दादू, अब बताइए बिना। मैं सोच रही थी कि आज हम हैदराबाद की बात करेंगे और आप मुझे रसोई में लेकर आ गए।
3: विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में नहीं होता बिटिया, वो हमारे घरों में, रसोई में, खेतों में, हर जगह छिपा हुआ होता है। बस उसे पहचानने वाले की नजर चाहिए।
2: तो क्या मिश्र धातु भी हमारे घर में मिल जाएगी?
3: सीधे सीधे नहीं, लेकिन उसका सिद्धांत जरूर समझ में आ जाएगा। देखो, ये स्टील का चम्मच, ठीक है, और ये पीतल की कटोरी,
2: ठीक है,
3: दोनों धातुओं से बने, लेकिन दोनों के गुण एक जैसे नहीं है।
2: वो तो है, दोनों का रंग भी अलग है और वजन भी अलग है।
3: बिल्कुल। अब जरा सोचो, अगर हमें ऐसी धातु चाहिए जो बहुत मजबूत भी हो, जल्दी जंग भी ना लगाए, बहुत अधिक गर्मी भी सह सके और वजन में हल्की हो, तो क्या केवल एक धातु से काम चल जाएगा?
2: शायद नहीं।
3: यही सोच वैज्ञानिकों ने भी अपनाई। उन्होंने अलग अलग धातुओं को उचित अनुपात में मिलाकर ऐसी नई धातुएं बनाई जिनमें कई अच्छे गुण एक साथ हो गए। इन्हें ही मिश्र धातु या एलॉय कहते हैं।
2: यानी जैसे अलग अलग मसालों को सही मात्रा में मिलाकर एक नया स्वाद तैयार किया जाता है।
3: बिल्कुल वैसे ही बेटा। यदि किसी व्यंजन में केवल नमक ही डाल दिया जाए तो स्वाद नहीं आएगा, लेकिन जब हल्दी, धनिया, जीरा, मिर्च और दूसरे मसाले सही सही मात्रा में मिलते हैं तभी भोजन स्वादिष्ट बनता है। ठीक उसी तरह धातुओं के साथ भी होता है बेटा।
2: वाह दादू, अब मुझे मिश्र धातु का मतलब समझ में आया।
3: लेकिन बिटिया कहानी यहीं समाप्त नहीं होती।
2: कहानी समाप्त नहीं होती मतलब?
3: घर में इस्तेमाल होने वाली मिश्र धातुएं और लड़ाकू विमान या रॉकेट में इस्तेमाल होने वाली मिश्र धातुएं एक जैसी नहीं होती हैं।
2: ऐसा क्यों होता है दादाजी?
3: क्योंकि उनकी परीक्षा साधारण नहीं होती बेटा। सोचो, एक लड़ाकू विमान ध्वनि की गति के आसपास उड़ रहा है। उसके इंजन के भीतर तापमान कई स्थानों पर 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। दूसरी ओर पनडुब्बी समुद्र की गहराइयों में अत्यधिक दबाव झेल रही होती है। वहीं रॉकेट को प्रक्षेपण के समय भीषण कंपन, अत्यधिक ताप और अपार बल का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में साधारण धातु अपना आकार बदल सकती है, कमजोर पड़ सकती है या टूट भी सकती है।
2: यानी हर कठिन काम के लिए अलग तरह की धातु चाहिए दादाजी।
3: बिल्कुल, और ऐसी ही विशेष धातुओं का निर्माण करने के लिए भारत को एक ऐसे संस्थान की आवश्यकता थी जो केवल उत्पादन ना करे बल्कि लगातार नई धातुओं पर अनुसंधान भी करे।
2: क्या तभी मेधानी की स्थापना हुई थी? लगता है यही बताना जा रहे हैं आप मुझे।
3: अब तुम सही दिशा में पहुंच गई हो। हाँ, ये अखबार वाला आया है क्या?
2: हाँ दादू, रुकिए, मैं अखबार लेकर आती हूँ।
3: हाँ हाँ।
2: अरे दादू, इसमें तो किसी रॉकेट प्रक्षेपण की तस्वीर छपी है।
3: देखा, हम रोज ऐसी खबरें पढ़ते हैं बेटा। रॉकेट उड़ गया, मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ, नया लड़ाकू विमान बना, लेकिन शायद ही कभी सोचते हैं कि इन सब के पीछे उन धातुओं का भी योगदान है जिनके बिना ये सब संभव नहीं होता।
2: सच दादू, हम मशीन तो देखते हैं लेकिन उसे बनाने वाली धातु के बारे में शायद ही सोचते हैं।
3: और आज की हमारी यात्रा उसी अनदेखे नायक की कहानी है।
2: दादू लगता है हमारी ये यात्रा किसी पाठशाला से कम नहीं रही।
3: सही सही, बिल्कुल सही कहा बेटा।
2: एक बात तो मुझे अब समझ में आई है कि विशेष मिश्र धातुएं क्यों जरूरी हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जब आज से 50-60 साल पहले ना तो इतने आधुनिक कंप्यूटर थे, न इतनी मशीनें थीं, तब भारत ने इतनी कठिन धातुएं बनाने की शुरुआत कैसे की होगी?
3: बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, और इसी प्रश्न का उत्तर हमें सन 1973 में ले जाता है।
2: 1973? यानी आज से लगभग आधी सदी पहले।
3: स्वतंत्रता के बाद भारत ने ये निश्चय तो कर लिया था कि हमें रक्षा, अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में किसी पर निर्भर नहीं रहना है। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी।
2: समस्या? कौन सी समस्या दादू?
3: भाई मान लो तुम्हारे पास दुनिया का सबसे अच्छा डिजाइन हो, सबसे अच्छे वैज्ञानिक हो, सबसे कुशल इंजीनियर हो, लेकिन जिस धातु से मशीन बननी है वही तुम्हारे पास ना हो तो क्या होगा?
2: फिर तो सारी योजना ही रुक जाएगी दादाजी।
3: बिल्कुल, उस समय भारत के सामने बिल्कुल यही चुनौती थी। विशेष धातुएं विदेशों से मंगानी पड़ती थी। वो बहुत महंगी होती थी, हर समय उपलब्ध भी नहीं हो पाती थी, और रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कोई भी देश अपनी सर्वोत्तम तकनीक आसानी से साझा नहीं करता था।
2: यानी यदि किसी कारण से वे धातुएं मिलना बंद हो जाती तो हमारे कई बड़े वैज्ञानिक कार्यक्रम भी प्रभावित हो सकते थे।
3: ठीक यही चिंता हमारे वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के मन में भी थी। उन्होंने सोचा जब रॉकेट, लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां हमारी होंगी तो उन्हें बनाने वाली धातु भी हमारी ही होनी चाहिए।
2: ये तो है।
3: इसी दूरदृष्टि का परिणाम था वर्ष 1973 में हैदराबाद में स्थापित हुआ मिश्र धातु निगम लिमिटेड। क्या हुआ?
2: मिश्र धातु निगम लिमिटेड,
3: वेरी गुड, जिसे आज पूरा देश मिधानी के नाम से जानता है।
2: यानी मिधानी की स्थापना केवल एक नया कारखाना बनाने के लिए नहीं हुई थी बल्कि भारत को उन धातुओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हुई थी जिन्हें भविष्य की तकनीक की रीढ़ माना जाता है।
3: बिल्कुल, शाबाश। और यही कारण है कि मिधानी केवल धातु नहीं बनाती, वो भारत के वैज्ञानिक सपनों को आकार देती है।
2: ओहो दादू, लो अब बिजली चली गई, इन्वर्टर क्यों नहीं चला लेकिन?
3: हाँ बेटा, लगता है इन्वर्टर भी थोड़ी देर आराम करना चाहता है।
2: अच्छा दादू, एक बात बताइए ना, अगर बिजली चली जाए तो हम थोड़ी देर असुविधा में रहते हैं, लेकिन अगर किसी देश को जरूरत के नाम पर विशेष धातुएं ही ना मिले तो?
3: तब केवल असुविधा नहीं होती बिटिया, देश की सुरक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष अभियान, यहाँ तक कि कई महत्वपूर्ण उद्योग भी प्रभावित हो सकते हैं।
2: अब समझ में आया, इसलिए विशेष धातुओं में आत्मनिर्भर होना किसी भी विकसित राष्ट्र के लिए उतना ही जरूरी है जितना भोजन, ऊर्जा और सुरक्षा।
3: और अभी तो तुमने मिधानी की दुनिया का दरवाजा ही खोला है, अभी तुम्हें टाइटेनियम की कहानी सुननी है, सुपर मिश्र धातुओं का विज्ञान समझना है, विशेष इस्पात की ताकत जाननी है।
2: अच्छा दादू, ये टाइटेनियम धातु में ऐसा क्या होता है कि पूरी दुनिया इसकी इतनी चर्चा करती है?
3: मान लो तुम्हें तीन अलग अलग काम करने हैं। एक ऐसा पुल बनाना है जिस पर रोज हजारों वाहन चलेंगे,
2: ठीक है।
3: एक ऐसा हवाई जहाज बनाना है जो आसमान में ध्वनि की गति से उड़ सके, और एक ऐसा रॉकेट बनाना है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर अंतरिक्ष तक पहुंच जाए। तो क्या तुम इन तीनों में से एक ही प्रकार की धातु का उपयोग करना चाहोगी?
2: नहीं दादू, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तीनों की जरूरतें अलग अलग हैं। देखिए ना, अब पुल को मजबूती चाहिए, हवाई जहाज को हल्कापन चाहिए, और रॉकेट को इतनी ताकत चाहिए कि वो आग और अत्यधिक तापमान को भी सह सके। सही कहा ना मैंने?
3: बिल्कुल, यही कारण है बेटा कि मिधानी केवल एक धातु नहीं बनाती बल्कि अनेक प्रकार की विशेष धातुओं और मिश्र धातुओं का निर्माण करती है, और ऐसी ही एक धातु है टाइटेनियम।
2: दादाजी, टाइटेनियम का नाम मैंने कई बार सुना है।
3: चलो चलो चलो, एक छोटी सी कल्पना करते हैं। अगर मैं तुम्हें दो छड़ें दूं, पहले लोहे की, दूसरी टाइटेनियम की, और दोनों की मजबूती लगभग समान हो, लेकिन टाइटेनियम वाली छड़ वजन में काफी हल्की निकले, तो तुम किसे चुनोगी?
2: जाहिर है दादाजी, टाइटेनियम वाली ही चुनूंगी, क्योंकि उसमें मजबूती भी है और उसका वजन भी कम है।
3: सही कहा बेटा, टाइटेनियम बहुत मजबूत होता है और वजन अपेक्षाकृत कम होता है, इस पर जंग भी बहुत कम लगती है, ठीक है, और ये अत्यधिक तापमान को भी सह सकता है, इसी कारण इसे अंतरिक्ष, रक्षा और विमानन जगत की सबसे महत्वपूर्ण धातुओं में गिना जाता है।
2: यानी लड़ाकू विमानों में इसका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि विमान मजबूत भी रहे और भारी भी ना हो।
3: यदि विमान का वजन आवश्यकता से अधिक हो जाएगा तो उसे उड़ाने के लिए अधिक ईंधन लगेगा, गति कम होगी और उसकी क्षमता भी प्रभावित होगी, इसलिए हर अतिरिक्त किलोग्राम बचाना वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।
2: अच्छा, और रॉकेट में?
3: रॉकेट में इसका महत्व और बढ़ जाता है बेटा, क्योंकि वहाँ हर ग्राम वजन की कीमत होती है। समझ में आ रहा है? रॉकेट जितना हल्का होगा उतना अधिक भार अंतरिक्ष तक ले जा सकेगा।
2: वाह दादू, एक धातु का चुनाव भी पूरे मिशन की सफलता पर तय कर सकता है।
3: सिर्फ टाइटेनियम ही नहीं, मिधानी की प्रयोगशाला में ऐसी धातुएं भी बनती हैं जिन्हें सुपर मिश्र धातुएं कहा जाता है।
2: सुपर मिश्र धातु? दादू, क्या ये सचमुच किसी सुपर हीरो जैसी होती है?
3: हाँ हाँ बेटा, इसलिए इन्हें गैस टर्बाइन इंजनों, लड़ाकू विमानों, रॉकेट इंजनों, अंतरिक्ष यानों और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों जैसे अत्यंत कठिन वातावरण में उपयोग किया जाता है।
2: मिधानी जैसी संस्थाओं में केवल धातु नहीं बनाई जाती बल्कि वर्षों तक उनका परीक्षण भी किया जाता होगा ना?
3: हाँ बेटा, हर नई मिश्र धातु को कई कसौटियों पर परखा जाता है, उसकी मजबूती, गर्मी सहने की क्षमता, दबाव झेलने की क्षमता, जंग से बचाव और लंबे समय तक टिके रहने जैसे अनेक गुणों की जांच की जाती है।
2: दादू, आपने टाइटेनियम और सुपर मिश्र धातुओं की बात बताई, लेकिन क्या मिधानी केवल यही बनाती है?
3: नहीं नहीं बेटा, मिधानी की एक और बड़ी पहचान है, विशेष इस्पात।
2: दादू, इस्पात तो हम रोज सुनते हैं, फिर विशेष इस्पात में क्या अंतर होता है?
3: बहुत अच्छा प्रश्न। जिस प्रकार हर विद्यार्थी एक जैसा नहीं होता, उसी प्रकार इस्पात भी एक जैसा नहीं होता। किसी इस्पात को अधिक कठोर बनाया जाता है, किसी को अधिक लचीला, और किसी को ऐसा कि वो वर्षों तक कठिन परिस्थितियों में कभी खराब ना हो।
2: मतलब जरूरत के अनुसार उसके गुण बदले जाते हैं।
3: बिल्कुल बेटा, रक्षा उपकरणों, पनडुब्बियों, मिसाइल प्रक्षेपण प्रणालियों और अनेक भारी मशीनों के लिए ऐसे विशेष इस्पात की आवश्यकता होती है जिसमें मजबूती और टिकाऊपन दोनों होता है।
2: शायद इसलिए मिधानी को देश की रक्षा और वैज्ञानिक प्रगति की एक मजबूत नींव कहा जाता है।
3: बिल्कुल बेटा, और अब समय आ गया है उन लोगों की बात करने का जो इन धातुओं को केवल बनाते ही नहीं बल्कि उन्हें निरंतर बेहतर भी बनाते रहते हैं।
2: मैं बताती हूँ मिधानी के वैज्ञानिक और अभियंता।
3: हाँ बेटा, बिल्कुल सही। धातुओं की असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है।
2: दादू, अब मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई है। आखिर मिधानी के वैज्ञानिक और अभियंता करते क्या हैं? क्या उनका काम केवल धातु बनाना होता है?
3: यही तो सबसे सुंदर बात है बिटिया। धातु स्वयं कभी महान नहीं बनती, उसे महान बनाते हैं वे लोग जो उसके गुणों को समझते हैं। मिधानी के वैज्ञानिक और अभियंता केवल धातु नहीं बनाते बल्कि उसकी प्रत्येक विशेषता को गढ़ते हैं।
2: यानी किसी विशेष धातु के बनने के पीछे भी अनेक लोगों की मेहनत, अनुभव और वैज्ञानिक सोच होती होगी।
3: यही तो किसी बड़े वैज्ञानिक संस्थान की विशेषता होती है। यहाँ हर व्यक्ति एक अलग जिम्मेदारी निभाता है। कोई नई मिश्र धातु की संरचना तैयार करता है तो कोई उसे पिघलाने की प्रक्रिया तय करता है, कोई उसकी गुणवत्ता की जाँच करता है और कोई ये सुनिश्चित करता है कि वो धातु रक्षा या अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पूरी तरह उपयुक्त है या नहीं।
2: यानी एक छोटी सी धातु तैयार करने के पीछे भी पूरी एक टीम काम करती है।
3: हाँ बेटा, कई बार तो किसी नई मिश्र धातु को विकसित करने में महीनों नहीं बल्कि वर्षों का समय लग जाता है।
2: दादू, क्या वैज्ञानिक सचमुच बहुत मुश्किल परिस्थितियों में काम करते हैं?
3: हाँ बेटा, जहाँ विशेष धातुओं का निर्माण होता है वहाँ अत्यधिक सावधानी रखनी पड़ती है। विशेष सुरक्षा वस्त्र, सुरक्षा चश्मे, दस्ताने और आधुनिक उपकरणों की सहायता से ये कार्य किया जाता है क्योंकि यहाँ साधारण लोहे को नहीं बल्कि भविष्य की तकनीक को आकार दिया जा रहा होता है।
2: भविष्य की तकनीक, दादू कितना सुंदर विचार है ना।
3: और याद रखो, विज्ञान में केवल कल्पना पर्याप्त नहीं होती बेटा, हर नए विचार को प्रयोगों से सिद्ध करना पड़ता है।
2: यानी असफलता भी उनके काम का हिस्सा होती है।
3: एक वैज्ञानिक असफल प्रयोग से निराश नहीं होता बल्कि ये समझता है कि अब उसे कौन सा रास्ता नहीं अपनाना है।
2: दादू, आपने बताया था कि मिधानी के वैज्ञानिक नई नई मिश्र धातुएं विकसित करते हैं, लेकिन मेरे मन में ये जानने की उत्सुकता है कि किसी नई धातु की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है।
3: देखो, किसी भी विशेष धातु का जन्म भट्टी में नहीं बल्कि एक आवश्यकता से होता है।
2: आवश्यकता से?
3: मान लो रक्षा वैज्ञानिकों को ऐसा लड़ाकू विमान बनाना है जो पहले से अधिक तेज उड़ सके, या अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को ऐसा रॉकेट चाहिए जो अधिक भार लेकर अंतरिक्ष तक पहुंच सके। तब वे सोचते हैं क्या वर्तमान धातुएं इस काम के लिए पर्याप्त हैं?
2: और यदि उत्तर ना हो तो?
3: तो वहीं से मिधानी के वैज्ञानिकों का नया सफर शुरू हो जाता है।
2: नया सफर? तो दादू, सबसे पहले क्या किया जाता है?
3: सबसे पहले वैज्ञानिक ये तय करते हैं कि नई धातु में कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसे कितना मजबूत होना है, कितना हल्का होना है, कितनी गर्मी सहनी है और कितने वर्षों तक बिना खराब हुए काम करना है।
2: यानी पहले लक्ष्य तय होता है फिर धातु बनाई जाती होगी।
3: बिल्कुल बेटा, उसके बाद कंप्यूटर की सहायता से धातु की संरचना पर काम किया जाता है। वैज्ञानिक ये अध्ययन करते हैं कि किन किन धातुओं को किस अनुपात में मिलाने से अपेक्षित गुण प्राप्त हो सकते हैं।
2: लेकिन दादू, क्या केवल अनुपात बदल देने से धातु के गुण बदल जाते?
3: कई बार हाँ, जैसे भोजन में मसालों का संतुलन स्वाद बदल देता है, वैसे ही मिश्र धातु में प्रत्येक तत्व की मात्रा उसके गुणों को प्रभावित करती है।
2: और उसके बाद?
3: फिर चुनी हुई धातुओं को विशेष भट्टियों में अत्यधिक तापमान पर गलाया जाता है। कई बार ये प्रक्रिया निर्वात अर्थात वैक्यूम वातावरण में की जाती है ताकि धातु में कोई अशुद्धि ना मिल सके।
2: दादू, यानी हवा भी तो कभी कभी धातु की गुणवत्ता पर असर डाल सकती है?
3: बिल्कुल, ऑक्सीजन या अन्य गैसें कुछ धातुओं के गुण में बदल जाती हैं। इसलिए विशेष धातुओं के निर्माण में वातावरण तक को नियंत्रित किया जाता है बेटा।
2: फिर धातु तैयार की जाती होगी।
3: नहीं बिटिया, अभी तो ये शुरुआत है। पिघली हुई धातु को सांचे में डाला जाता है, उसके बाद उसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है ताकि उसकी आंतरिक संरचना सही बन पाए।
2: यानी जल्दी ठंडा करने से भी फर्क पड़ सकता है।
3: कई बार ठंडा करने की गति ही धातु की मजबूती तय करती है बेटा, इसलिए हर चरण समय और तापमान के अनुसार नियंत्रित किया जाता है।
2: उसके बाद?
3: उसके बाद बेटा फिर बारी आती है फोर्जिंग प्रेस की। इसमें भारी दबाव देकर धातु को नया आकार दिया जाता है, इससे उसकी आंतरिक संरचना और अधिक मजबूत हो जाती है।
2: मतलब धातु को केवल पिघलाया ही नहीं जाता, उसे गढ़ा भी जाता है।
3: हाँ बेटा, जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाता है, वैसे ही अभियंता धातु को आकार देकर उसे उपयोग के योग्य बनाते हैं।
2: और दादू, फिर उसकी जांच होती होगी।
3: हाँ बेटा, यहीं से शुरू होती है सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा। वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप से उसकी सूक्ष्म संरचना देखते हैं, उसकी कठोरता मापते हैं, उसे खींच कर, मोड़ कर और दबाव देकर परखा जाता है। कई नमूनों को अत्यधिक तापमान और कठिन परिस्थितियों में भी जांचा जाता है।
2: दादू, इतनी सारी परीक्षाएं?
3: क्योंकि बेटा रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुमान की कोई जगह नहीं होती। वहाँ केवल वही धातु पहुँचती है जिसने हर परीक्षा सफलता से पार की हो।
2: सो तो है दादाजी। अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि मिधानी में बनी हर धातु की अपनी एक कहानी होती होगी।
3: हाँ बेटा, बल्कि मैं तो कहूँगा कि हर विशेष धातु की अपनी एक यात्रा होती है।
2: यात्रा?
3: हाँ बेटा, कल्पना करो, अभी अभी मिधानी की प्रयोगशाला में एक विशेष मिश्र धातु तैयार हुई है। गुणवत्ता की हर परीक्षा में वो सफल रही। अब उसे सावधानी से पैक किया जा रहा है। अब जब देश को जहाँ उसकी आवश्यकता होगी वो वहीं पहुँच जाएगी।
2: यानी एक ही संस्थान से निकली धातु अलग अलग क्षेत्रों में जा सकती है।
3: इसी तरह अंतरिक्ष में उपयोग होने वाली सामग्री का चयन बहुत सोच समझ कर किया जाता है। वहाँ ना मरम्मत करने कोई मिस्त्री जा सकता है, ना कोई पुर्जा बदलने की कोई गुंजाइश होती है। इसीलिए धातु पहली बार में ही विश्वसनीय होनी चाहिए।
2: अच्छा दादू, क्या मिधानी की धातुएं समुद्र तक भी पहुंचती हैं?
3: हाँ बेटा, युद्ध पोतों और पनडुब्बियों के अनेक उपकरणों में भी विशेष धातुओं की आवश्यकता होती है। समुद्र का खारा पानी सामान्य धातुओं पर जल्दी असर डाल सकता है, लेकिन कुछ विशेष मिश्र धातुएं ऐसी होती हैं जो कठिन समुद्री वातावरण में भी लंबे समय तक अपना काम बखूबी कर सकती हैं।
2: दादू, क्या केवल रक्षा क्षेत्र ही इन धातुओं का उपयोग करता है?
3: नहीं नहीं बेटा, विशेष धातुओं की आवश्यकता ऊर्जा क्षेत्र में भी पड़ती है। कुछ धातुएं ऐसे उपकरणों में उपयोग होती हैं जो बहुत अधिक तापमान और दबाव पर लगातार काम करते हैं। यदि वहाँ साधारण धातु लगा दी जाए तो पूरा संयंत्र प्रभावित हो सकता है।
2: यानी धातु का चुनाव केवल मजबूती नहीं सुरक्षा से भी जुड़ा होता है।
3: बिल्कुल बेटा, इसीलिए वैज्ञानिक किसी भी धातु को उपयोग में लेने से पहले उसके प्रत्येक गुण का गहराई से अध्ययन करते हैं।
2: अच्छा दादू, इन विशेष धातुओं का उपयोग और कहाँ कहाँ होता है?
3: ये जानकर तुम्हें आश्चर्य होगा, कुछ विशेष धातुओं का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है।
2: सच में?
3: हाँ बेटा, जब किसी व्यक्ति के शरीर में कृत्रिम जोड़ हड्डी का विशेष इम्प्लांट या कुछ अन्य चिकित्सा उपकरण लगाए जाते हैं, तब भी ऐसी धातुओं की आवश्यकता होती है जो शरीर के अनुकूल हों, मजबूत हों और लंबे समय तक सुरक्षित रहें।
2: दादू, मिधानी तो देश के सपनों को आकार देती है।
3: हाँ बेटा, उन सपनों में कहीं एक सैनिक का विश्वास होता है तो कहीं एक वैज्ञानिक का वर्षों का परिश्रम, कहीं एक वैमानिक का साहस होता है और कहीं एक मरीज की नई उम्मीद।
2: दादू, मुझे लगता है कि ये कहानी केवल मिधानी की नहीं बल्कि उन सभी लोगों की है जो चुपचाप देश को मजबूत बनाने में लगे रहते हैं।
3: सही कहा बेटा तुमने, और मैं देश के विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा, यदि तुम्हें विज्ञान अच्छा लगता है, यदि तुम्हें नई चीजें सीखने और समस्याओं का समाधान खोजने में आनंद आता है, तो याद रखना, भविष्य का कोई वैज्ञानिक, अभियंता या शोधकर्ता आज किसी विद्यालय की कक्षा में बैठा हो सकता है। हो सकता है अगली पीढ़ी के विमान, रॉकेट या अंतरिक्ष यान के लिए नई धातुएं खोजने वाला वैज्ञानिक आज हमारी ही तरह जिज्ञासु होकर प्रश्न पूछ रहा हो।
2: यानी बड़े सपनों की शुरुआत छोटे छोटे प्रश्नों से होती है।
3: हाँ बेटा, जिज्ञासा ही विज्ञान की पहली सीढ़ी है और परिश्रम उसकी सबसे बड़ी शक्ति।
2: रुकिए, आप बैठिए, मैं देखती हूँ कौन आया है।
3: हाँ बेटा हाँ, जरा पानी का गिलास दे देना।
2: हाँ दादू, ये रहा आपका गिलास। दादू, मेरी दोस्त आई है, मैं थोड़ी देर में नीचे से आती हूँ।
3: अच्छा बेटा, ठीक है।
1: श्रोताओं, आज के इस रोचक सफर में हमने जाना कि मिधानी केवल विशेष धातुओं का निर्माण करने वाला संस्थान नहीं है, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक क्षमता और रक्षा शक्ति का एक महत्वपूर्ण आधार है। यहाँ कार्यरत वैज्ञानिक और अभियंता अपने ज्ञान, शोध और अथक परिश्रम से ऐसी धातुएं विकसित करते हैं जो हमारे लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, युद्धपोतों, अंतरिक्ष अभियानों और अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को नई शक्ति प्रदान करती है। तो आइए हम भी संकल्प लें कि विज्ञान के प्रति हम जिज्ञासा बनाए रखेंगे, प्रश्न पूछेंगे, सीखते रहेंगे और अपने ज्ञान से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का प्रयास करेंगे। तो श्रोताओं, इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ अब हमें दीजिए अनुमति।
4: नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, लेखन था स्वाति गिरी का। मैं थी आपके साथ भगवती सक्सेना
3: और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।

हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।

0: अरे काका मजा आ गया, क्या बात है लोकल ट्रेन, अरे काका कितनी ऊंची बिल्डिंग है मुंबई में, बाप रे बाप।
1: हाँ बेटा, मैं इस मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 150 साल पुरानी मुंबई की बात कर रहा हूँ। उस समय ऐसी बिल्डिंग तो नहीं थी, लेकिन इस मुंबई में एक रईस मुसलमान परिवार रहा करता था। अच्छा? और उसमें एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी।
0: अरे काका बदरुद्दीन तैयब जी तो नाम सुना है मैंने।
1: हाँ, जैसा कि तुम जानते हो कि पढ़ाई लिखाई करके वो 16 साल का हुआ और सन 1860 में वो बैरिस्ट्री पास करने इंग्लैंड गया।
0: अच्छा, मुंबई से इंग्लैंड।
1: 150 साल पुराना इंग्लैंड।
2: बदरुद्दीन, लगता है हम इंग्लैंड में नहीं यार, हिमालय की वादियों में आ गए। हिमालय की वादियों में।
3: बिल्कुल ठीक कहा यार तुमने।
2: ये यार कहां हमारे बंबई का प्यारा मौसम और कहां ये इंग्लैंड की जानलेवा ठंड यार।
3: अरे जनाब, आईने में जाकर अपनी नाक देखिए, ठंड के मारे कैसी टमाटर जैसी लाल हो रही है।
2: अरे हाँ, नाक का जिक्र किया तुमने तो मुझे याद आया, अरे कॉन्ग्रेचुलेशन डियर।
3: अरे किस बात के लिए भला?
2: अरे मुल्क की और अपने वालदेन की नाक ऊंची करने के लिए।
3: अच्छा अच्छा, समझा। छोड़ो भी अब उस किस्से को।
2: अरे वाह, छोड़ो कैसे, लेक्चर कंपटीशन में अव्वल आए हो अव्वल।
3: अरे वो तो बस यूं ही।
2: जिनकी मादरी जबान अंग्रेजी, उन अंग्रेजों को अंग्रेजी जबान में ही पटकनी दे दी और कहते हैं बस यूं ही। क्या अदा है मियां।
3: अरे भाई, इंग्लैंड में रहते हमें 150 साल भी तो हो गया है।
2: तुम कुछ भी कहो बदर, लेकिन कमाल तुमने किया है, केवल 150 साल। अरे सिर्फ 150 साल में अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच, बाप रे बाप, तीन तीन जबानों पर कमाल की पकड़ की है तुमने।
4: भाई वल्लाह।
3: नहीं, कमाल कुछ नहीं यार, बस मन किया सीखने का, मेहनत की और सीख ली।
2: हम तो ना सीख पाए।
0: डेढ़ साल में अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच, तीनों भाषाओं पे कमांड।
1: अरे सल्लू, हमने पहले ही कहा था कि मियां बदरुद्दीन कमाल के होनार थे। अब दिमाग तो अल्लाह के फजल से तेज पाया ही था और दिमाग तेज बना भी रहा, पर नजरें कमजोर हो गई उनकी। सो मियां बदरुद्दीन को पढ़ाई बीच में ही छोड़कर मादरे वतन यानी हिंदुस्तान लौटना पड़ा।
3: अच्छा।
1: लेकिन सेहत ठीक होने पर बदरुद्दीन पढ़ाई जारी रखने के खातिर फिर लौट गए इंग्लैंड।
0: अरे वाह, ये हुई ना बात काका, ये हुई ना बात।
2: ओहो, वेलकम बैक मियां बदरुद्दीन। कहिए जनाब, सेहत कैसी है?
5: थैंक्स। सेहत तो बिल्कुल उम्दा है। तुम सुनाओ, क्या हाल चाल है यहाँ का?
2: यहाँ भी सब उम्दा ही है। कल ही फिरोज शाह मेहता जी से एक मीटिंग में हिंदुस्तान की मौजूदा हालात पर तकरीर सुनी है।
5: उमेश चंद्र बैनर्जी और वाडिया भी रहे होंगे मीटिंग में, क्यों, ठीक है ना?
2: अरे भाई।

0: कि महारानी विक्टोरिया अब हिंदुस्तान की भी महारानी हो गई हैं।
1: कितनी शर्मनाक बात है ये हम सब के लिए।
2: पर यार हम लोग कर भी क्या सकते हैं यहाँ?
1: जो कुछ होना है और जो कुछ करना है वो हमें ही करना होगा। रियासतें और रियासतदार तो महारानी के इस ऐलान से कि अब उनकी रियासतों को अंग्रेज नहीं हड़पेंगे खुश हैं। उनसे उम्मीदें लगाना फिजूल है।
0: अरे भाई, जनता गदर के बाद पहले से ही सहमी हुई है और फिर कौन करेगा?
1: मैंने अभी तो कहा ना तुमसे कि जो कुछ करना है हमें ही करना होगा।
2: यहाँ गोरों के मुल्क में रहते हुए
1: क्या दिक्कत है इसमें? गोरे हजारों मील दूर रहकर हमारे मुल्क में घुसकर हम पर हुकूमत करने की हिमाकत कर सकते हैं, तो हम उन्हीं के मुल्क में घुसकर इस हिमाकत पर उनको सबक सिखाने का काम क्यों नहीं कर सकते?
0: वाह भाई वाह। भाई देख रहा हूं कि तुम्हारे दिल में आजादी का दिया टिमटिमाने लगा है।
1: नौरोजी, बैनर्जी और मेहता जी की जलाई मशाल को दिया तो ना कहो मेरे दोस्त।
0: मुल्क के हालातों से मन में बेचैनी होने लगी है, लेकिन इसका असर हमारी तालीम पर ना हो इसका ख्याल हमें रखना चाहिए।
1: बजा फरमाते हैं जिल्ले इलाही, बाखुदा तालीम बेहतर ढंग से ही ली जाएगी, कोई बेनियाजी ना बरती जाएगी।
3: आमीन
0: सुम्मा आमीन।
3: दरबार की आज की कार्रवाई बर्खास्त। शब बख़ैर।
4: अरे काका फिर क्या हुआ?
5: तालीम बेहतर ढंग से हासिल की बदरुद्दीन ने और कानून की पढ़ाई पूरी करके बंबई लौट आए।
4: फिर से बंबई लौट आए?
5: हाँ भाई, वो फिर बकाला शुरू कर दी।
4: अच्छा अच्छा।
6: क्या मैं भीतर आ सकती हूँ?
1: कौन? बेगम लाहौल विलाकुवत, हमारे कमरे में आने के लिए आपको कब से इजाजत की दरकार होने लगी?
6: दूसरे कमरों की बात और है, दफ्तर दफ्तर होता है आखिर। किसी मुवक्किल से बात चल रही हो और हम यूं ही दफ्तर में घुसे चले आए, क्या ये ठीक होगा?
1: मुवक्किल? कह तो आप ऐसे रही हैं जैसे हालात से ना वाकिफ हो। क्या समझे हम इसे कि आप भी हमारा मजाक?
6: तौबा तौबा, हम आपका मजाक उड़ाएंगे भला? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया?
1: अरे आप तो नाहक ही नाराज होने लगी।
6: हमारी नाराजगी बेवजह नहीं थी। खैर छोड़िए।
1: छोड़ दिया। हाँ अब बताइए मसला क्या है जो आपने दफ्तर की ओर रुख किया?
6: कुछ खास नहीं, बस यूं ही आजकल आप काफी उलझे नजर आते हैं, खासकर तब जब आप अदालत से लौट कर आते हैं। क्या वहाँ कोई परेशानी है?
1: हाँ परेशानी है, लेकिन मेरे अकेले की नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तानी वकीलों की है।
6: भला ऐसी कौन सी परेशानी है?
1: हाई कोर्ट में सभी जज विलायती हैं और वे हिंदुस्तानी वकीलों के मुकाबले विलायती वकीलों को ज्यादा तरजीह देते हैं।
6: ये तो सरासर नाइंसाफी है।
1: हालात तो यहाँ तक खराब है कि तमाम काबिलियत के बावजूद ये म्यूनिसिपैलिटी, रेलवे, डाक्टर और तमाम कंपनियों के मालिक हिंदुस्तानी वकीलों को विलायती वकीलों के मुकाबले कमतर समझते हैं, क्योंकि वो सारी विलायती कंपनियां हैं ना।
6: ओहो, ये तो परेशानी की बात है।
1: परेशानी सहने की भी एक हद होती है। फिरोज शाह मेहता को ही देख लीजिए, आजकल हिम्मत हार कर घर पर बैठे हुए हैं। वाडिया तो उकता कर सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहले ही काठियावाड़ चले गए थे।
6: क्या वहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है?
1: ठीक चल रहा है कि क्या बात है, वहाँ तो वो नाम और पैसा दोनों ही कमा रहे हैं।
6: आपने क्या सोचा है?
1: छोटी मोटी परेशानियों से घबराने वाला आदमी नहीं है बदरुद्दीन। मैं यहीं डटा रहूंगा और हालात का मुकाबला करूंगा। आई एम सन ऑफ इंडिया, भारत पुत्र हूँ मैं।
6: आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू डियर।
1: थैंक यू।
7: अल्लाहू अकबर।
5: हाँ तो सल्लू, ऐसा था बदरुद्दीन का जज्बा मुल्क के लिए और मुल्क वालों के लिए।
4: वाह।
5: अपनी लगन, मेहनत, विषय की पकड़, सूझबूझ और सॉलिसिटर भाई कमरुद्दीन की मदद से बदरुद्दीन ने धीरे धीरे पैर जमा लिए।
4: वाह काका।
6: तो एडवोकेट बदरुद्दीन तैयब जी साहब ने आखिरकार तमाम मुश्किलातों पर फतह पा ही ली।
1: इस फतह में आप बराबरी से शरीक हैं बेगम, मुबारकबाद कबूल करें।
6: या अल्लाह, हम किस तरह शरीक हैं भला? बिना वकालत किए आपकी बीवी होने के नाते वकीलन भी कहलाती हैं जरूर, पर वो अलग बात है।
1: अरे आप साथ रहकर हौसला अफजाई ना करती तो मुमकिन है कि हम भी हालात का सामना ना कर पाते भाई।
6: इतने मक्खन के बाद तो आपकी पेश की हुई मुबारकबाद दोनों हाथों से थामना पड़ेगी, वरना चिकनाई पर खड़ी फिसल कर गिर जाएगी।
1: इस वक्त कौन आ गया दाल भात में मूसल चंद?
7: अरे भाई बद्रू,
6: बग्घी से तो मूसल चंद नहीं, आपके मित्र गोपी चंद उतर रहे हैं।
1: नाम भले ही गोपी चंद हो, काम तो मूसल चंद का ही किया है।
8: आया भाई।
9: अस्सलाम वालेकुम मियां।
1: वालेकुम अस्सलाम, आइए आइए।
9: ये मूलचंद कौन है मियां? क्या कोई नया मुवक्किल है?
1: उसे छोड़ो मियां, आप तो ये बताइए आना कैसे हुआ?
9: बस तुम्हारी याद खींच लाई यार दोस्त।
1: बैठो बैठो बैठो, रहे नसीब, हुजूर ने याद तो फरमाया।
9: अरे सोचा मुलाकात के साथ दो दो बातें भी हो जाएंगी। अरे हाँ, ये बताओ कि क्या तुम्हें बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉर्ज कैंप बेल के नए फुतूर के बारे में पता है कि नहीं है?
1: अब गोरों की तो आदत हो गई है, कोई ना कोई नया गोल खिलाते रहते हैं। अरे अब कौन सा नया गोल खिलाया है इस कैंप बेल ने?
9: अरे सुनोगे तो हैरान रह जाओगे।
1: अच्छा सुना लीजिए अब आप। बस
9: हुजूर, कैंप बेल साहब ने प्रस्ताव रखा है कि वकालत और वकीलों वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया जाए।
1: वल्लाह क्या दिमाग पाया है हुजूर ने, काबिल तारीफ सच में।
9: अरे आपका दिमाग चल गया है हुजूर मेरे ख्याल से तो। अरे वो आपके पेट में लात मारने का प्रस्ताव लेकर आया है और आप हैं तो उसके दिमाग की तारीफ कर रहे हैं, भाई हद है।
1: पहली बात तो ये है कि कोई किसी के पेट पर लात मारने की कुव्वत नहीं रखता।
9: अच्छा,
1: अरे सब अल्लाह मियां का दिया हुआ खाते हैं यार। रही दूसरी बात, तो मियां बिलाशक दिमाग तो कमाल का पाया है उसने, आप कुछ भी कह लीजिए।
9: अरे मैं कुछ समझा नहीं।
1: मैं समझाता हूँ, देखिए अंग्रेजों को शुभा है कि हिंदुस्तानी वकील, खासकर इंग्लैंड में पढ़े लिखे बैरिस्टर, उनकी हुकूमत के दुश्मन साबित हो सकते हैं।
9: इससे ज्यादा अहमकाना ख्याल दूसरा हो ही नहीं सकता।
1: ना ना ना ना, इसे अहमकाना ख्याल समझना आपकी भूल है हुजूर। कैंपबेल बहुत तेज दिमाग शख्स है, इसीलिए आने वाले समय के खतरों को वो पहले ही पहचान चुका है।
9: मैं अभी भी कुछ नहीं समझ पाया हूँ यार।
1: देखिए वकील जनता के हिमायती बनकर जनता को उनके हकों के बारे में जगा सकते हैं।
9: अच्छा ठीक है।
1: बहस मुबाहिसे और तकरीरों में हम वकील ही तो माहिर होते हैं मियां।
9: वाकई कमाल का दिमाग पाया पट्टे ने।
1: नमूने के लिए देख लीजिए, बंगाल में जो उमेश चंद्र बनर्जी, मनमोहन घोष और लालचंद घोष कर रहे हैं, तीनों वकील,
9: और यहाँ मुंबई में फिरोज शाह मेहता, तेलंग और खुद आप जनता को जगाने का काम जो कर रहे हैं, तीनों वकील।
1: अब मेरी छोड़िए, मैं कुछ खास नहीं कर पा रहा हूँ।
9: अरे खास ही कर रहे हैं आप जनाब, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जनता के हर आंदोलन के पीछे आप वकीलों का ही तो हाथ है, और किसका है?
1: लगता है मियां अंदर करवा गई मानोगे।
9: अच्छा चलते हैं, खुदा हाफिज।
1: अरे जा रहे हो?
9: अरे
1: अरे तो चाय
9: नहीं नहीं
1: थोड़ा सा
9: बस पानी। अरे तो
5: हाँ तो सल्लू, देखा तूने?
4: हाँ काका,
5: बदरुद्दीन सिद्धांत के पक्के और आत्मसम्मानी शख्स थे।
4: ये तो दिखा काका।
5: बहुत गंभीर सौम्य बदरुद्दीन साहब को किसी किस्म की कोई लत नहीं थी, सिगरेट शराब से कोसों दूर।
4: अच्छा।
5: सारे काम नियम पूर्वक करते और समय के पावन थे। आत्मसम्मान तो जैसे कूट कूट कर भरा था उनमें।

0: ये मिस्टर पार्सन क्या समझते हैं अपने आप को?
1: क्या हो गया मिस्टर पार्सन को और आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए?
0: अरे नया आया है बम्बई में जज बनकर, इसलिए सोचा कर्टसी विजिट दे आऊं।
1: ठीक किया आपने।
0: पर मिस्टर पार्सन ने कहाँ ठीक किया?
1: आखिर किया क्या उसने?
0: कहने लगा इस वक्त बिजी हूँ।
1: अरे ये तो सरासर बदतमीजी है।
0: वही तो मैं कह रहा हूँ।
1: पता नहीं ऐसे लोगों को क्या देखकर जज बना दिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने।
0: अरे रंग देखकर, गोरा होने से बड़ी और कोई काबिलियत नहीं होती उनकी नजर में।
1: ओह इसीलिए आप इतनी जल्दी चले आए?
0: मैंने भी कह दिया बहुत काम रहते हैं मेरे पास, बहुत बिजी हूँ, जल्दी आया वहाँ से मैं।
1: ठीक किया आपने।
0: उसे उसकी गलती का एहसास हो गया था शायद, इसीलिए मेरे पीछे पीछे बग्गी तक चला आया और लगा घोड़ों की तारीफ करने, पर मैंने उसकी बातों पर कान नहीं दिया, चला आया वहाँ से मैं।
2: वाह काका, बड़े स्वाभिमानी थे बदरुद्दीन साहब।
3: हाँ सल्लू, ऐसे स्वाभिमानी थे बदरुद्दीन तैयब जी साहब। बकाला धीरे धीरे जमने लगी थी, अब उन्होंने सार्वजनिक कामों में भी खुलकर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सन 1872 में एक नया कानून पास हुआ जिसके तहत 1873 में बम्बई कॉरपोरेशन के कुछ सदस्यों का चुनाव हुआ।
4: अरे बदरुद्दीन साहब आधा वर्ष है, आइए
5: आधा वर्ष।
4: बदरुद्दीन साहब सुना है आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं?
5: ठीक सुना है आपने,
4: हमारे लायक कोई काम हो तो बताइए।
0: अरे हम तो सिर्फ खड़े हो रहे हैं मियाँ, सारे काम तो आप लोगों को ही संभालने हैं।
2: अरे इत्मीनान रखिए, माशाल्लाह फतह हमारी होगी।
0: आमीन आमीन।
4: बदर साहब तो इजाजत दीजिए, आज ही से काम में लगना होगा।
3: हाँ तो सल्लू, बम्बई कॉरपोरेशन का चुनाव उन्होंने शानदार तरीके से जीता, फिर 1882 बम्बई व्यवस्थापिका परिषद में नामजद हुए।
2: अरे वाह।
3: पर खराब सेहत होने के कारण इस्तीफा देना पड़ा, पर जब तक रहे तब तक भारतीयों के अधिकारों की जोरदार तरीके से वकालत करते रहे।
2: वाह वाह।
0: बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के सदर होने के नाते एक और अहम जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ पड़ी है।
1: सदर हैं तो जाहिर है कि जिम्मेदारियां भी होंगी ही।
0: ठीक फरमाती हैं आप, पर इस बार एक अलग किस्म की और ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी एसोसिएशन के कंधे पर आ पड़ी है।
1: ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है भला जिसने आपको इतना परेशान किया हुआ है?
0: परेशान नहीं है हम, परंतु जिम्मेदारी तो आखिर जिम्मेदारी होती है ना, जिसे अच्छे से निभाना होता है। एसोसिएशन के झंडे तले इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन भी होगा और चुनाव भी।
1: फिर तो आपकी मसरूफियत आने वाले दिनों में बहुत बढ़ जाएगी।
0: ठीक फरमाती हैं आप।
1: हमारा तो कहना है कि जो भी करना है जरूर करिए, पर पहले खुद की सेहत का ख्याल रखिए।
0: अच्छा अच्छा, आज आपने वो आपकी हमेशा वाली कहावत नहीं दोहराई, क्या है वो, एक से हाँ क्या,
1: एक
0: से
1: सेहत हजार
0: नियामक।
1: हाँ हाँ उड़ा लीजिए मजाक।
3: इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए खूब धूमधाम से तैयारियां की गईं, पर आखिरी वक्त बदरुद्दीन साहब को किसी काम से कैम्बे जाना पड़ा और वे कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग न ले पाए। दूसरे अधिवेशन में भी वे उपस्थित न रह पाए क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं थी।
1: लीजिए आ गए आपके दोस्त।
0: आइए आइए, पूरे 3.5 मिनट लेट हैं आप, सुनाइए क्या हाल है?
4: 3 मिनट और 41 सेकंड। खैर हमारे हाल चाल तो ठीक है, पर सुना है अंग्रेजों के ठीक नहीं है।
0: जो सबके हाल खराब किए रहते हैं उनके हाल खराब है क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया?
4: ये पूछो कि क्या नहीं हुआ है, कांग्रेस का गठन हुआ है
0: तो
4: अरे अंग्रेज सरकार फिक्रमंद हो गई है, उन्हें शक होने लगा है कि कांग्रेस आगे चलकर उनके लिए मुसीबत का कारण न बन जाए।
0: अरे इन गोरों को तो हम हिंदुस्तानियों की हर बात पर शक होता है,
4: और इस शक का इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं होता है।
0: अरे इलाज करना किसे है, कांग्रेस के अपने मकसद हैं और वो उन मकसदों के लिए काम करेगी।
4: अरे सुनने में तो और बहुत कुछ आया है।
0: और क्या सुना है आपने?
4: ब्रिटिश गवर्नमेंट उसी पुरानी फूट डालो राज करो वाली नीति चला रही है, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ।
0: 100% सच, 100%।
4: क्या कह रहे हो?
0: लॉर्ड डफरिन बम्बई आकर मुझसे मिलकर गए हैं, दोनों कौमों को बांटने वाली भड़काऊ बातें, बोले कांग्रेस तो हिंदुओं की संस्था है और हम लोग कैसे झांसे में आ गए। देखिए
4: आपने क्या जवाब दिया?
0: हमने साफ साफ कह दिया कि मियां डफरीन साहब आपकी दाल यहां नहीं गलने वाली, और बेहतर तो यही होगा कि इस मकसद से आप कहीं और बात करने न जाएं, अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो।
4: आपकी बात समझ में आई या यूं ही सर के ऊपर से निकल गई?
0: देखो मियां, कुछ तुम्हें 12 साल बाद भी नलकी से बाहर निकालो तो टेढ़ी ही निकलती हैं। और कुछ मर्दूत तो नलकी को भी टेढ़ा कर देती हैं।
4: भैया दुम वाली मिसाल तो खूब दी आपने।
0: कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में सेहत खराब होने की वजह से हम नहीं जा पाए, पर पता चला कि उसमें मुस्लिमों ने भाग नहीं लिया था।
4: हाँ भाई, हमें भी इस बात का पता चला था और सुनकर बहुत अफसोस हुआ था इस पर।
3: कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन का अध्यक्ष सर्वसम्मति से बदरुद्दीन तैयब जी को चुना गया। अध्यक्ष पद से उन्होंने बड़ा प्रभावशाली, ओजस्वी और मर्मस्पर्शी भाषण दिया। जाति के आधार पर आपस में भेदभाव ना करने की सलाह दी और बंटवारे के खतरों से आगाह किया।
0: कौन है भाई, कौन है?
2: अरे साहब, आपकी चिट्ठी आई है पोस्टमैन ने।
0: ओ, आता हूँ, ठहरो एक मिनट, मैं जाता हूँ, तुम बैठो।
3: ले लीजिए।
0: कैसे हो? डियर मिस्टर बदरुद्दीन तैयब, प्लीज मेक ऑफ द जज। बेगम, बेगम मुबारकबाद। अरे भाई, अदालत में एक जगह खाली है जज की, सरकार ने हमें जज बनने का ऑफर दिया है।
1: क्या? अरे सच में?
0: खत का मजमून तो यही कह रहा है भाई।
1: फिर क्या सोचा है आपने?
0: अब सोचना क्या है, कबूल करेंगे और क्या।
1: क्या अंग्रेज सरकार की मुलाजिमत करेंगे?
0: बेगम, इसका दूसरा पहलू देखिए। इन गोरे जजों के हाथों तो हिंदुस्तानियों को इंसाफ मिलने से रहा। कम से कम एक काला हिंदुस्तानी दूसरे काले हिंदुस्तानियों को इंसाफ तो दिला पाएगा।
1: बात तो एकदम सच है, पर क्या ये मुमकिन होगा?
0: देखिए बेगम, आदमी उसूलों का पक्का बना रहे बस, फिर कुछ नामुमकिन नहीं रहता। किसी ताकत या खतरे से टकरा जाने की ताकत आ जाती है उसमें। कल ही अपना जवाब भिजवा दूंगा।
1: कल क्यों, आज क्यों नहीं? भूल गए पुरानी सीख, काल करे सो आज कर।
2: अरे वाह, तो काका बदरुद्दीन तैयब जी जज बन गए।
3: और थोड़े ही समय में बदरुद्दीन तैयब जी साहब जज के रूप में खासे मशहूर हो गए।
2: वो तो होना ही था काका। क्या
3: काबिलियत और स्वतंत्र विचारों के दम पर उन्होंने अच्छे अच्छों को कायल कर दिया। उनकी निष्पक्षता और न्याय प्रियता की चर्चा हर कहीं हर कोई करता था।
2: वाह।
4: अरे कमाल कर दिया बदर साहब, आपने तो वाकई कमाल कर दिया। काफी लोगों की निगाहें लगी थी इस मसले पर कि इस पेचीदा मामले पर देखें जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं।
0: हमें भी इस बात का भली भांति एहसास था।
4: अच्छा, ऐसे फैसले करते समय कुछ घबराहट होती है क्या?
0: यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं होता।
4: अगर हम आपकी जगह होते तो हमें तो घबराहट होती, क्यों भाई?
0: हमारे ख्याल से एक बात बहुत साफ होनी चाहिए हर जज के दिमाग में।
4: और वो क्या है?
0: यही कि इंसाफ केवल कानून की किताबों में ढूंढने से नहीं मिलता, क्योंकि उनमें केवल दफाएं और उन दफाओं में दी जाने वाली सजाएं होती हैं बस।
4: तो इंसाफ कहां रहता है?
0: आपके साफ दिलो दिमाग में रहता है। दिल की गहराई से आवाज उठे और उसकी ताईद आपका दिमाग भी करे तो समझिए कि आप इंसाफ की राह पर हैं।
3: वकालत और फिर जज का काम करने के अलावा बदरुद्दीन साहब ने राजनीति, शिक्षा और समाज सुधार के कामों को भी बखूबी किया।
2: अच्छा।
3: जज रहते हुए भी उनकी इजलास में एक बार लोकमान्य तिलक की जमानत का मामला भी आया।
4: अरे वाह। अच्छा,
3: लोकमान्य तिलक। हाँ सुनो, तो किस्सा कुछ यूं था कि जून 1897 में रैंड नाम के एक अंग्रेज की हत्या कर दी गई।
4: आदावर्जे बदर साहब, और क्या हाल चाल है?
0: आदावर्जे, आजकल तो ये रैंड मर्डर का मामला बहुत गर्म है
4: भाई। पता चला है कि अंग्रेज बहुत बौखलाए हुए हैं। हुकूमत के खिलाफ इसे साजिश समझ रहे हैं।
0: ठीक कहा आपने, ये अशांति और उत्तेजना फैलाने के इल्जाम में सरकार ने तिलक के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है।
4: लेकिन ये रैंड मर्डर से तिलक जी का क्या संबंध?
0: बात आपको समझ में आ गई है पर सरकार को नहीं मिया।
4: मामला क्या है?
0: अरे देखिए, तिलक एक अखबार निकालते हैं, केसरी, पता है ना आपको?
4: जी जी जी।
0: तिलक ने शिवाजी मेले में शिवाजी द्वारा की हत्या को उचित ठहराने वाले भाषण दिए, हाँ, और यही भाषण केसरी में छाप दिए। माना मिल गया सरकार को।
4: सरकार तो नाइंसाफियों की हदें पार कर रही है।
0: तिलक की जमानत की दरखास्त 2 बार खारिज की जा चुकी है। तीसरी बार मेरे सामने मेरी अदालत में जमानत के लिए दरखास्त दाखिल की गई है, मालूम है आपको?
4: तीसरी बार? अरे साहब, आपको तो कोई परेशानी नहीं होगी ना?
0: बिल्कुल नहीं, कल जमानत की दरखास्त पर फैसला सुनाना है।
3: और अगले रोज फैसला सुनाया बदरुद्दीन तैयब जी साहब ने।
0: ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तिलक एक सज्जन और विद्वान पुरुष हैं, लिहाजा सुनवाई के वक्त वे अदालत नहीं पहुंचेंगे, ऐसा शक करने की कोई वजह नहीं बनती। जमानत मंजूर न होने की दशा में इंसाफ का गला घुट जाएगा, क्योंकि मुमकिन है कि 1 महीने बाद वे बेगुनाह साबित हो जाएं। इसीलिए जमानत मंजूर करना ही न्याय संगत होगा।
3: निष्पक्ष न्यायाधीश के रूप में बदरुद्दीन की ऐसी धाक थी सल्लू कि इस फैसले के खिलाफ बोलने का साहस किसी को ना हुआ, अंग्रेजों को भी नहीं हुआ। इस महान देशभक्त और समाज सुधारक ने 11 साल जज के रूप में गुजारे और 19 अगस्त 1906 को इंग्लैंड में हार्ट फेल से वे गुजर गए। सारा देश शोक में डूब गया। हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा। निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
2: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी, हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: अभी आपने सुना हिंदुस्तान हमारा बद्रुद्दीन सैयद पर आधारित कार्यक्रम। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त है कार्यक्रम परिक्रमा का। आइए सुनते हैं परिक्रमा।

स्वर्णिषाद संगीत संस्थान ने अक्षदा सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से शास्त्रीय संगीत, गुरु शिष्य परंपरा और संगीत साधना को समर्पित वार्षिक समारोह स्वर उत्सव 2026 बुधवार को रविंद्र भवन में आयोजित किया। अंजनी सभागार में अलग अलग आयु वर्ग के स्टूडेंट्स ने राग आधारित गायन से अपनी संगीत साधना का परिचय दिया। नन्हे कलाकारों ने स्वर पुष्प में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना वरदे वीणा वादनी वरदे प्रस्तुत की। इसके बाद राग भूपाली, खमाज, मेघ और बहार की प्रस्तुतियों ने शास्त्रीय संगीत के रंग दिखाए। स्वरांजलि स्वर मेघ और स्वर बहार समूह ने बंदिश, तराना, ठुमरी, भजन और फिल्म संगीत को एक ही कड़ी में परोया। स्वर बहार में अलग अलग उम्र के साधकों ने साथ प्रस्तुति देकर संदेश दिया कि संगीत साधना की कोई उम्र नहीं होती। समापन स्वर संगम की प्रस्तुति से हुआ।

बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध केंद्र के सभागार में साक्षात्कार श्रृंखला बाल साहित्य संवाद 2 की दूसरी कड़ी आयोजित हुई। इसमें वरिष्ठ बाल साहित्यकार मालती बसंत का साक्षात्कार लिया। श्रृंखला में हर महीने एक बाल साहित्यकार से 45 मिनट का साक्षात्कार होगा, जिसमें बच्चों के लिए लिखे साहित्य पर चर्चा की जाएगी। प्रशासन अकादमी के ऑडिटोरियम में बुधवार को प्रसिद्ध कवियत्री व प्रशासनिक अधिकारी डॉ. ममता खेड़े की पुस्तक लोकावतरण का विमोचन हुआ। पुस्तक भारतीय ज्ञान परंपरा और लोक बोलियों के मिलन का दस्तावेज है। इसमें प्रत्येक वैदिक सूक्त को पहले संस्कृत में, फिर निमाड़ी में भावांतर और अंत में हिंदी अनुवाद के साथ प्रस्तुत किया गया। यह प्रस्तुति अध्यात्म और लोक संस्कृति के पाठकों से जोड़ती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कथाकार संतोष चौबे ने की। मुख्य अतिथि मनोज श्रीवास्तव ने इसे श्रम साध्य और मंगलकारी प्रयास बताते हुए लोक और अध्यात्म के बीच सेतु कहा।

भविष्य में अधिकांश काम रोबोट करेगा। कचरा सफाई से लेकर पार्किंग तक इंतजाम मशीनों के हवाले होंगे। काम करने के तरीके बच्चों ने मॉडल के जरिए समझाए। आगे वाले समय में तकनीक की कल्पना करते हुए मॉडल प्रतियोगिता में ये नजर आए। मौका सीएम राइज स्कूल में आयोजन का था। मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी संस्थान के एक्सपर्ट की मौजूदगी में प्रतिभा चयन हुआ। बच्चों के बीच रोबोटिक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। मॉडल के रूप में बच्चों ने अपने हुनर और तकनीक की सोच को सामने रखा। मॉडल के रूप में सेंसर, एडिनो और कोडिंग की मदद से स्मार्ट डस्टबिन, स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था दिखाई गई।

पार्श्व गायक मुकेश की 50वीं पुण्यतिथि पर कायस्थंभ मध्य प्रदेश का सदाबहार गीतों का कार्यक्रम कोलार में गुरुवार को होगा। इसमें मुकेश दा को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कार्यक्रम में गायक के सहाय, संजय खरे, शैलेश श्रीवास्तव, राकेश रायजादा, ब्रजेश सक्सेना, एस के श्रीवास्तव और रत्नाकर ये संगीतमय प्रस्तुति देंगे। कायस्थम के पदाधिकारियों ने पहुंचने की अपील की है।

गीत जीवन जीने की वह ज्ञान है जो सफल बनाता है, अच्छे और बुरे की पहचान सिखाता है। जो व्यक्ति अपनी पहचान भूल जाए वह कभी भी सही निर्णय नहीं कर सकता है। ये बात लेखक डॉक्टर विजय अग्रवाल ने कही। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के गुरुजनों के लिए गीता विषय पर उन्होंने व्याख्यान दिया। बोले, श्रीमद् भागवत गीता हमें पहचान के संकट की समस्या का समाधान देती है। बताया, ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मेंटल पीस का प्रैक्टिकल मैनुअल है।

गुहर महल में बुधवार को लोक कलाकारों ने गीतों की प्रस्तुति दी। सावन उत्सव के मौके पर आयोजन किया गया था। छोटी गगन होने के चलते आज भीड़ अधिक रही। यहां 80 कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इसमें कपड़े से लेकर लकड़ी और ज्वेलरी शामिल है। आयोजन 7 दिन चलेगा। भोपाल हाट में राखी मेले का तहत कलाकारी देखने को मिल रही है। तो ये थी परिक्रमा। सुनते रहिए FM 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद है, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जैक्स स्पेक्स और जापानी मर्सेनरी, एक साम्राज्यवादी सैन्य प्रयोग 1615। 1615 में हेराडो के संकरे और व्यस्त बंदरगाह में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य व्यापारी जैक्स स्पेक्स ने भटकते हुए लोगों की एक बेचैन भीड़ को देखा और उसमें एक साम्राज्य के उद्धार का रास्ता पाया। उस समय VOC सैन्य जनशक्ति के पुराने संकट से जूझ रही थी। यूरोपीय सैनिक महंगे थे, देरी से पहुंचते थे और अक्सर 8 महीने की लंबी समुद्री यात्रा के दौरान ही दम तोड़ देते थे। स्पेक्स को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे दक्षिण पूर्व एशिया में कंपनी के मोहरे के रूप में काम करने के लिए साहसी पुरुषों की एक व्यवस्थित भर्ती शुरू करें। यह कोई गुप्त अभियान नहीं था। टोकुगावा शोगुन की स्पष्ट सहमति के साथ स्पेक्स ने हेराडो की लड़खड़ाती फैक्ट्री को एक रणनीतिक भर्ती केंद्र में बदल दिया। जॉन पीटरजून कोएन जैसे उच्च पदस्थ अधिकारी जापानियों को एक विशेष मार्शल रेस यानी लड़ाकू प्रजाति के रूप में देखते थे, जिनका मानना था कि ये योद्धा केवल अपनी प्रतिष्ठा के बल पर स्थानीय आबादी को शांत कर सकते हैं। स्पेक्स का नवाचार उन कठोर अनुबंधों में था जो उन्होंने इन उत्तेजित जुझारू रंगरूटों को भरोसेमंद सैनिक बनाने के लिए तैयार किए थे। 31 दिसंबर 1615 को उन्होंने 59 रंगरूटों के एक दल को 3 साल के पूर्ण आज्ञा पालन के लिए बाध्य किया, जिसमें उन्होंने डच अधिकारियों को कभी भी जवाब न देने का संकल्प लिया। ये समझौते विशेष रूप से डरावने थे क्योंकि इनमें सामूहिक दंड का प्रावधान था। यदि कोई सैनिक विद्रोह करता तो VOC जापान में मौजूद उसके माता पिता, पत्नी, बच्चों और गारंटरों को सजा देने का अधिकार रखती थी। स्पेक्स ने इस सैन्य दल को विशेष हथियारों से लैस रखा था। जापानी आग्नेयास्त्र, धनुष बाण, अलग अलग लंबाई के अनेक भाले, ये दस्ता फॉर्च्यून नामक एक स्थानीय जहाज पर सवार हुआ जिसे स्पेक्स ने विशेष रूप से इस यात्रा के लिए खरीदा और मरम्मत करवाया था। हालांकि पेशेवर भाड़े के सैनिकों का सपना जल्द ही एक कड़वी हकीकत में बदल गया। 4 महीनों तक रंगरूट हेराडो में ही रहे, जहां शहर के शराब खानों और जुआ घरों ने उनके बीच असंतोष पैदा कर दिया। ओसाका से भर्ती किए गए कप्तान कुस्नुकिजी इत्सिमोन के अकुशल नेतृत्व में बाटन की 51 दिनों की कठिन यात्रा के दौरान ये दल विद्रोह के करीब पहुंच गया। स्पेक्स ने खुद बाद में तर्क दिया कि तलवार ही एकमात्र दवा थी जिसे ये सैनिक वास्तव में समझते थे। हालांकि इन सैनिकों ने बांदा द्वीपों के क्रूर दमन और बाजार की झड़पों में असाधारण निडरता का प्रदर्शन किया, लेकिन कई डच अधिकारियों की नजर में वे हमेशा एक विद्रोही भीड़ ही रहे। ये प्रयोग अंततः 1623 के अम्बोइना साजिश के बाद पूरी तरह विफल हो गया, जिसके बाद VOC ने जापानी सैनिकों पर हमेशा अविश्वास रखने का फैसला किया। भले ही जैक्स स्पेक्स का डच झंडे के नीचे जापानी सैनिकों की लंबी कतारें मार्च कराने का सपना कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एशियाई सैनिकों की व्यवस्थित भर्ती का वो बुनियादी ढांचा तैयार कर दिया जिसने अंततः पूर्व में यूरोपीय साम्राज्यों की सफलता को परिभाषित

0: लश्कर और सीधी स्टीमशिप युग का मानवीय ईंधन। 1880 के दशक में एक P&O स्टीमशिप भाप के जहाज के डेक पर खड़े होने की कल्पना कीजिए। डेक के ऊपर का दृश्य अविनाशी आकर्षण और गहरी संतुष्टि से भरा है। अमीर यात्री शामियाने के नीचे आराम कर रहे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, जबकि जहाज हिंद महासागर के शांत पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे जहाज उन मानसूनी हवाओं से बेपरवाह है जो कभी यहाँ के जीवन को नियंत्रित करती थी। लेकिन पॉलिश किए हुए टी की लकड़ी के नीचे जहाज के दम घोटने वाले भीतरी हिस्सों में एक अलग ही दुनिया मौजूद है। ये लश्करों और सीधियों की दुनिया है। वे गुमनाम समुद्री मजदूर जिन्होंने हिंद महासागर को ब्रिटिश झील बनाना संभव बनाया। जैसे जैसे 19वीं शताब्दी आगे बढ़ी, औद्योगिक क्रांति ने हिंद महासागर को बदल दिया। 1869 में स्वेज नहर के खुलने और भाप तकनीक के उदय का मतलब था कि जहाज अब हवाओं के गुलाम नहीं रहे। हालांकि इन नए यांत्रिकी दिग्गजों को चलाने के लिए भारी मात्रा में मानवीय श्रम की आवश्यकता थी। 1914 तक ब्रिटिश व्यापारिक बेड़े में 51,600 से अधिक लश्कर कार्यरत थे। लश्कर मुख्य रूप से भारतीय नाविक थे, हालांकि वे बेड़े के संचालन के लिए अनिवार्य थे, लेकिन वे एक सख्त नौसैनिक पदानुक्रम में सबसे निचले पायदान पर थे। उनका जीवन एशियाटिक आर्टिकल्स द्वारा शासित था, एक कानूनी ढांचा जो बंधुआ मजदूरी के रूप में कार्य करता था। इसे विशेष रूप से यूरोपीय नाविकों को दिए जाने वाले अनुबंधों से अलग और कम सुरक्षात्मक बनाया गया था। ये वे टेक हैंड और विशेषज्ञ थे जिन्होंने पारंपरिक डाउ और जंग जहाजों से निकलकर भाप युग के जटिल रखरखाव और संचालन को संभाला था। जहाज के निचले हिस्से में और भी गहराई पर सीधी काम करते थे। ये अफ्रीकी मजदूर थे जिनमें से कई गुलाम मूल के थे या वे स्वतंत्र लोग थे जिन्होंने बॉम्बे या जंजीबार जैसे बंदरगाहों में नए जीवन की तलाश की थी। उनका काम शायद समुद्र के इतिहास में सबसे कठिन था। वे फायरमैन थे। उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर की तीव्र गर्मी में सीधी अपनी शिफ्ट कोयले को उन दहकती भट्टियों में झोंकने में बिताते थे जो बॉयलरों को चालू रखती थी। ये कमर तोड़ देने वाला और खतरनाक काम था जो ऐसी अंधेरी जगहों पर किया जाता था जहां रोशनी के नाम पर केवल आग की लपटों की चमक होती थी। लश्कर और सीधी की कहानी औद्योगिकरण और विस्थापन की कहानी है, जबकि स्टीमशिप को अक्सर प्रगति के प्रतीक के रूप में सराहा जाता है। जिसने मानसून के अत्याचार पर विजय प्राप्त की वो प्रगति एक विविध बहुजातीय कार्यबल के कंधों पर बनी थी। ये लोग एक नई प्रकार की अफ्रो एशियाई पहचान का प्रतिनिधित्व करते थे, एक ऐसी पहचान जो सुहाली तट के बाजारों या गुजरात के संघों में नहीं बल्कि वैश्विक पूंजीवाद के इंजन के रूप में गढ़ी गई थी। वे पाल वाली प्राचीन दुनिया और कंटेनर जहाजों वाली आधुनिक दुनिया के बीच के सेतु थे। लश्करों और सीधियों के बिना ब्रिटिश झील सूख जाती और 19वीं सदी के हिंद महासागर का आपस में जुड़ा जाल रुक जाता। वे शांत और कालिक से सने हुए नायक थे जिन्होंने उस वैश्वीकृत दुनिया को ऊर्जा दी जिसे हम आज पहचानते हैं।
1: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें। ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
2: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस टेस्ट ट्रैक ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
4: ये मेरा इंडिया।
3: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
5: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
6: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद के भारत भ्रमण के अंतिम पड़ाव के रूप में वे दक्षिण भारत के केरल राज्य में पहुंचे। वहां वे प्रोफेसर सुंदरराम अय्यर के घर पर 9 दिन ठहरे थे। सुंदरराम जी के लेखन से उन दिनों की घटनावली हमें मालूम पड़ती है। सुंदरराम जी वहां के राजकुमार मार्तंड वर्मा के गृह शिक्षक थे। दूसरे ही दिन सुंदरराम जी स्वामी जी को लेकर राजकुमार से मिलने गए। बातों के क्रम में स्वामी जी ने बताया कि भ्रमण के दौरान अनेक देशी राजाओं के साथ उनकी भेंट हुई थी और वे अनेक राज दरबारों में भी उपस्थित थे। ये सुनकर राजकुमार ने पूछा,
1: स्वामी जी, आप तो इतने राजा महाराजाओं से मिले हैं, इनमें से सबसे अच्छे राजा कौन है?
2: मैं जितने राज्यों में गया हूँ उन सब में बड़ौदा के गायकवाड़ की राज्य संचालन क्षमता, देश प्रेम, उत्साह और दूरदर्शिता ने मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया है। छोटे से खेतड़ी राज्य के राजा से भी परिचय हुआ और वहां के राजा के उत्कृष्ट गुणों को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। परंतु उसके बाद जितना दक्षिण की ओर आगे बढ़ा हूँ, राजाओं और सामंत राजकुमारों के गुणों और क्षमता में क्रमशः कमी होती दीख पड़ी है।
3: इसके उपरांत स्वामी जी ने राजकुमार से पूछा,
2: राजकुमार, आप तो अभी विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है और आप आगे क्या करना चाहते हैं?
1: मैं राज्य के लोगों से घनिष्ठ रूप से मिलना जुलना चाहता हूँ, उन लोगों के कल्याण साधन के लिए यथा साध्य करूंगा, यही मेरी इच्छा है।
4: एक दिन उन्होंने कहा, मानव के सनातन विश्वास पर कुछ लोग विज्ञान का सहारा लेकर मनमाने तरीके से प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा,
2: यदि धर्म के क्षेत्र में अंधविश्वास है तो विज्ञान के क्षेत्र में भी यथेष्ट अंधविश्वास है। विश्व प्रपंच के संबंध में जो यांत्रिक व्याख्या या विकासवादी व्याख्या की जाती है, ये दोनों समुचित और संतोषजनक नहीं पाई गई हैं। फिर भी ऐसे अनेक लोग हैं जिन्हें लगता है कि विश्व के सारे रहस्य उद्घाटित हो गए हैं। पाश्चात्य मनोविज्ञान मानव प्रकृति के छुपे हुए पक्षों और उनकी रीति नीति की थाह पाने में बुरी तरह विफल रहा है। पाश्चात्य विज्ञान की गति जहां रुक गई है, वहां भारतीय मनोविज्ञान आगे बढ़कर मानव सत्ता की उच्चतर अवस्था और सहानुभूति के क्षेत्र में जो नियम कार्य करते रही हैं, उन्हें किस प्रकार वास्तविक जीवन में उतारना होगा वो समझा देता है, दिखा देता है और सिखा देता है।
4: महाराज, विषय को थोड़ा विस्तार से समझाइए।
2: भारतीय ऋषियों महात्माओं सनातन का धर्म ही मानव मन के गुप्त एवं सूक्ष्म क्रियाकलापों का तत्व समझ सकता है और उसकी गलत वासनाओं और लालसाओं पर विजय प्राप्त कर सत्य का अनुभव करा सकता है। अन्य सारे विषय माया हैं और उसी के पास प्रकाश है, इसे समझा देता है।
0: उन्होंने और भी कहा था कि भारत के सभी वर्गों के लोगों को तथा नारियों को भी संस्कृत पढ़ना चाहिए ताकि वे वेद उपनिषद वेदांत पढ़ सकें, समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। इस तरह वे स्वयं ही अपनी सभी समस्याओं का निराकरण कर सकेंगे।
4: स्वामी जी के ठहरने के तीसरे या चौथे दिन मैंने उनके अनुरोध पर मद्रास के महालेखापाल के सहायक श्री मन्मथनाथ भट्टाचार्य जी की खोज की। तब से स्वामी जी सुबह का समय भट्टाचार्य के घर पर ही व्यतीत किया करते एवं भोजन भी वहीं करते। एक दिन जब मैंने अनुरोध किया कि वे सारा समय भट्टाचार्य को ही देते हैं, तब उन्होंने एक ऐसा उत्तर दिया जो स्वामी जी के मुख से ही शोभा देता है। उन्होंने कहा कि भट्टाचार्य उनके विद्यालय या महाविद्यालय के सहपाठी थे और कलकत्ता संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य पंडित श्री महेश्वर चंद्र न्याय रत्न के सुपुत्र होने के नाते स्वामी जी पर उनका विशेष अधिकार है।
3: श्री सुंदरराम ने अपने संस्मरण में और भी बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख किया है।
4: एक बार श्री पिराबी पेरुमल पिल्लई नामक त्रिवेंद्रम के हुजूर ऑफिस के एक सहायक दीवान या पेशवर ने स्वामी जी को बातचीत में काफी देर तक रोके रखकर उन्हें अपने बंगाली मित्र श्री भट्टाचार्य के घर नहीं जाने दिया। वो ये पता करने आए थे कि स्वामी जी भारतीय उपासना पद्धति और धर्म के संबंध में कितना क्या जानते।

0: बातचीत के अंत में पिल्लई साहब भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि वे कम से कम उतनी देर के लिए सांसारिक तुच्छ और मिथ्या विषयों से ऊपर उठ गए थे। विदा के समय उन्होंने बारंबार भक्तिभाव से भरकर साष्टांग प्रणाम किया और वे कह गए कि उन्होंने जीवन में कभी उनकी तरह कोई व्यक्ति नहीं देखा और इस उपदेश की बात वे कभी भूलेंगे नहीं।
1: सुंदर राम ने और भी कहा था,
0: एक बार मैंने उनसे एक सार्वजनिक व्याख्यान देने का आग्रह किया। इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले कभी भी सार्वजनिक व्याख्यान नहीं दिया है और ऐसा व्याख्यान देने पर वे निश्चय ही दयनीय रूप से विफल और हास्यास्पद होंगे। तब मैंने पूछा कि यदि सच है तो वे शिकागो धर्म महासभा के गणमान्य प्रबुद्ध व्यक्तियों के समक्ष कैसे खड़े हो सकेंगे। मैंने पहले ही उनसे सुन रखा था कि मैसूर के महाराजा ने उनसे सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में वहां उपस्थित रहने का अनुरोध किया। स्वामी जी ने मेरे प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया कि मुझे लगा था कि ये टाल मटोल कर देने के सिवाय और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा,
2: परमेश्वर की यदि यही इच्छा है कि मुझे उनका प्रतिनिधि बनना होगा और यदि उन्हें मेरे माध्यम से ही सत्य एवं पवित्र जीवन यापन के लिए कार्य करा लेना होगा तो परमेश्वर ही मुझे उपयुक्त शक्ति देंगे।
0: मैंने उन्हें तभी बता दिया था कि मैं ऐसी दैवी सहायता की संभावना में विश्वास नहीं करता। उसी क्षण उन्होंने हथौड़े की चोट की भांति तीक्ष्ण भाषा में मेरी भर्त्सना करते हुए कहा,
2: हालांकि आप बाहर से आचार निष्ठा और बातचीत में कट्टर हिंदू हैं, परंतु भीतर से संदेहवादी, क्योंकि भगवान की कृपा से मैं संसार के कल्याण साधन में कहां तक समर्थ हो सकूंगा, इस विषय में आपको संदेह है।
1: सुंदरराम जी आगे लिखते हैं,
0: वे जब तक हम लोगों के घर में थे सदैव हम लोगों के हृदय को उन्होंने विमोहित रखा था। हर एक के प्रति उनका व्यवहार अत्यंत मधुर, दोस्ताना और सौजन्यमय था। मेरे लड़के अक्सर उनके साथ रहा करते और एक तो अब भी बात बात में उनके विचारों को उद्धृत करता है। हम लोगों के घर में उनके आगमन एवं उनके आकर्षक हाव भाव और बोल चाल उसे अत्यंत पूरा याद है। स्वामी जी ने तमिल भाषा के अनेक शब्द सीख लिए थे और हम लोगों के रसोइये से तमिल में बोलकर वो आनंदित होते थे। उनके चले जाने पर हम लोगों को बहुत दिनों तक ऐसा लगता था जैसे हम लोगों के घर का प्रकाश ही बुझ गया है।
3: सुंदरराम जी संस्मरण के अंत में लिखते हैं कि स्वामी जी अपने बंगाली साथी श्री भट्टाचार्य के साथ 22 दिसंबर 1892 ईस्वी में जब मेरे घर से जाने वाले थे उसी समय घटना हुई जिसका उल्लेख करना आवश्यक है। आचार्य एवं जन समाज में धार्मिक पंडित और विनयी के रूप में परिचित श्री वंचीश्वर शास्त्री श्रावणकोर के प्रथम राजकुमार के आचार्य थे और मेरे अनुरोध पर राजकुमार ने उन्हें मेरे पुत्र का संस्कृत अध्यापक नियुक्त कर दिया था। स्वामी जी के इतने दिनों तक मेरे घर में रुकने के दौरान एक भी शास्त्री वाहन नहीं आए।

0: जी त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी गए। समुद्र शार्क नामक खतरनाक समुद्री मछलियों से भरा था। नाव से समुद्र पार करके विशाल शिलाखंड तक जाने के लिए माजी ने एक आना मांगा, पर स्वामी जी के पास एक फूटी कौड़ी तक न थी। अतः उन्होंने तैरकर समुद्र पार किया और रात भर गहन चिंतन करके सुबह फिर तैरकर ही तटभूमि पर लौट आए।
1: कन्याकुमारी का मंदिर भारत के अंतिम दक्षिणी छोर पर स्थित है। उसके दक्षिण की ओर उत्ताल हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। समुद्र में अनेक छोटे बड़े पथरीले द्वीप हैं। मंदिर में कुमारी माँ शिव के ध्यान में निमग्न है। स्वामी जी ने माँ का दर्शन कर पूजा की और वहीं बैठकर

0: यही है कि सनातन धर्म का जीवन में कहीं भी सक्रिय भाव से प्रयोग नहीं हुआ है। धर्म यथार्थ रूप में पालन कर और जीवन में उसे स्थापित कर कोई जाति कभी भी अधःपतित नहीं हुई, बल्कि इतिहास से ज्ञात होता है कि जो देश सफलता पाने में समर्थ हुए हैं उनमें सक्रिय धर्म ही उनकी श्रेष्ठतम शक्ति थी।
1: भारत की दरिद्र जनता के दुख दारिद्र के साथ समान सर में बंधा उनका हृदय रो उठा। वे भारत की अवहेलित निम्न जातियों के साथ एकाकार हो गए। उन लोगों का अपमान उनका अपमान था। धर्म के संरक्षक ही युगों से जनता को पैरों तले दबाकर रखना चाहते हैं, इस बात को सोचकर वे दुखी हो उठे। उनका चिंतन कितना गहन था उसका परिचय उनके लिखे एक पत्र में पाया जाता है। उन्होंने लिखा था,
2: ये सब देखकर, खासकर देश में गरीबी और अज्ञानता को देखकर मुझे नींद नहीं आती। मैंने एक योजना सोची तथा उसे कार्यान्वित करने का मैंने दृढ़ संकल्प किया। कन्याकुमारी में माता कुमारी के मंदिर में बैठकर, भारत की अंतिम चट्टान पर बैठकर मैंने सोचा कि भारत में कितने सन्यासी घूमते फिरते हैं और लोगों को दर्शन शास्त्र की शिक्षा देते हैं। ये सब निरा पागलपन है। क्या हमारे गुरुदेव नहीं कहा करते थे कि खाली पेट से धर्म नहीं होता? वे लोग जो जानवरों सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसका कारण उनका अज्ञान है। संभ्रांतों ने युग युग से उनका खून चूसकर पिया है और उन्हें अपने पैरों से कुचला है। भारत के लोग भला धन देंगे, इसलिए मैं अमेरिका आया हूं। स्वयं धन कमाऊंगा और तब देश लौटकर अपने जीवन के इस एकमात्र उद्देश्य की सिद्धि के लिए अपना शेष जीवन निछावर कर दूंगा।
1: त्याग और सेवा के माध्यम से उनकी कार्यप्रणाली तैयार हो गई। धर्म की निंदा न कर उन्होंने उसे देश के मर्म स्थल में पुनः प्रतिष्ठित देखना चाहा था। शिक्षा का विस्तार, सर्वहारा जाति का अभ्युत्थान और दारिद्र का नाश। इसके लिए वे अमेरिका जाना चाहते थे। वहां भारत के सनातन धर्म के प्रचार के साथ साथ भारतवासियों के लिए धन संग्रह भी करना चाहते थे। वे भारत की आध्यात्मिक संपदा पाश्चात्य जगत में वितरण कर उसी के विनिमय के रूप में अर्थ लाभ करने की आशा रखते थे। ये उनकी परिकल्पना थी। उन्होंने ये भी चाहा था कि पश्चिम के कर्म के साथ पूर्व के भगवत ध्यान का मिलन कराना होगा।
0: इसके बाद सन्यासी हाथ में दंड कमंडल लेकर पैदल ही रामनाथ की ओर चल पड़े। वहां पर रामनाथ के राजा श्री भास्कर सेतुपति से उनकी मुलाकात हुई। स्वामी जी राजा के नाम से एक परिचय पत्र लाए थे। भारतीय राजाओं में वे अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान और धार्मिक थे। स्वामी जी के गुणों से मुग्ध होकर उन्होंने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। राजा के समक्ष स्वामी जी ने भारतीय जीवन की तत्कालीन समस्याओं एवं उनके समाधान के बारे में चर्चा की। भारतीय धर्म की महिमा एवं पाश्चात्य देशों में उसके प्रचार आदि की संभावना की बातें भी कही। सब कुछ सुनकर सेतुपति ने उन्हें शिकागो धर्म सभा में सम्मिलित होने के लिए बार बार अनुरोध किया एवं आर्थिक सहायता करने की बात भी कही।
3: स्वामी जी, शिकागो जरूर जाइए, मैं यथा साध्य आपकी मदद करूंगा। अरे, आपके जाने से संपूर्ण विश्व की निगाहें भारतीय आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होंगी और आपके कार्य का मार्ग भी सुगम होगा। ऐसा मौका हमेशा नहीं मिलता। कहिए, आप जाएंगे ना?
2: मेरी भी इच्छा जाने की है, पर भगवान की जैसी इच्छा होगी वही करूंगा। फिलहाल तो मैं रामेश्वरम जाना चाहता हूँ, वहीं जाऊंगा।
1: और राजा से विदा लेकर वे रामेश्वरम की ओर चल पड़े। रामेश्वरम दक्षिण भारत की वाराणसी कहलाता है। वहां के मंदिर प्रांगण के चारों किनारे निर्मित बड़े बड़े बरामदे शिल्प कार्य से सज्जित हैं। कहते हैं लंका विजय कर लौटते समय श्री रामचंद्र ने यहाँ शिव मंदिर की स्थापना कर देवाधिदेव महादेव की आराधना की थी। यहाँ शिव दर्शन और पूजा समाप्त कर स्वामी जी मद्रास की ओर चले।
0: इस समय सन 1893 प्रारंभ हो गया था। ये वर्ष स्वामी जी के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण का वर्ष रहा। इसी वर्ष उन्होंने 30 वर्ष की उम्र पार कर अपने 31वें वर्ष में प्रवेश किया।
1: स्वामी जी मद्रास से मदुरई होकर पौंडिचेरी आए। वहाँ उनके पूर्व परिचित मन्मथ बाबू कार्यवश आए हुए थे। दोनों कई दिनों तक साथ साथ रहे। वहां एक दिन एक प्राचीन पंथी पंडित से धर्म और समाज सुधार विषय पर स्वामी जी का घोर तर्क वितर्क हो गया। संकीर्ण हृदय वाले पंडित की बातें स्वामी जी के कानों में शूल की भांति कष्टदायक लग रही थी। क्रमशः समुद्र यात्रा की बात चल पड़ी। पंडित ने जब जाना कि स्वामी जी समुद्र यात्रा करना चाहते हैं तो वे भीषण नाराज होकर मुंह बनाकर कदापि न अर्थात कभी नहीं कहते रहे। अंत में स्वामी जी ने कहा,
2: बंधुवर आप कहते क्या हैं? प्रत्येक भारतवासी का तो यही परम कर्तव्य है कि धर्म तत्व की परीक्षा कर देखे। ऐसा करने के लिए हम लोगों को अतीत के संकीर्ण गर्त से बाहर निकलना होगा और बाहर की दुनिया किस प्रकार वर्तमान समय में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही है ये देखना होगा। और ऐसा करने पर यदि हम ये देखें कि यहां अनेकों युक्तिहीन परंपरागत आचार हैं जो हम लोगों के जीवन की उन्नति या दार्शनिक विचारों के प्रतिकूल हैं, तो निश्चय ही समय आ गया है जब इन सब का त्याग करने के लिए आगे बढ़ना होगा।
0: स्वामी जी बार बार यही बात समझाना चाहते थे कि सर्वहारा जन समाज में शिक्षा दान कर सामाजिक समता की बात का प्रचार करना होगा, पुरोहितों के अत्याचार को दूर करना होगा और जाति प्रथा की कुरूपता और धर्म के विकृत प्रयोग के फलस्वरूप जातीय जीवन में जो उथल पुथल आ गई है उसे दूर करना होगा। गरीब जातियों की उन्नति के लिए तत्पर होना उच्च वर्ण का आवश्यक कर्तव्य है।
1: अलवर की भांति मद्रास में भी स्वामी जी की गुरु भावना कमोबेश अभिव्यक्त हुई थी। अलवर में मुख्य रूप से धर्म चर्चा होती थी, भक्ति की चर्चा होती थी, किंतु मद्रास में उनके विराट व्यक्तित्व का विकास हुआ जो जन समूह के उत्थान के लिए नेतृत्व ग्रहण कर रहा था।
0: एक दिन स्वामी जी ऊंचे आध्यात्मिक तत्वों की विवेचना कर रहे थे, उसी समय एक व्यक्ति ने प्रश्न किया,
4: स्वामी जी वेदांतवादी होने पर भी हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं?
2: कारण हमारे देश में हिमालय है। हमारा देश इतना प्राकृतिक सौंदर्य और गंभीर से परिपूर्ण है कि ईश्वर की आश्चर्यमय रचनाओं के दर्शन से मुग्ध भारतवासी इन दृश्यमान वस्तुओं को भगवत चिंतन के प्रेरणा के रूप में ग्रहण करते हैं, समझे?
1: एक बार की बात है, एक पंडित ने स्वामी जी से पूछा,
5: समयाभाव के कारण त्रिसंध्या, गायत्री जप या संध्या वंदन आदि अगर ना कर पाए तो कोई हर्ज है क्या?
2: वे सारे विराट पुरुष, वे सारे प्राचीन ऋषि जो इतने बड़े थे कि मिट्टी पर पांव रखे बिना देश विदेश लांग जाते थे, जिनकी बातों का मात्र क्षण भर चिंतन करने पर आपकी तरह के लोग अपने को शुद्र कीट पतंग छोड़कर और कुछ नहीं सोच सकते, उन लोगों तक को समय था महाशय और आपको नहीं है।
0: उसी बैठक में एक पश्चिमी व्यक्ति ने स्वामी जी से कहा,
4: आप बेकार ही ये सब उपदेश दे रहे हैं, आपको क्या उन वैदिक ऋषियों की बातें सही लगती हैं? मुझे तो निरर्थक लगते हैं।
0: स्वामी जी कुछ देर तक धैर्य पूर्वक उनकी बातों को सुनते रहे, फिर गरज कर बोले,
2: आप किस साहस से पूर्वजों की इस प्रकार निंदा कर सकते हैं? अल्प विद्या भयंकारी, क्या आपको ऋषियों द्वारा आविष्कृत विज्ञान का ज्ञान मालूम है? और वहां केवल पढ़कर ही क्या आपने देखा है कि वेदों में क्या लिखा है? ऋषिगण वहां खड़े होकर समस्त विरोधों का सामना करने को प्रस्तुत हैं। प्रतिस्पर्धा करने का साहस है तो आगे बढ़िए।
0: वे सज्जन चुपचाप वहां से निकल गए। अविराम वाद विवाद विचार विवेचना से हुई थकावट को दूर करने के लिए वे पांडिचेरी में समुद्र तट पर शाम को घूमने निकल पड़ते। एक दिन टहलते समय उन्होंने देखा कि कुछ दरिद्र स्त्रियां समुद्र में मछली पकड़ने की कोशिश कर रही हैं और उनके नंगे दुबले बच्चे कमर तक पानी में खड़े होकर अपनी माँ को कार्य में मदद दे रहे हैं। ये देखकर उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उन्होंने खेद पूर्वक कहा,
2: हे भगवान, इन अभागों को जन्म क्यों देते हो? मेरे लिए तो ये दृश्य असहनीय है। हे भगवान, ये कितने दिनों तक चलेगा, कितने दिनों तक?
0: ऐसा था स्वामी जी का कोमल चित्त।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

तो ये था कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आपने ट्यून किया अपने रेडियो सेट पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: ख्वाजा अहमद का मिशन। जब मुगल दूत डच राजधानी पहुंचा, 3 मार्च 1665 को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के समुद्री साम्राज्य के तंत्रिका केंद्र बटाविया कैसल के डॉक पर कदम रखा। उसका नाम ख्वाजा अहमद था और वह कोई व्यापारी नहीं था, बल्कि वे बंगाल के शक्तिशाली सूबेदार और मुगल शासक औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान का कूटनीतिक दूत था। जहां इतिहास एशियाई दरबारों में यात्रा करने वाले यूरोपीय राजदूतों के वृतांतों से भरा है, वहीं अहमद का मिशन इसके विपरीत था। यह एक मुगल दूत द्वारा यूरोपीय कंपनी राज्य की राजधानी की यात्रा का एक दुर्लभ उदाहरण था। यह मिशन प्रांतीय कूटनीति का एक सटीक उदाहरण था, जहां स्थानीय मुगल गवर्नर राजाओं की स्वायत्तता और वजन के साथ काम करते थे। ख्वाजा अहमद एक उच्च तनाव के क्षण में पहुंचा था। शाइस्ता खान चटगांव बंदरगाह को जीतने और आराकान खत्म करने के लिए एक बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा था। डच एक अनिश्चित स्थिति में थे। वे बंगाल में अपने व्यापार से भारी लाभ कमा रहे थे, लेकिन साथ ही वे शाइस्ता खान के दुश्मनों के क्षेत्रों में भी व्यापार कर रहे थे। अहमद ने डच सरकार के सामने एक पत्र और उपहार प्रस्तुत किए, जिसमें एक कड़ा अल्टीमेटम छिपा था। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, VOC को तुरंत अपनी आराकान फैक्ट्री बंद करनी होगी। चटगांव अभियान में जहाजों और तोपों के साथ मुगल सेना का समर्थन करना होगा। यदि डच इनकार करते तो शाइस्ता खान ने उन्हें न केवल बंगाल से निकालने की धमकी दी, बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य में उनके संचालन को रोकने की चेतावनी दी। बटाविया में डच प्रशासक एक रणनीतिक दुविधा में फंस गए थे। हालांकि उन्होंने शुरुआत में व्यावहारिक विवरणों की कमी का बहाना बनाकर देरी करने की कोशिश की, लेकिन वे समझ गए थे कि वे दिल्ली में मुगल शासक से अपील करके शाइस्ता खान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कंपनी के अधिकारियों का मानना था कि सूबेदार केंद्रीय दरबार से बहुत दूर रहता है और वो दिल्ली के किसी भी हस्तक्षेप से बहुत पहले ही प्रांतों में डचों को परिणाम भुगतने पर मजबूर कर सकता है। ख्वाजा अहमद का मिशन बंगाल के लिए एक बड़ी सफलता थी। पूर्ण व्यावसायिक विनाश के खतरे का सामना करते हुए VOC ने अंततः अराकान में अपना लॉज बंद कर दिया। यह दुर्लभ मिशन था कि शक्तिशाली दिखने वाली यूरोपीय कंपनियों को मौजूदा एशियाई सत्ता संरचनाओं के साथ आर्थिक और सैन्य रूप से तालमेल बिठाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। बटाविया में ख्वाजा अहमद के आगमन ने साबित कर दिया कि 17वीं शताब्दी में ओरिएंट की रानी यानी बटाविया को अभी भी भारतीय उपमहाद्वीप के मालिकों को जवाब देना पड़ता था।
2: तो श्रोताओं, हमारी सुबह की सभा यहीं संपन्न होती है। आप बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए दोपहर की सभा का। सुनते रहिए FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
3: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम भारत भारती में आप सुनेंगे गायन कीर्ति दुबे और पंडित छन्नूलाल मिश्र का। तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गायन, जिसको प्रस्तुत कर रही हैं कीर्ति दुबे।

दादरा, बनारस का दादरा कैसा होता है कि जो दिल को झुमा दे, वो है दादरा। नजर के ऊपर है, एक ही नजर के चार रूप होते हैं। कैसे कि नजर ऊंची की तो दुआ बन गई। नजर ऊंची करते हैं तो दुआ मांगते हैं प्रभु से। नजर ऊंची की तो दुआ बन गई और नजर नीची की तो हया बन गई। नजर नीची की तो शर्मा के नजर नीचे होता है।

अब अंत में हमारे भोलेनाथ की होली विचित्र होली है और इसमें भगवान शंकर का दर्शन होता है। देखिए कैसी होली है। साल में एक बार कृष्ण राधा की होली होती है, जलता है होलिका, और यहाँ भगवान शंकर मणिकर्णिका घाट पर रोज होली जलाते हैं। और कैसे होली खेलते हैं।

तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए दानिश को इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रेम पत्र, एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर मन में मीठी तरंगे दौड़ पड़ती हैं। ऐसा लगता है मानो सरगम के सातों सुर मन की वीणा पर एक साथ झनक उठे हों, जैसे बसंत ऋतु की कोयल ने तड़प कर कुहु भरी हो, जैसे पपीहे ने बादलों को आवाज दी हो, और जैसे सूखी धरती पर मेघ बरस पड़े हों। होता तो यह एक कागज का टुकड़ा ही है, पर इसे खोलते हुए हाथ कांपने लगते हैं। हर एक अक्षर आवाहन सा करता हुआ लगता है, न जाने किस लोक की महक समेटे रहता है यह कागज का टुकड़ा। इस दुनिया के किसी भी सुगंध में वो पागलपन कहां, वो मादकता कहां। हम में से बहुतेरे लोगों ने अपनी किशोर अवस्था में यह पागलपन अवश्य किया होगा, और क्यों ना करें। अजी कच्ची उम्र का यह विहल आनंद जीवन में दोबारा भला कहां मिलने वाला है। पर कुछ ऐसे भोले सनम भी होते हैं जिन्हें प्रेम पत्र लिखना उनके लिए पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल काम होता है। वो गणित के कठिन से कठिन सवालों को चुटकियों में हल कर लेते हैं, पर दिल के कागज पर प्रेम की यह पहेली हल करने में मात खा जाते हैं। तो लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है एक ऐसे ही भोले सनम की दास्तां, जो प्रेम पत्र लिखने की ऐसी कोशिश करता है कि उसमें वो फंसता ही चला जाता है।
2: बागों में बहार है, कलियों पे निखार है, तुमको मुझसे प्यार है।
3: क्या बात है, आज मेम साहब का मिजाज बड़ा आशिकाना हो रहा है।
4: क्यों, क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ?
3: अरे नहीं, अभी तो हजार जाने तुम पे कुर्बान। एक बार बंद समर कर निकल जाओ कहीं ना, तो मनचलों के सीने पे सांप लौट जाए।
4: और
3: क्या?
4: नहीं नहीं, कुछ और का हो ना मेरी तारीफ में।
3: क्या सूझी थी मुझे जो मैंने आग में हाथ डाल।
4: क्या कहा, जरा जोर से कहना तो।
3: अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि अगर मांग में सिंदूर न भरो तुम, तो न जाने कितने लड़के तुम्हें प्रेम पत्र लिखने के लिए कलम में स्याही के बजाय अपना लहू डाल दे।
4: सच? मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा, पर ये बताओ जी, आज तक तुमने क्यों नहीं लिखा मुझे कोई प्रेम पत्र?
3: क्या प्रेम पत्र? मैं? अरे जिंदगी में कभी जो काम नहीं किया वो काम मैं अब।
4: जिंदगी में शादी भी तो नहीं किया थे तुम? हर काम इंसान कभी ना कभी पहली बार ही करता है।
3: हाँ?
4: और सच पूछो तो ऐसे इंसान से लव लेटर पाने का मजा ही कुछ और है। उसके लव लेटर की भला क्या अहमियत, जो दुकान के कैश मेमो की तरह हमेशा ही काटता रहता है। हाँ जी, अब तो तुम्हें मेरे लिए एक प्रेम पत्र लिखना ही होगा, और वो जो खूबियां अभी अभी तुमने बताई थी ना मेरी, उनकी लिस्ट और बढ़ानी होगी।
3: मगर मेम साहब, ऐसे कैसे लिखा जा सकता है प्रेम पत्र? इसके लिए जुदाई होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए, मन में कसक होनी चाहिए, पर आप तो हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहती हैं। ऐसे में वो सेंटीमेंट्स कहां से लाऊं मैं?
4: तो ठीक है जी, उसका भी इंतजाम किए देती हूँ मैं। रिंकू को लेकर मायके चली जाती हूँ।
3: क्या?
4: और क्या, फिर जब आप प्रेम पत्र लिखकर गुहार लगाएंगे ना, तभी लौटूंगी मैं। पपीहे की तरह पीव पीव करना, तभी झलक दिखलाएगी आपकी ये सावन की घटा।
3: अरे अरे, ऐसा जुल्म ना करिए श्रीमती जी। लीजिए, मैं आपके जाए बिना ही आपको प्रेम पत्र लिख देता हूँ। लिख देता हूँ कि मुझे आपसे बेहद बे इंतहा मोहब्बत है। हाँ, मुझे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। और ये लीजिए मेरी सिग्नेचर, नीरज वशिष्ठ। बिल्कुल पक्की रसीद है ये। अब तो मैटर सॉल्व हो गया ना।
4: वाह रे मेरे कारोबारी सनम, और वाह रे आपका प्रेम पत्र, जैसे किसी कंपनी का वारंटी कार्ड भर रहे हो। अरे दिल की डीलिंग बिजनेस की तरह नहीं की जाती है। जब आप सच्चे दिल से पूरी फीलिंग के साथ लिखेंगे ना, तभी ये कस्टमर आपकी बात पर यकीन करेगा। और ये फीलिंग मैं आपको देकर ही मानूंगी। अरे मैके की जर्नी अब मेरी फाइनल है, कोई हाई कोर्ट कोई सुप्रीम कोर्ट इसमें अब दखल नहीं कर सकता है।
3: हे भगवान, आज सुबह सुबह किस गलत गली में घुस गया। त्रिया हट ने तो दशरथ की भी मिट्टी पलीत कर दी थी यार। त्राहिमाम त्राहिमाम प्रभु, इस मुसीबत से बाहर निकालो।
1: तो श्रोताओं, इस तरह से नीरज की धर्म पत्नी रितु त्रिया हट कर बैठती है कि उसका पति उसे प्रेम पत्र लिखे। शादी के 5 साल गुजर चुके हैं। पहाड़ी झरने की तरह गरजता प्यार तूफानी दौर से गुजर चुका है और अब तो नदी सागर में समा चुकी है, जहां का पानी शांत व ठहरा हुआ है। रितु इस पानी को पहाड़ पर चढ़ाना चाहती है। नीरज की हालत खराब है, रितु उलाहने देती है, नीरज धीरज का परिचय देता है। एक तरफ तलवार थी तो दूसरी तरफ ढाल। अब सुनिए आगे क्या होता है उन दोनों की दास्तान।
4: सुनो जी, मम्मी का फोन आया है।
3: क्या?
4: उनका बीपी है ना बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
3: अरे,
4: बोली है कि जल्दी आ जाओ।
3: क्या यार, अभी हाल तक तो सब ठीक था और अब यकायक ये।
4: अरे यकायक ही तो सब होता है पति देव। अब देखो, यकायक ही मुझे मायके भी जाना पड़ेगा, पर मेरे पीछे मेरी उस ख्वाहिश का ध्यान जरूर रखना पति देव। नहीं तो अब मायका ही होगा मेरा परमानेंट ठिकाना, फिर ना कहना कि
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा जुल्म ना करो मेरी जान मुझ पर। आपके बिना तो मुझे एक पल भी पहाड़ लगता है यार। आप कहती हैं कि
4: डिसीजन फाइनल है, जाना तो होगा ही, पर वापसी आप पर डिपेंड करती है।
3: कैसे?
4: जितनी जल्दी आपका प्रेम पत्र मुझे मिलेगा उतनी ही जल्दी मेरी रवानगी डलेगी वहाँ से।
3: क्या टेलीफोन से काम नहीं चलेगा?
4: हरगिज नहीं, रिटर्न एविडेंस बर्बल से ज्यादा पावरफुल होता है।
3: एसएमएस?
4: बिल्कुल नहीं, मुझे डिटेल्ड ब्यौरा चाहिए। मेरे बिना कैसा लगा तुम्हें, कैसे तुम्हारे दिन गुजरे, कैसी रातें गुजरी, कैसी नींद आई और कितना याद किया तुमने मुझे, तुम्हारे पूरा एहसास चाहिए मुझे। मेरी यही वापसी की टिकट होंगे, समझे?
3: इतना कुछ लिखना होगा प्रेम पत्र में? ब्योरे वार दास्तान, वेरी डिफिकल्ट, हॉरिबल।
4: ताजमहल बनवाने से ज्यादा तो मुश्किल नहीं है।
3: अरे ताजमहल कोई शाहजहां ने अपने हाथों से थोड़ी ही बनाया था यार, बादशाह सलामत थे वो, हुक्म दे दिया और बन गया ताजमहल। तुम कहो तो मैं भी किसी एक्सपर्ट से लेटर।
4: हे राम, कैसा जमाना आ गया है अब, प्रेम पत्र भी लिखवाने के लिए लोग एक्सपर्ट के पास जाना चाहते हैं। शेरो शायरी तो फीस चुकाकर मिल ही जाती है, और अब ये लव लेटर भी। वाह जी वाह। पर सुनो जी, मैं बता देती हूँ, कोई भी चीटिंग नहीं चलेगी इस मामले में। अगर ब्लैक लिस्टेड हो गए ना आप, तो टेंडर भी भरने को नहीं मिलेगा। काम पूरा करने की बात ही छोड़िए। सुनो जी, अपना ख्याल रखना। और हाँ, सुबह जल्दी उठकर घूमने जरूर जाना, ताजी हवा खाना, पर नजर नीचे रखना। हाँ, और सुनो, नौकरानी को मैंने मना कर दिया है, जवान जहान है, क्या ठिकाना उसका।
3: क्या? अब घर का झाड़ू पोछा भी मैं करूंगा क्या, क्या, क्या, क्या?
4: अपनी इज्जत की हिफाजत करना अच्छे पति का धर्म है।
3: अरे यार, तुम्हारे अलावा मेरी इज्जत को भला और किससे खतरा हो सकता है। एक मिनट, ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हो रहा है।
4: जा तो मैं रही हूँ जी, पर मुझे ना बड़ी रुलाई छूट रही है, मन कर रहा है कि उतर पड़ूं गाड़ी से। सच तुम्हारे बिना रहने का सोचकर ही जी घबराने लगता है।
3: अरे तो उतर पड़ो। इतना प्यार हमारी आंखों में उमड़ रहा है, इसके आगे भी प्रेम पत्र की जरूरत लगती है क्या तुम्हें?
4: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आज दिल से नहीं दिमाग से काम लेने की जरूरत है। पक्का इरादा, कड़ा अनुशासन। रिंकू को भी मैं इसलिए साथ लेके जा रही हूँ जिससे तुम्हें तन्हाई शिद्दत से महसूस हो।
3: तुम औरतें तो यार इतनी दूर तक कैसे सोच लेती हो? मैं तो सोच रहा था कि मेरा भार हल्का करने के लिए तुम रिंकू।
4: हाँ, और क्या, अरे भार हल्का ही तो हो रहा है तुम्हारा भाई, अकेले जन का काम रहेगा, चटपट निपटा लेना तुम। और फिर तन्हा बैठकर लव लेटर लिखना, और जब वो लव लेटर पूरा हो जाए ना तो मुझे पोस्ट कर देना।
3: सफर में अपना ख्याल रखना, पहुंचते ही फोन करना।
5: पापा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।
4: गाड़ी तो छोड़ो, स्पीड बढ़ रही है, गाड़ी छोड़ो।
3: अरे बेटा रिंकू, मम्मी को तंग न करना, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करना।
4: बाय
5: बाय बाय।
1: रितु के जाने के बाद नीरज के एक दो दिन तो बड़ी मस्ती में गुजरे। जब चाहो खाओ, जब चाहो सो, जब चाहो उठो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। रितु होती तो कहती, यह ना करो, यह ना खाओ, अब टीवी बंद कर दो, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। कच्ची नींद में उठा देती और कहती, फ्रेश होकर टहलने निकलो। जिंदगी जैसे जेल मैनुअल पर चल रही थी, पर अब आजादी की हवा में सांस लेने का मौका मिला था। लेकिन नहीं, अजी अकेलेपन की आजादी डराने वाली थी। भला शमशान की शांति भी किसी को अच्छी लगती है? नीरज को आटे दाल का भाव याद आ रहा था। अब सुनिए आगे की दास्तान।
3: चाय की पत्ती कहाँ रखी है? पानी उबला जा रहा है। ये औरतें बिना चाय चीजें ना जाने कहाँ कर रखती है। आया आया भाई आया, तुम्हें भी यार अभी बजना था। हेलो, अच्छा अब जाके फोन करने की फुर्सत मिली मैम साहब को। धन्यवाद मेरे जो आपको मेरी याद आई। क्या शेर? नहीं नहीं, सवा शेर कहिए जनाब। क्या क्या कह रही हैं? यही काबिलियत में लव लेटर लिखने में भी? अरे क्या यार, मेरी अग्नि परीक्षा क्यों ले रही हैं पत्नी जी? हैं? नहीं, मैं पार ना कर पाऊंगा इसे। क्या कहती हैं? उसके बिना आप नहीं आएंगे, करना ही पड़ेगा। अरे यार, हम पतियों के लिए तो होम मिनिस्ट्री ही सुप्रीम कोर्ट है, कोई मर्सी अपील भी नहीं होती इसके फैसले पर। ओके ठीक है ठीक है, करता हूँ यार, करता हूँ। अच्छा अच्छा, ओके, बाय बाय बाय बाय।
1: रितु को गए हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे। नीरज समझ चुका था कि उसकी मोम सी रितु अब आयरन लेडी बन चुकी है, जिसकी निगाह अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर थी, और वो लक्ष्य था प्रेम पत्र। प्रेम पत्र लिखना ही पड़ेगा, कोशिश करता है नीरज, और वो पूरा ब्योरा लिखने बैठ जाता है। आप भी सुनिए क्या लिखा उसने अपने प्रेम पत्र में।
3: मेरी प्राणेश्वरी, तुम्हें गए अभी 4 दिन ही हुए हैं। इन 4 दिनों में ही मुझे तुम्हारी कीमत पता लग गई। तुम्हारे रखे सामान किचन में मिलते ही नहीं थे, अब जाकर कुछ कुछ उनकी लोकेशन समझ में आने लगी है। कल की बात है, दाल फ्राई करते हुए मेरे चेहरे पर घी का छींटा पड़ गया। रोटियां नक्शों की तरह बनती हैं, फूलती भी नहीं, कच्ची रह जाती हैं। नतीजा ये होता है कि ठीक से पचती भी नहीं, खट्टी डकारें आती रहती हैं। हाँ, तुम्हारे पीछे एक बड़ा नुकसान हो गया। कल नमक ढूंढ रहा था तो अचार की भरनी गिरकर टूट गई। कितनी मेहनत से डाला था तुमने। अदरक तुमने फ्रिज में ऐसे रखे थे जैसे कोई लॉकर में ब्लैक मनी रखता है, और अंत में इनकम टैक्स वालों की तरह रेड करके निकालना पड़ा मुझे। गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, इसलिए कोने वाली होटल से एक खाना मुकर्रर कर दिया है। दुआ करना सेहत सलामत रहे। सब्जी वालों को पता नहीं कैसे टैकल करती थी तू, मुझे तो सब दिन दहाड़े लूट लेते हैं। तुम होती तो ऐसा ना हो। छत पर कपड़े फैलाए थे, क्लिप लगाना भूल गया था, सब उड़ गए। सच तुम्हारे बिना समझ में आता है कि बिन घर नहीं घर भूत का डेरा। अरे हाँ, तुम्हारी मम्मी का क्या हाल है? अब तो उनका बीपी नॉर्मल होगा। रिंकू शैतानी तो नहीं करती? हाँ, तो ये रहा तुम्हारा रिटर्न टिकट। तुम्हारी शर्त पूरी हो चुकी है, अब लौट आओ। तुम्हारा पत्नी पलायन पति।
1: कुछ ही दिनों के बाद नीरज को अपने प्रेम पत्र का जवाब मिल गया। आंखों में खुशी और दिल में उत्साह था। इकलौती पत्नी का पहला पहला पत्र था। खोलकर पढ़ा उसने।
4: वाह रे मेरे भोले सनम, आपके लव लेटर ने तो बड़ा ही मायूस किया। वादा वफा न रहा। ये आपने लव लेटर लिखा है कि डायरी? मैंने तो दिल का हाल बयान करने के लिए लिखा था और आपने गृहस्थी का हाल बयान कर दिया। ये लव लेटर नहीं, ये रोज नामचा है। क्या मेरी कीमत बस इतनी ही है कि मैं आपकी गृहस्थी चलाती रहूं? सोचा था कि जुदाई में आप मजनू बन जाएंगे, पर आप तो नहीं। नहीं नहीं, ये रिटर्न टिकट वैलिड नहीं है। इसके सहारे सफर करना बेटिकट सफर करने जैसा होगा। एक बार आप फिर कोशिश कीजिए। मम्मी का बीपी पहले भी ठीक था, हाँ अब जरूर बढ़ गया है। सोचती हैं कि मैं लड़कर आई हूं आपसे। आप सेहत का ख्याल रखिएगा और इज्जत का भी। आपके लव लेटर के इंतजार में, आपकी रितु।
1: प्रेम पत्र को पढ़कर के नीरज की हवा खराब हो गई। जिसे ब्रह्मास्त्र समझकर चलाया था वो तो लकड़ी का तीर निकला। अब क्या करे, वह इस कला में माहिर न था। सोचा क्यों ना अपने दोस्त अशोक की मदद ली जाए। आखिर दोस्त वही होता है ना जो मुसीबत में काम आए। तो नीरज पहुंच गया अशोक के घर उससे सलाह लेने।
6: कौन? अरे नीरज तू भाई, सुबह सुबह यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए?
3: अरे यार भीतर तो आने थे पहले कि दरवाजे पर ही पूरा इंट्रोगेशन कर डालेगा।
6: आना आना बैठ। क्या लेगा तू? अरे श्यामा जरा दो कप चाय तो पिलाना गर्मा गर्म।
3: यार चाय वाय तो बनती रहेगी, पर इस वक्त मैं बड़ी मुसीबत में हूँ।
6: क्या हो गया तुझे कि सांड को तूने लाल कपड़ा दिखा दिया जो जान बचा कर यहाँ भागा है?
3: अरे यार सांड से पीछा छुड़ाना तो फिर भी आसान है, पर ये प्रेम पत्र।
6: प्रेम पत्र यानी कि लव लेटर? वाह यार, किसकी मती मारी गई है जो तुझ जैसे शादीशुदा को लव लेटर लिखेगा?
3: भाई मती किसी और की नहीं, मेरी खराब हो रही है। समझ में नहीं आता कि कैसे प्रेम पत्र लिखूं मैं, जिस काम का कोई तजुर्बा ही नहीं है वो आखिर। यार मैं।
6: वाह भाई वाह, तो ये बात है। भाभी कहाँ है जो तू?
3: वो मायके गई हुई है बाल गोपाल को लेकर।
6: और तू मौके का खूब फायदा उठा रहा है, प्रेम पत्र लिख रहा है?
3: नहीं नहीं,
6: अब जब प्रेम का पत्र है तो प्रेमिका भी तो होगी ना कहीं ना कहीं। बच्चू आने दे भाभी को, फिर देख मैं किस तरह।
7: लीजिए भाई साहब चाय लीजिए।
6: खैर ये ले, पहले चाय पी ले तू, फिर तुझे पानी पिलाता हूँ जीवा।
3: अरे कोई प्रेमिका प्रेमिका नहीं है यार तो? तेरी भाभी को ही प्रेमिका बनने का जुनून सवार हुआ है।
6: अच्छा?
3: हाँ, वो बोलती है मुझे प्रेम पत्र लिखो तब लौटूंगी मैं। अब तू ही बता यार मैं क्या करूँ।
6: तो ये बात है, पहले क्यों नहीं बताया?
3: तूने बताने कब दिया? एकदम से राशन पानी लेकर चढ़ बैठा मेरे ऊपर।
6: खैर खैर बोल दोस्त, क्या मदद मांगता है तू?
3: यार एक चिट्ठी लिखी थी उसे, जवाब में लिखती है फीलिंग के साथ लेटर लिखो तब लौटूंगी। अब तू ही बता के।
6: ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम कर।
3: हाँ
6: एक हिट आइडिया देता हूँ तुझे।
3: बता यार।
6: कुछ फिल्में देख डाल, कुछ शेर और शायरी की किताबें पढ़ डाल।
3: हाँ।
6: किसी खूबसूरत लड़की का चेहरा रख आंखों के सामने।
3: हाँ।
6: क्योंकि जब खूबसूरती सामने होगी तो अल्फाज खुद ब खुद निकलने लगेंगे। बस तैयार हो जाएगा तेरा प्रेम पत्र।
3: थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक्स। अब बाद में मिलता हूँ तुझसे।
6: पहले चाय तो खत्म कर ले भाई।
3: तो वो तू पी लेना। बाय एंड अगेन थैंक यू यार।
6: बाय बाय।
1: नीरज के हाथ फार्मूला लग चुका था, बस उसका इस्तेमाल करने की कला आनी चाहिए थी। अशोक का एक एक शब्द उसने पकड़ा। अशोक ने कहा था कि फिल्में देखो, शेर व शायरी की किताबें पढ़ो, खूबसूरत लड़की का चेहरा अपनी आंखों के सामने रखो। अब उसने कई फिल्में देख डाली। नई फिल्में उसको जमी नहीं, तो उसने पुरानी फिल्मों का सहारा लिया। शेर व शायरी की किताबें भी कई पढ़ी, पर बेचारा खूबसूरत लड़की कहां से लाता। अकल काम नहीं कर रही थी। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। मार्केट जाकर के एक खूबसूरत सा पोस्टर उठा लाया और दीवार पर चस्पा कर दिया। साथ ही एक सुगंधित लेटर हेड भी ले आया, जिसके एक कोने पर दो दिल बने हुए थे और दिल में एक तीर चुभा हुआ था। सारी सामग्री इकट्ठी करके अब वो लव लेटर लिखता है। आइए आप भी सुने उसका लव लेटर।
3: हा हा हा हा, ये पोस्टर भी लग गया। आप ठीक है। इसकी खूबसूरत आंखों में डूबकर, गुलाब की कली जैसे इसके होठों को देखकर, खिलती धूप सी इसकी मुस्कुराहट में नहाकर, हाँ, अब लव लेटर लिखने की फीलिंग पैदा की जा सकती है भीतर से। एक काम और करता हूँ, बाजार से रंगीन लेटर पैड और खरीद कर लाता हूँ, वही जिस पर तीर से बिंधे हुए दिल बने रहते हैं, जिससे भीनी भीनी खुशबू आती रहती है, तब प्यार का एहसास और भी घना हो सकेगा। बिल्कुल कंफर्म रिटर्न टिकट बनेगा तब, कोई वेटिंग शेटिंग नहीं। अब हो गया प्रणेश्वरी तुम्हारा लव लेटर तैयार। एक बार पढ़ तो लूं, कैसी फीलिंग आती है। प्रिय प्रणेश्वरी, तुम्हें जाने आरजू कहूं या आरजू ये जहां कहूं, तुम ही बता दो मुझे, मैं तुम्हें क्या कहूं। तुम्हारी झील सी गहरी आंखों में डूब जाने को मन करता है। जब तुम हंसती हो तो ऐसा लगता है मानो कोई कानों में मीठी मीठी मिश्री खोल रहा हो। जब तुम कुछ बोलती हो तो दिल में सितार बजता है। जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे काल में जो डिंपल पड़ता है वो तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। तुम्हारे बिना ना नींद आती है ना चैन आता है, दिल तुमसे मिलने को बेचैन हो उठता है। चांद में तुम नजर आती हो, सितारों में तुम नजर आती हो, रोटी में तुम, खाने की हर बोटी में तुम। जिस शक्ल को भी देखता हूं बस तुम्हारी ही शक्ल दिखती है। जुदाई के पल अब बर्दाश्त नहीं होते हैं। अब तुम ही बताओ कब मिलेंगे हम। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा प्राणों से भी प्यारा। आ रही है, आ रही है फीलिंग, आ रही है। अब एक बार अशोक को और दिखला देता हूं। चलो।
6: ये क्या लिखा है रे बुद्धू तूने? ऐसे भी कहीं प्रेम पत्र लिखते हैं? अरे मैंने तुझे फिल्में देखने के लिए कहा था, फिल्मों के गाने और डायलॉग चुराने के लिए नहीं। औरतें फौरन ताड़ लेती हैं कि बनाया जा रहा है उन्हें। अरे नेचुरल एक्सप्रेशन होना चाहिए इसमें
3: यार। नेचुरल एक्सप्रेशन ही बनता मुझसे तो तेरी मदद क्यों लेता? मानता हूं कि सब कुछ अननेचुरल है, पर करना ही पड़ेगा, नहीं तो तेरी भाभी का कोप भवन टूटने वाला नहीं है।
6: अच्छा यार, एक काम कर तू।
3: बोल।
6: अभी तो रह नहीं दे तू उसे, मैं जरा फुर्सत निकाल कर आता हूँ तेरे पास, फिर मैं खुद बैठ कर लिखवा दूंगा तुझे। उसे भाभी को भेजना तू, पर ये जो एंटीसेंट लिखा है ना तूने,
3: हाँ।
6: इसे तो रहने ही दे, भगवान के लिए लव लेटर लिखे। अरे भाभी वापस तो नहीं आएगी, उल्टे तुझे नौटंकी की बात समझेगी।
3: आता हूँ भाई, आता हूँ। कौन टपक पड़ा यार?
8: अरे तुम, व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज। अरे तुमने तो ठानी थी कि
4: ठानी तो बहुत जमकर थी, पर क्या करूं पतिदेव, आप पर तरस आ गया। और सच कहूं तो आपके बिना रह ही नहीं सकती हूं मैं, सोचना चाहिए था मुझे। आप जैसे भोले भाले आदमी भला क्या जाने प्रेम पत्र लिखना। सतयुग के पुरुष ठहरे आप, आज के छोरों जैसी लंपटता आप में कहाँ है भला।
3: क्या बात है। आपने अपना प्रण तोड़ दिया इस नाचीज के लिए।
4: मैं तो प्राण दे दूं पतिदेव, प्रण तो कुछ भी नहीं आपके लिए।
3: थैंक गॉड।
1: नीरज मन ही मन खुश था। नीरज की मुसीबत टल चुकी थी, पत्नी बिना प्रेम पत्र के ही मान गई थी। खुशी खुशी दफ्तर गया, पर जब वापस लौटा तो घर में मातम फैला हुआ था। प्राण देने का वादा करने वाली पत्नी प्राण लेने पर उतारू थी। आंखों से प्रेम की धारा नहीं, आंसुओं का सैलाब बह रहा था। मुख से शहद के भीगे शब्द नहीं बल्कि तोप के गोले चल रहे थे। आखिर ऐसा क्या हो गया था दिन भर में, आप भी सुनिए।
4: वाह रे मेरे भोले सनम, अच्छी वफा निभाई तुमने। तुम भी आखिर बाकियों की तरह ही निकले ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मुंह में राम बगल में छुरी, रंगोसी और।
3: अरे काहे मुहावरेदार गालियां दे रही हो भाई, साफ साफ बताओ कि क्या हो गया। सुबह सुबह की स्वच्छ ऋतु अचानक इतनी गर्जन तर्जन क्यों कर रही है?
4: अरे अपनी किस्मत को रो रही हूँ और क्या।
3: क्या?
4: अरे क्या समझा था तुम्हें, और तुम क्या निकले, कहते थे प्रेम पत्र लिखना ही नहीं आता, और यहाँ तो पूरा प्रेम सागर ही उमड़ा जा रहा है।
3: क्या कह रही हो?
4: ये देखो अपना कच्चा चिट्ठा, हाथ कंगन को आरसी क्या। अरे मेरे पीछे इश्क फरमा रहे थे तुम।
3: क्या कह रही हो?
4: सींग कटा कर बछड़े बन रहे थे तुम, तुम्हारा पाप तुम्हारे सामने है।
3: पाप? ओहो, तो ये बात है। अरे यार ये पाप नहीं, मेरा बेवकूफी नामा है बेगम। ये आपके लिए ही लिखा था मैंने, किसी और के लिए नहीं। आपके सर की कसम।
4: मेरे सर की कसम ना खाओ जी, खाना है तो उसी की कसम खाओ जो तुम्हारे सपनों की रानी है।
3: अरे तुम
4: उसकी इबारत पढ़ो ना, तुम खाने में, तुम खाने की हर बोटी में तुम। मुझे पागल समझा है क्या? 15 दिन बाद लौट कर आ रही हूँ मैं, और मैं मान लूं कि ये लाइन तुमने मेरे लिए लिखी है।
3: अरे हाँ जी, 100% ही तुम्हारे लिए लिखी थी यार, इमोशन पैदा करने के चक्कर में ये बेवकूफी हुई थी मेरे से। हाँ, दरअसल एक दिन पहले ही सपने में आई थी। तो
4: बहुत अच्छे। हाँ, और ये तुम्हारी झील सी आंखों में डूब जाने को मन करता है, और थोड़ी सी भी गैरत बची हो ना तुम्हें तो तुम तालाब में जाकर डूब मरो, या मुझे डुबो दो, और फिर मजे से रहना उसके साथ में।
3: अरे यार धर्म पत्नी जी, ये लाइन तो फिल्मों के चक्कर में आ गई यार। सच मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद नहीं बनाई है इसे।
4: और ये आगे भी तो देखो।
3: अरे
4: रहन दो, बस बस। अब एक झूठ छुपाने के चक्कर में हजार झूठ मत बोलो जी, फंसते ही चले जाओगे तुम।
3: अरे यार कैसे तुम्हें समझाऊं प्राणेश्वरी, प्रेम पत्र लिखते समय ये सब झूठ सच लिखना पड़ता है यार, नहीं तो प्रेम पत्र का वजूद ही खत्म हो जाएगा दुनिया से। सब सच लिख दिया तो प्रेमिका पत्थर फेंक कर मारेगी अपने प्रेमी को।
4: अच्छा तुमने कहा और मैंने मान लिया है।
3: हाँ हाँ, मान भी जाओ मेरी बात यार, ये लेटर मैंने तुम्हारे लिए ही लिखा था, तुम्हारे लिए ही लिखा था।
4: तुम मुझे बरगलाओ नहीं। और ये देखो, ये तुम्हारा, ये क्या लिखा तुमने? जब तुम हंसती हो ना तो तुम्हारे गाल पर जो डिंपल पड़ता है ना, तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। तुम ही बताओ मेरी कचोरी जैसे गालों में कब डिंपल पड़ता है।
3: अरे यार,
4: और आगे ये देखो क्या लिखा है, चांद में तुम, सितारों में तुम, रोटी में तुम, आईने में तुम, हर शक्ल में तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है।
3: अरे क्या
4: बड़ी आंखें सेकी जा रही थी मेरे पीछे।
3: अरे यार,
4: इश्क का भूत तो ये पोस्टर भी बयान कर रहा है जिसे आंखें सेकने के लिए
3: तुमने। अरे यार, इस पोस्टर में भी तो तुम ही हो जाने मन, जमीन पर आसमां में तुम ही हो जाने मन।
4: ओहो, बड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं मेरे सरकार। कहां तो प्रेम पत्र लिखने के नाम पर हाथ पांव ठंडे पड़े जा रहे थे, और कहां पूरे प्रेम कवि ही बन चुके हैं। किसका कमाल है ये बताओ मुझे। पर मुझे क्या, मैं तो वापस जा रही हूँ। नादान थी मैं जो तुम्हें भोला समझ बैठी। अरे तुम तो भेड़ की खाल में भेड़िया हो।
3: अरे जाने मन क्या।
4: अच्छा हुआ, अच्छा हुआ जो तुम्हारा असली रूप दिख गया, नहीं तो जिंदगी भर में इसी मुगालते में रहती कि मैं।
3: ऐसा ऐसा ऐसा जुल्म ना करो जी। तुम सुनो तो यार, एक काम करो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होता?
4: बिल्कुल नहीं।
3: तो तुम अशोक को बुला लो। तुम खुद तस्दीक कर लो अपने हिसाब से, जैसा तुम चाहो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बीच में चुपचाप बैठा रहूंगा यार, प्लीज। ऐसा
6: क्या हुआ भाभी, इतनी इमरजेंसी में आपने क्यों बुला लिया मुझे?
4: क्या कहूं भैया, कुछ दिनों के लिए मैं मायके क्या चली गई, इन्हें तो सिंह ही निकल आए। अरे आशिकी करना शुरू कर दिया, एक बेटी के बाप हैं पर हरकत, छी छी, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है। तुम खुद ही देखो कैसा बेहुदा लव लेटर लिखा है इन्होंने अपनी उसको। अरे वो तो यकायक मैं आ गई और ये दे नहीं पाए उस कलमुही को, नहीं तो।
6: ओहो, तो ये बात है। अरे ये बुद्धू है भाभी, आपको वापस बुलाने के लिए न जाने क्या क्या बेवकूफियां करता रहा है ये। मुझे मालूम है इस लव लेटर के बारे में, मैंने ही तो कहा था इससे कि इसे पोस्ट ना करे। फंस गया बेचारा। अरे पोस्ट कर दिया होता आपको तो कम से कम आज आप इस बेचारे पर शक तो ना कर रही होती।
4: सच कह रहे हैं भैया आप, ये भी यही कह रहे थे, पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ।
6: 100% सच कह रहा हूँ भाभी। आप चाहें तो श्यामा से कंफर्म कर लीजिए पूरा मैटर, उसे बताया है मैंने।
4: नहीं नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है, सचमुच ये भोले सनम ही है। बेचारे इतना जुल्म सहते रहे मेरा, और मुझे माफ कर दो मेरे भोले सनम, माफ कर दो।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा हास्य नाटक लव लेटर, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। आज के इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सारंगी और वायलन वादन की जुगलबंदी से। तो लीजिए आनंद इस जुगलबंदी का।

0: तो श्रोताओं, सारंगी और वायलिन वादन की जुगलबंदी के बाद लुत्फ लीजिएगा सुनंदा शर्मा के गायन का।
1: एक बनारस का दादरा बहुत पुराना, गंगा रेती पे बंगला छवा दा मोरे राजा, आवे लहर जमुनी की। एक नायिका, उसके मन की इच्छा, वो कह रही है कि मुझे गंगा की रेत पे एक बंगला बनवा दो जिसमें जमुना की लहर का एहसास हो। बंगला छवाया मोरे मन भाया, कोई अच्छा सा खिड़की कटा दा मोरे राजा, आवे लहर जमुनी की। अब खिड़की कटाया मोरे मन भाया, कोई सुंदर सी बगिया लगा दा मोरे राजा, आवे महक फूलों की। गंगा रेती पे बंगला छवा दा मोरे राजा, ये पुराने एक ऊंचे सुर में गाया जाने वाला दादरा बनारस का, बहुत शौक से पुराने लोग इसको गाते रहे, मुझे बहुत प्रिय है ये दादरा, मैं प्रस्तुत करती हूँ। बहुत पुकार का दादरा है ये।

मैं एग्जाम्पल के रूप में चैती के दो प्रकार जस्ट उसकी बंदिश सुनाती हूँ. एक दो थोड़ी स्लो है, एक चलती हुई चैती. चैती के बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें दो मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको सुनाती हूँ.

श्रोताओं, सुनंदा शर्मा के गायन के बाद आज के इस कार्यक्रम में अंतिम प्रस्तुति होगी अंशुल प्रताप सिंह के तबला वादन की।

मैं फिरोज खान साहब,

धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन धनता धन ध

दो कंपोजिशन मिश्र जाति में है। देखिएगा पंडित सुशील कुमार जैन की रचना है।

ये विलंबित की फरमाइशी है मिश्र जाति में, विलंबित में फरमाइशी बहुत कम होती है, तो ये मैं अभी इसमें दुर्दम बजा रहे हूँ।

तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक फीस। चतुर सेन ग्रेजुएट है मगर बेरोजगार है। आज से 5 साल पहले उसने शहर के एक नामी कॉलेज से बीए पास किया था। मन में ख्याल आया लगे हाथों एमए भी कर लिया जाए, पर सोचा क्या फायदा पैसा और वक्त जाया करने में। आईएएस बनना चाहता था, उसके लिए बीए पास क्वालिफिकेशन काफी थी। मगर पहले ही प्रयास में उसे पता चल गया कि बीए पास आदमी आईएएस नहीं बन सकता। फिर सोचा चलो डिप्टी कलेक्टर ही सही, ये पोस्ट भी बुरी नहीं है, 20-22 साल में आईएएस की प्रमोशन मिल ही जाएगी। पर हाय रे किस्मत, यूपीएससी से लेकर के पीएससी तक सब ने उसके खिलाफ जैसे मोर्चाबंदी कर रखी थी। यहां तक कि एसएससी और व्यापम ने तो उसे कोई तवज्जो ही नहीं दी। हार कर विचार करने बैठ गया कि आखिर गड़बड़ कहां है, क्यों नौकरी के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। काफी चिंतन मनन के बाद जवाब मिला कि चतुरसेन कमी तुझ में नहीं, तेरे कॉलेज में है। उसने तुझे प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं दी, फीस तो पूरी ली पर पढ़ाया कुछ नहीं। तभी तो नौकरी के हर इम्तहान में तू केवल और केवल फेल होता रहा। तेरे कॉलेज ने सेवा में कमी की है, इसलिए मुआवजे का मामला बनता है उन पर। चल उठ चतुरसेन, ठोक दे दावा कॉलेज पर। पहले नोटिस दे, अगर मान गए तो ठीक, अगर नहीं माने तो उन्हें खींच ले कंज्यूमर फोरम में। आजकल तो कंज्यूमर फोरम का जमाना है ना।
2: मैं आई कम इन सर?
3: यस कम इन, फरमाइए।
2: सर ये नोटिस है, रिसीव कर लीजिए।
3: नोटिस? मगर किस बात का?
2: कंपनसेशन का सर।
3: कंपनसेशन? मगर वो कैसा?
2: सर आपके कॉलेज ने सर्विस में कमी की है।
3: कॉलेज ने सर्विस में कमी की है? आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? अरे ये कॉलेज है, कोई दुकान या कंपनी नहीं। जो
2: कैसे नहीं है दुकान या कंपनी, अजी बिल्कुल है,
3: है?
2: पैसे लेकर शिक्षा बेचती है, आखिर और क्या होती है, दुकान ही होती है। कमोडिटीज ना सही, सर्विस ही सही, मगर कुछ तो बेचती है ना। बदले में फीस भी अनाप शनाप लेती है, और एजुकेशन, एजुकेशन ऐसी कि चपरासी की भी नौकरी ना मिले।
3: एक मिनट, ठीक से बताइए आप कि आप कहना क्या चाहते हैं।
2: सर आज से 5 साल पहले मैंने आपके कॉलेज से बीए पास किया था। मुझे एश्योरेंस दिया गया था कि यहाँ की पढ़ाई इतनी अच्छी है कि यहाँ का पढ़ा लिखा लड़का आईएएस तक बन सकता है। लीगल टर्म में कहें तो आपके कॉलेज नाम की कंपनी ने एक प्रकार से गारंटी दी थी अपने कंज्यूमर को, मगर ये देखिए आपकी गारंटी फेल हो चुकी है। जहां जहां भी नौकरी के लिए अप्लाई किया है मैंने, जवाब केवल केवल ना में मिला है सर।
3: तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, आप में काबिलियत ही नहीं होगी।
2: वही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सर।
3: क्या?
2: आपके कॉलेज ने मुझे इस काबिल बनाया ही नहीं कि मैं किसी नौकरी के लिए सिलेक्ट हो सकूं, जबकि ये जिम्मेदारी थी उसकी। इस तरह जो सर्विस देनी चाहिए थी उसे, वो नहीं दी उसने, और इसीलिए मुझे पूरा हक है कि जो फीस चुकाई है मैंने यहाँ, वो वापस पा सकूं, और वो भी ब्याज व हर्जे खर्चे।

0: मैंने LLB नहीं किया है आपके कॉलेज से, अरे BA किया है BA। जो प्रोडक्ट आपका है ही नहीं, उसकी क्वालिटी पर कैसे इतरा सकते हैं आप? फीस तो आपको लौटानी होगी सर।
1: और अगर हम ना बोल दें तो?
0: आपका मुंह, जो चाहे सो बोलिए, पर तब मैं कंज्यूमर कोर्ट चला जाऊंगा और हर जाना भी तब 10 गुना होगा।
2: ओह नो।
0: ओह यस, बोलिए सर। कोर्ट कचहरी के लफड़े में फंस गए ना तो मिट्टी पलीत हो जाएगी आपकी।
1: ठीक है, मगर इसके लिए हमें अपने मैनेजमेंट से कंसल्ट करना होगा।
0: शौक से करिए, 1 हफ्ते का टाइम मैंने दिया है नोटिस में, इसके भीतर मुझे जवाब मिल जाना चाहिए, नहीं तो मुझे दोष मत दीजिएगा सर।
3: मैंने 1 हफ्ते का टाइम दे रखा है, शौक से कीजिए, शौक से।

0: और भाई मिश्रा जी, कैसी चल रही है आपकी हिंदी टीचिंग?
1: अरे कहाँ प्रिंसिपल साहब, आजकल तो मेरा विषय बिल्कुल उपेक्षित हो गया है। आपने मुझे योग की कक्षा लेने के लिए कह दिया,
0: अच्छा, खूब याद दिलाया आपने। योगा टीचर बामदेव की पत्नी को बच्चा होने वाला था ना, कुछ खबर है उनकी?
1: बच्चा नहीं श्रीमान, बच्चे कहिए बच्चे। अरे उनके यहां तो बच्चे बहुवचन में आविर्भूत हुए हैं
0: भूत
1: श्रीमान।
0: हुए हैं? क्या मतलब?
1: अरे श्रीमान, तात्पर्य यह है कि वामदेव जी की भार्या के उदय से युगल संतानें उत्पन्न हुई
0: ओ,
1: है।
0: अरे भाई, इतनी शुद्ध हिंदी का प्रयोग क्यों करते हैं आप? लगता है फारसी में बात कर रहे हैं। जरा आम भाषा में बताइए ना कि।
1: अरे सर वो
0: सर, मैं बताता हूं। आइए आइए, गणिताचार्य कृष्ण गोपाल श्री वास्तव जी।
2: धन्यवाद सर, मैं बताता हूं सर आपको। बामदेव जी की वाइफ को जुड़वा बच्चे हुए हैं
0: मगर कब, कितने दिन हो गए?
2: सर। दोनों बच्चों को मिलाकर 2 दिन 12 घंटे और 16 मिनट प्रति बच्चे एवरेज आया 1 दिन 6 घंटे और 8 मिनट।
0: ओहो, ये कोई गणित का सवाल है जो एवरेज निकाल रहे हो?
1: और श्रीमान, बामदेव जी ने तो उनका नामकरण भी कर दिया है।
0: इतनी जल्दी? अभी तो
1: जी
0: नामकरण संस्कार का समय नहीं आया।
1: अरे श्रीमान, वो बामदेव हैं, कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व किए गए कर्म श्रेष्ठ होते हैं।
0: स्मार्ट गाई, स्मार्ट गाई, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। और नाम क्या रखा है उनका?
1: अरे सर, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम श्रीमान। योगा शिक्षक है ना, तो इससे उत्तम नाम भला और क्या पाते वो।
0: अनुलोम विलोम, बहुत सही, बहुत सही। ये तो अच्छा हुआ कि वे भूगोल के अध्यापक नहीं थे, नहीं तो उनके नाम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव रख दिए होते। खैर, उनकी धर्म पत्नी कैसी है? स्वस्थ तो है ना?
1: कौन? कपाल भारती जी। अरे वो तो शवासन में है अभी सर।
0: शवासन?
1: जी
0: मतलब वो गई?
2: ना ना ना ना ना ना सर, मिश्रा जी भी ना, योगा पढ़ाते पढ़ाते अब योगा की भाषा बोलने लगे हैं। कपाल भारती जी टोटल बेड रेस्ट पर हैं सर।
0: ओ, तो यूं कहिए ना मिश्रा जी, आप भी और आपकी हिंदी भी। अच्छा, और उनकी माता जी? वैसे वे तो आई होंगी ना अपनी बहू की देखभाल करने।
1: कहाँ श्रीमान, उनका तो कब का प्राणायाम हो चुका है।
0: मुझे ठीक से बताइए ना मिश्रा जी, आप बार बार मुझे परेशानी में क्यों डाल देते हैं?
1: क्षमा करें श्रीमान, वो क्या है ना कि हिंदी व योग की शब्दावली जरा मिश्रित हो गई है। वस्तुतः मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि उनकी माता जी का प्राणांत हो चुका है।
2: मतलब ये कि अब नहीं? नहीं सर वो।
1: हाँ
0: ओ, भाई बड़े ही होनहार अध्यापक हैं हमारे।
3: गुड मॉर्निंग सर।
0: आ गए आप मिस्टर चतुरसेन।
3: सर, हमारे कंपनसेशन के संबंध में आपने क्या निर्णय लिया है?
0: चतुरसेन जी, आपके मैटर में हमने मैनेजमेंट से चर्चा की थी।
3: फिर?
0: अरे मान ही नहीं रहे थे वे लोग। एक मेंबर तो बिल्कुल ही तमतमा गए।
3: क्यों?
0: कहने लगे मानहानि का मुकदमा कायम करेंगे ऐसे व्यक्ति पर जो हमारे कॉलेज की बदनामी करता फिर रहा है। अरे पिछले 5 सालों में कुल मिलाकर 3 IAS, 5 IPS, 14 डिप्टी कलेक्टर और 18 DSP सेलेक्ट हो चुके हैं हमारे कॉलेज से, और बाकी सर्विसेज की तो कोई गिनती नहीं। यहां तक कि कंज्यूमर कोर्ट के जज साहब भी यहीं के पढ़े स्टूडेंट हैं। आखिर इन लोगों को भी तो वही तालीम दी गई थी ना जो आपको दी गई।
3: फिर यानी कि तैयार ही नहीं हुए वो लोग।
0: अरे छोड़िए जी उनकी बातें, वे ठहरे व्यापारी लोग, बेरोजगारों का दर्द क्या समझें, अपने स्टूडेंट की तकलीफ तो हम समझते हैं
3: सर। वो हाँ बिल्कुल, मतलब हमारा काम हो जाएगा ना सर।
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने भी खूब पानी पिलाया उन लोगों, बोल दिया कि कंज्यूमर कोर्ट का जज आपके कॉलेज का पड़ा है तो क्या कर लेंगे आप लोग। अरे जज किसी का सगा नहीं होता, वो कानून से फैसला करता है और कानून चतुर से इनके पक्ष में है। हम लोगों ने सेवा में कमी की है, ये बात इसी बात से साबित हो चुकी है कि चतुर सेन को अब तक कोई नौकरी नहीं मिली।
3: तो मतलब हमारा चेक रेडी है ना सर।
0: अरे रेडी ही समझिए जी, बस जरा सी फॉर्मेलिटी रह गई है, 2-3 घंटों में वो भी पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपका चेक आपके हाथ में।
3: अरे सर फॉर्मेलिटी, अब वो क्या सर?
0: दरअसल मैनेजमेंट इस बात का सर्टिफिकेट चाहता है कि इस कॉलेज ने आपको घटिया शिक्षा दी है, रिकॉर्ड में लगाने के लिए। अरे भाई कॉलेज की बैलेंस शीट का भी तो ऑडिट होता है ना, सो ऑडिटर के ऑब्जेक्शन से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी है।
3: ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आजकल किसी की मनमानी थोड़ी ही चलती है, अब पेमेंट होगा तो ऑडिटर तो देखेगा ही उसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सब समझते हैं।
3: पर इसके लिए मुझे क्या करना होगा सर?
0: कुछ नहीं, बस एक फॉर्मल टेस्ट होगा, 2-3 लोगों की पैनल बैठ जाएगी, उसमें वो ये देखेगी कि आपका नॉलेज कैसा है।
3: ऐसा क्यों सर?
0: अगर उस टेस्ट में आप फेल हो गए तो कॉलेज आपकी पूरी फीस मय ब्याज खर्चे के साथ वापस कर देगी और फेल रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लगा देगी।
3: और अगर मैं सर फेल ना हो पाया तो?
0: भाई तब तो मजबूरी है, मैनेजमेंट इतना तो देखेगा ही ना कि कॉलेज ने आपको ठीक से नॉलेज दिया है कि नहीं, आखिर कॉलेज की भी चूक दिखनी तो चाहिए ना।
3: ओके ठीक है सर, मैं तैयार हूँ।
0: सिट डाउन मिस्टर चतुरसेन।
3: जी सर।
0: मैं पैनल से आपका परिचय करा दूं।
3: जी।
0: ये है प्रोफेसर मिश्रा।
3: जी।
0: हिंदी के अध्यापक हैं। और ये है मिस्टर श्रीवास्तव।
4: हेलो।
0: गणित पढ़ाते हैं।
3: जी नमस्ते सर।
0: ये दोनों लोग हमारे पैनल के 2 मेंबर हैं और तीसरा मेंबर और चेयरमैन मैं खुद हूँ।
3: आपको भी नमस्ते सर।
0: नमस्ते, वेरी क्लेवर। मैं आपसे जनरल नॉलेज और दीगर विषयों के सवाल पूछूंगा, इन सवालों के जो भी जवाब आपको आते हैं उन्हें ठीक ठीक देना है, कोई चीटिंग वगैरह नहीं करनी है, बिल्कुल ऑनेस्टली। और हाँ, तीनों मेंबर्स के 100-100 मार्क्स हैं, यानी कुल मिलाकर 300 मार्क्स, पास होने के लिए आपको पाने होंगे 40%, यानी कुल मिलाकर 300 में से 120 नंबर। तो तैयार हैं आप?
3: यस सर।
0: मिश्रा जी शुरुआत आप कीजिए।
4: हाँ तो चतुरसेन, मेरा पहला प्रश्न हिंदी व्याकरण से है और आपको ये बताना है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से दोहराता हूँ, हिंदी में वचन कितने होते हैं?
3: सर 7।
4: सोच कर उत्तर दीजिए, सोच कर। मेरा प्रश्न है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। एक क्लू देता हूँ आपको, वचन को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजी में नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। आपको बताना इस तरह है कि हिंदी में कुल कितने नंबर यानी कि वचन होते हैं।
3: कह दिया ना सर, 7 वचन, फाइनल आंसर।
4: हाँ, वो कैसे पैनल को समझाएंगे आप?
3: बिल्कुल सर, हमारे यहाँ शादी के समय वर और वधु एक दूसरे को 7 वचन देते हैं।
4: हाँ।
3: तो फिर हिंदी में कितने वचन हुए? 7 ही ना।
4: चलिए छोड़िए, गोली मारिए वचन वचन को। हम आपसे दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि हिंदी भाषा के वे कौन से कवि हुए हैं जो दोनों आंखों से अंधे थे?
3: अंधे कवि?
4: हाँ
3: अंधे कवि, सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है।
4: एक क्लू देता हूँ आपको। वो एक भक्त भी थे और उनके नाम के अंत में दास आता है।
3: सर याद आ गया, तुलसीदास।
4: तुलसीदास, मगर वो कैसे?
3: सर तुलसीदास ही थे ना जो भरी बरसात में अपनी वाइफ से मिलने के लिए सांप को रस्सी समझकर छत पर चढ़ गए थे। अब ये काम तो कोई अंधा ही कर सकता है ना सर।
4: ठीक ठीक। अब अपना तीसरा प्रश्न आप ध्यान से सुनिए
3: जी।
4: मैं एक कविता की पहली पंक्ति आपको सुना रहा हूँ। आपको बताना यह है कि इस कविता के रचयिता कौन है। हाँ, तो कविता की पंक्ति है, मानुष हो तो वही रसखान, बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन।
3: सर ये कविता तो हमने कभी सुनी ही नहीं सर।
4: अरे नहीं भाई, ये तो बहुत ही सामान्य कविता है और हिंदी की कक्षा में पढ़ाई ही जाती है। चलिए मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ
3: जी,
4: जिससे आपको संपूर्ण प्रसंग याद आ जाए। कवि रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, अगले जन्म में यदि आप मुझे मनुष्य बनाना तो उस गांव का ग्वाला बनाना जो ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में रहता है। चलिए चलिए आप बताइए इसके रचयिता का नाम क्या है, बता सकते हैं ना आप?
3: जी सर, गोविंदा।
4: गोविंदा,
3: लॉक कर दीजिए सर, यही है।
4: अरे गोविंदा, अरे भाई वो कब से कविता लिखने लगा?
3: सर मैं शर्त लगा सकता हूँ आपसे, गोविंदा को छोड़कर कोई और ऐसी कविता लिखी ही नहीं सकता।
4: अरे
3: अरे ग्वालों के संग गोविंदा नहीं रहना चाहेगा तो भला और कौन रहना चाहेगा सर।
4: ठीक है चतुरसेन, आपका अगला प्रश्न है कि हाँ हाँ, विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है?
3: विद्या शब्द का पर्यायवाची? सर मुझे नहीं मालूम।
4: अरे भाई ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कॉलेज आने वाले सभी विद्यार्थी इसे पाना चाहते हैं और हमारी संस्कृति में इन्हें देवी भी कहा जाता है। नृत्य संगीत जैसी कलाएं इन्हीं के दम पर हैं। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है।
3: जी जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ गया मैं।
4: बताइए।
3: श्री देवी।
4: श्री देवी, अरे मगर वो कैसे भाई?
3: देखिए सर, वो एक देवी भी है और एक जमाने में कॉलेज स्टूडेंट्स में इनकी दीवानगी भी काफी थी। और नृत्य संगीत, ओ हो, वो तो पूछिए ही नहीं सर। नगीना फिल्म देख लीजिए ना आप, आपको खुद जवाब मिल जाएगा सर।
4: अरे श्रीमान प्रिंसिपल महोदय, मेरा तो सर दर्द होने लगा, मैं कुछ समय का विश्राम चाहता हूँ।
0: ठीक है मिश्रा जी, विश्राम कीजिए, अब बारी श्रीवास्तव जी की है, आइए श्रीवास्तव जी।
2: धन्यवाद जी। चतुरसेन जी, मेरा सवाल बहुत ही आसान है, आप मुझे ये बताइए कि एक आदमी अगर किसी काम को दो दिन में पूरा करता है तो दो आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अरे अरे सवाल एक बार फिर से दोहराता हूँ मैं।
3: जी जी सर।
2: एक आदमी अगर किसी काम को दो दिन में पूरा करता है तो दो आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे?
3: सर 2 × 2 = 4, सर 4 दिनों में।
2: थोड़ा सोच कर चतुरसेन, ये गणित का सवाल है, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। अरे भाई जब आदमी बढ़ेंगे तो दिन तो कम लगने ही है ना।
3: सर मैंने सोचकर ही उत्तर दिया है और मेरा उत्तर बिल्कुल सही है।
2: मगर कैसे, समझाएंगे आप हमें?
3: देखिए सर, जब एक आदमी काम करेगा तब तो वो केवल काम करेगा और काम को दो दिनों में निपटा देगा, लेकिन जब दो आदमी काम करेंगे तब वो काम कम बातें ज्यादा करेंगे, तो दो दिन से ज्यादा तो लगेंगे ही ना।
2: बहुत सही, क्या गणित है। अच्छा फिर अगर 4 आदमी कर दिए जाएं तो?
3: फिर तो काम ही नहीं खत्म होगा सर।
2: वो कैसे?
3: अरे सर फिर तो वहां गुटबंदी शुरू हो जाएगी, दो दो लोगों के दो गुट बन जाएंगे और ये दोनों गुट आपस में लड़ पड़ेंगे, फिर क्या सिर्फ फुटबॉल हो जाएगी
5: और चार के चारों हवालात पहुंच जाएंगे। अब आप ही बताइए ना, क्या ऐसे में काम खत्म हो सकता है?
2: अरे बाप रे, इतनी गहरी पढ़ाई तो हमने भी कभी नहीं की। अच्छा गोली मारी आदमी आदमी को, मैं एक बहुत ही आसान सवाल पूछता हूँ आपसे। एक पेंसिल का दाम 1 रुपए है, तो 12 पेंसिलों का दाम क्या होगा?
5: 12 पेंसिलों का, 12 पेंसिलों का सर 10 रुपया।
2: 10 रुपया? मगर वो कैसे?
5: सर 10 पेंसिलें लेने पर 2 पेंसिलें फ्री में मिल जाएंगी, बस हो गया। 12 पेंसिलें और 10 रुपए, हमारे मोहल्ले में स्टेशनरी वाला देता है सर।
2: अच्छा अच्छा, तो अब ये बताइए कि एक कार निर्माता कंपनी का दावा है कि उसकी बनाई कार 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर का सफर करती है, तो 5 लीटर पेट्रोल में वो कितने किलोमीटर का सफर करेगी?
5: सर 50 किलोमीटर का।
2: मगर कैसे?
5: सर देखिए, कंपनियों के दावे 50% से ज्यादा सही होते ही नहीं है। ऐसे में वो कार 5 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर से ज्यादा जा ही नहीं सकती। हाँ, कम जरूर जा सकती है।
0: ठीक है चतुरसेन, अब आप हमारे सवालों के जवाब दीजिए।
5: जी,
0: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है?
5: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम, वो तो दुनिया जानती है सर, ओसामा बिन लादेन।
0: ओसामा बिन लादेन? मगर ये तो गलत जवाब है भाई, वो ओसामा नहीं बल्कि ओबामा है।
5: हाँ, तो ओबामा बिन लादेन कर दीजिए ना सर, आखिर बा और सा का फर्क ही है ना, बोलचाल में इतना तो चलता है।
0: अरे बा और सा का ही फर्क नहीं, बिन लादेन का भी फर्क है। अरे भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम में बिन लादेन नहीं आता।
5: आपको कैसे मालूम कि नहीं आता? हमने तो जब जब अमेरिका पढ़ा तब तब बिन लादेन पढ़ा, यहाँ तक कि इस बार का इलेक्शन भी अमेरिका में बिन लादेन का हल्ला पीट कर किया गया सर, और जीता भी गया। माफ कीजिएगा सर, मेरा जनरल नॉलेज आपसे अच्छा है।
0: अच्छा, अब आप ये बताइए कि ताज किसने बनवाया था?
5: बहन छायावती ने।
0: बहन छायावती ने? मगर वो कैसे?
5: सर यही तो है, आप अखबार बिल्कुल नहीं पढ़ते। ताज कॉरिडोर का मामला कितना उछलता रहा पेपरों में, याद कीजिए, बेचारी छायावती ने जैसे गुनाह कर दिया जो ताज बनवा दिया। बड़ी मुश्किल से पिंड छूटा उसका, वो भी कोर्ट में जाकर।
0: चलिए अब एक सवाल अर्थशास्त्र पर, इकोनॉमिक्स। प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर होता है?
5: सर, जो कर आंखों के सामने वसूल किया जाए वो प्रत्यक्ष कर, और जो आंखों में धूल झोंक कर वसूल किया जाए वो अप्रत्यक्ष कर होता है।
0: वेरी गुड। एक उदाहरण देंगे इन करों का?
5: बिल्कुल सर, लूट प्रत्यक्ष कर है और जेब कटी अप्रत्यक्ष कर।
0: अच्छा, अब एक आखिरी सवाल।
5: जी,
0: एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और किसी जगह पहुंचने में उसे 2 घंटे लगते हैं, तो बताइए मेरी उम्र कितनी है?
5: सर जोड़ने दीजिए, 18 + 18 = 36। हाँ सर, 36 साल।
0: करेक्ट आंसर। मगर कैसे निकाला आपने भाई?
5: सर मेरा एक भाई है जो आधा पागल है और उसकी उम्र 18 साल है। अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, आपकी उम्र हुई 18 + 18 मतलब 36 साल।
0: ठीक है चतुरसेन, ठीक है, आप थोड़ी देर बाहर इंतजार करें, तब तक हम आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं।
5: जी बेहतर सर।
0: अरे क्या किया जाए भाई, ये चतुर लड़का तो बड़ा कन्हैया है, जानबूझकर सारे सवालों के जवाब गलत दे रहा है।
2: जी सर।
0: इस आधार पर तो हमें इसकी फीस लौटानी ही होगी।
2: सर हमारे पास एक आइडिया है।
0: वो क्या?
2: सुनिए सर।
0: अरे वाह
2: सर,
0: फिर बुलाइए। चतुरसेन जी, आप इस परीक्षा में उच्च अंकों से अनुत्तीर्ण हुए, बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। आपको उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए थे 40%। लेकिन आपने महज 0% अर्जित करके अनुत्तीर्ण होने का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। हम आपका क्लेम स्वीकार करते हैं।
5: जी सर,
0: हमने मान लिया कि हम आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे सके, इसीलिए मैं ब्याज फीस वापसी का आपका हक बनता है।
5: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
0: अरे इतना मच मचाइए नहीं, ये लीजिए 17,542 रुपए का आपका चेक।
5: 17,542? मगर ये तो गलत है सर, 3 सालों की पढ़ाई के दौरान कुल मिलाकर मैंने 36,000 तो केवल फीस के दिए हैं। इसके बाद 2,000 योगा के नाम पर, 7,000 कंप्यूटर के नाम पर, 4,000 स्पोर्ट्स के नाम पर लिए गए हैं, कुल मिलाकर हुए 49,000 रुपए। इस राशि पर अगर आप केवल 10% का भी ब्याज लगा लीजिए तो ब्याज हो गया 4,900, यानी कुल मिलाकर 53,900 रुपए। और इसकी जगह आप केवल 17,542 देना चाहते हैं मुझे, ये बेईमानी है सर, दिस इज चीटिंग।
0: चतुर सेन, आपने बिल्कुल सही हिसाब लगाया, इस कॉलेज ने आपको बिल्कुल सही तालीम दी है, प्रॉपर एजुकेशन। यह आपका अंतिम टेस्ट था जो 300 नंबरों का था, इसमें आपको मिले हैं 300 में से 300 नंबर। इस तरह कुल मिलाकर 600 में से आपको मिले 300 नंबर। 50% मार्क्स के साथ आप टेस्ट में उत्तीर्ण घोषित किए जाते हैं और फीस वापसी का आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाता है। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं।
5: नहीं नहीं सर, ये चीटिंग है सर, आपने तो बताया ही नहीं था सर ये टेस्ट का हिस्सा है।
4: हाँ, और आप क्या कह रहे थे चतुर सिंह?
0: बताइए बताइए,
4: क्या कर रहे थे आप? जानबूझकर प्रश्नों के गलत जवाब दे रहे थे।
0: अभी हमारे
4: वो क्या था आखिर? वो पुरानी कहावत भूल गए आप, जैसे को तैसा।
5: सर सर सर, ऐसा ना करिए सर, मैं 17,542 पर ही कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ सर। लाइए सर लाइए, ये चेक मुझे दे दीजिए।
0: बिल्कुल नहीं, भुंजी भांग भी नहीं मिलेगी तुमको। गेट आउट
5: सर,
0: आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर।

तो श्रोताओं, ये था हमारा हास्य नाटक फीस। इसका आलेख तैयार किया था प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को मेरा शत शत प्रणाम।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

मैं अशोक चक्रधर FM रेडियो का अभिनंदन करता हूं जो 90.8 पर आप सुनते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इसका प्रसार और प्रचार निरंतर हो रहा है। ये रेडियो आज़ाद हिंद है। आज़ाद हिंद

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के पांचवे सूक्त से वाचन। ऋषि हैं सोमाहूति भार्गव, देवता हैं अग्नि और छंद है अनुष्टुप।
3: होता जनिष्ट चेतनः पिता पितृभ्य ऊतये प्रयक्षञ्जेन्यं वसु शकेम वाजिनो यमम्। शरीर में चेतना उत्पन्न करने वाले ये होता एवं पिता रूप अग्निदेव पितरों की रक्षा के लिए उत्पन्न हुए। ये हमें बलशाली, पूजनीय, रक्षा साधन से संपन्न तथा विजय दिलाने योग्य, धन प्रदान करने में समर्थ हों। आ यस्मिन् सप्त रश्मयस्तता यज्ञस्य नेतरि मनुष्वद्दैव्यमष्टम् पोता विश्वम् तदिन्वति। यज्ञ के नायक रूप अग्निदेव में सात रश्मियां व्याप्त हैं।

0: सभी स्तुतियां इन अग्निदेव के चारों ओर घूमती हैं। साकम ही शुचिना शुचि ही प्रशास्ता क्रतुनाजनी विद्वाम अस्य व्रता ध्रुवा वया इवानुरोहते। उत्तम प्रकार से शासन करने वाले ये अग्निदेव शुद्ध करने वाले पवित्र कर्मों के साथ ही उत्पन्न हुए। जो अग्निदेव के इस सनातन स्वरूप को जानता है वह वृक्ष की शाखाओं के समान बराबर वृद्धि को प्राप्त होता है और क्रम से ऊंचे ही ऊंचे चढ़ता है। ता अस्य वर्णमायुवो नेष्टुः सचन्त धेनवः कुवित्ति सृभ्य आवरम स्वसारो या इदम ययुः। नेता रूप अग्निदेव के तीनों रूपों को उत्तम प्रकार से तेजस्वी बनाने वाली, बहनों के समान परस्पर प्रेम करने वाली अंगुलियां प्रज्वलित करती हैं। ये अग्निदेव मनुष्य को दुधारू गौ के समान सुखी बनाते हैं। यदि मातुरूप स्वसा घृतम भरन्त्यस्थित तासा मध्वर्युरागतौ यवो वृष्टिव मोदते। जब माता रूपी वेदी के पास बहन रूपी उंगलियां घृत भरकर जाती हैं तब अध्वर्यु अग्निदेव के समीप उंगलियों के आने पर उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जैसे वर्षा के जल को पाकर अन्न। स्वस्वाय धायसे कृणुता मृत्विगृत्विजम स्तोमं यज्ञम चादरम वनेमा ररिमा वयम्। हे अग्निदेव, श्रेष्ठ कार्यों के निमित्त सामर्थ्य प्रदान करने हेतु ऋत्विक के समान हैं। हम उन ऋत्विक रूप अग्निदेव के निमित्त स्तोत्रों का उच्चारण करते हुए हविष्यान्न समर्पित करते हुए यज्ञ करें। यथा विद्वाम अरंकर द्विषेभ्यो यजतेभ्यः अयमग्ने त्वे अपि यम यज्ञम चक्रिमा वयम्। हे अग्निदेव, जिस प्रकार ज्ञानी जन भली भांति सभी देवों को संतुष्टि प्रदान करते हैं उसी प्रकार हमारे द्वारा जो भी यज्ञीय कार्य संपन्न हो वह आपकी तृप्ति के लिए हो।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के पांचवे सूक्त से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

मूर्खों का संग न करना, विद्वानों का संग करना और पूजनीय पुरुषों का सत्कार करना उत्तम और शुभकारक कर्म है।

ईश्वर भक्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं, उनमें सबसे सरल मार्ग ईश्वर का नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण करने का कोई नियम नहीं है। भक्त जहां भी हो, चाहे जिस हालत में हो, ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है।

हम ईश्वर की भक्ति ईश्वर को पाने के लिए करते हैं। भक्ति का वास्तविक अर्थ है ईश्वर से मिलने के लिए चलना, और यदि हम ईश्वर को पा लिए तो इसी को मोक्ष कहते हैं।

निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है और यही हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से ही प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उनसे संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता। वह प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए।

इसी भक्ति रचना के साथ आज का कार्यक्रम सांदगीत पूरा होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। उदुम्बरावती, उमरावती और बाद में अमरावती, ये एक ही शहर के नाम हैं जो समय काल में बदल गए। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में नागपुर के पास दूसरा महत्वपूर्ण नगर है अमरावती। 18वीं शताब्दी में बसा ये नगर अकाल के कारण उजड़ा भी। लोग मालवा और गुजरात की ओर पलायन कर गए, फिर लौट भी आए। सन 1860 में ये नगर व्यवस्थित रूप से अंग्रेजों ने बसाया था। रेल आई और आज ये एक प्रसिद्ध नगर है, व्यापारिक केंद्र है। सन 1897 में अमरावती में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 13वां अधिवेशन आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष थे चट्टूर संकरन नायर। इस समय नगर के राव बहादुर नरसिंह मुधोलकर, गणेश श्रीकृष्ण खापरडे और मोरोपंत विश्वनाथ जोशी यहां स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय थे। अमरावती नगर अपने प्राचीन मंदिरों और मठों के अलावा हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है। पूरे भारत में ये सबसे बड़ी व्यायामशाला है। शहीद आजम भगत सिंह भी अपनी फरारी के दिनों में यहां 3 दिन आकर रुके थे। अमरावती के प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी गणेश श्रीकृष्ण खापरडे का जन्म 27 अगस्त सन 1854 को पास के ही इंगरौली गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा के तहत उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और बाद में अंग्रेजी स्कूल में भर्ती हो गए। महाराष्ट्र के सामाजिक जीवन में भक्त संतों का बहुत प्रभाव है। गणेश श्रीकृष्ण खापरडे भी शेगांव के संत गजानन महाराज के अनन्य भक्त थे। लोकमान्य तिलक का एक भाषण सुनने के बाद संत गजानन महाराज ने उनसे कहा था कि आपको अंग्रेजों से कठोर सजा मिलेगी, और बाद में ऐसा हुआ भी। गणेश खापरडे का अमरावती निवास संतों के साथ साथ स्वाधीनता सेनानियों का मिलन स्थल भी था। यहां नियमित बैठकों के साथ स्वराज की प्राप्ति के उपायों पर चर्चाएं हुआ करती थीं। आध्यात्मिक ऊर्जा की तलाश में खापरडे जी बड़े बड़े संतों से मिल रहे थे। एक ओर स्वाधीनता आंदोलन की गतिविधियां और दूसरी ओर जीवन दर्शन की खोज, इन दोनों के बीच समन्वय और संतुलन ही उनकी दिनचर्या का अंग था। शिरडी के साई बाबा के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा थी। शिरडी के साठेवाड़े में रहकर उन्होंने साई बाबा के जीवन को समझा। नियमित पठन पाठन में रामायण, एकनाथ भागवत, योग वशिष्ठ आदि का अध्ययन और चर्चा, और फिर शिरडी के साई बाबा का सानिध्य, इन सारे अनुभवों को उन्होंने शिरडी की डायरी नामक 141 पृष्ठों की पुस्तक में संकलित किया है। साई बाबा के निष्प्रिय और विरक्त जीवन की एक झांकी है इस डायरी में।

खापरडे जी की गृहस्थी बहुत बड़ी थी। उनके साधन संपन्न परिवार में लगभग 50 सदस्य थे। 3 परिवारों को उन्होंने शरण दे रखी थी तथा 12 से 15 विद्यार्थी पढ़ने के लिए उनके घर पर रहते थे। श्रीमती लक्ष्मीबाई एक सुघड़ पत्नी के रूप में सारा कार्यभार संभालती थीं। खापरडे जी वकालत के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते थे। लोकमान्य तिलक से भेंट होने के बाद तो वे उनके अनन्य भक्त और साथी हो गए थे। लोकमान्य तिलक ने सन 1906 में कलकत्ता में शिवाजी जयंती का आयोजन किया था। खापरडे जी उनके साथ कलकत्ता यात्रा में गए और पूरे आयोजन को सफल बनाने में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। प्रकटतः खापरडे जी उस समय तक कांग्रेस के चरमपंथी गुट से जुड़ चुके थे, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के हाथ में था। खापरडे जी व्याख्यान कला में बहुत कुशल थे। मराठी, गुजराती, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं पर उनका असाधारण अधिकार था। इन भाषाओं के विशद साहित्य के अध्ययन से उन्हें अपनी भाषण कला निखारने में बहुत मदद मिली थी। लोग उन्हें रुचि और आनंद के साथ सुनते थे। सामाजिक सुधारों में भी उनकी बहुत रुचि थी। उन्हें अपना बचपन याद आता था, जिसमें गरीबी और अभाव के बीच उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की थी। उनके पिता पोस्टमैन की नौकरी करते थे। अंग्रेज अधिकारियों कर्मचारियों से निरंतर मेलजोल के कारण उनकी अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ हो गई थी। पिता का यही गुण गणेश श्रीकृष्ण खापरडे को विरासत में मिला। कॉलेज में उन्हें प्रसिद्ध कवि विलियम वर्ड्सवर्थ के पोते प्रोफेसर वर्ड्सवर्थ से अंग्रेजी भाषा पढ़ने का मौका मिला। संस्कृत में उनकी प्रवीणता की तारीफ एक बार स्वयं स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। शिक्षा और ज्ञान दान के महत्व को समझकर उन्होंने कई निर्धन बच्चों को अमरावती में अपने घर पर रखकर उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की थी। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में पुणे और उसके आसपास प्लेग के प्रसार को रोकने में भी उन्होंने तन मन धन से योगदान दिया था। वकालत से उन्होंने इतना धन कमाया था कि लोग उन्हें बरार के नवाब के रूप में जानने लगे। उनका उदार स्वभाव और सबकी मदद करने की इच्छा ने धीरे धीरे उनकी आमदनी पर भी प्रभाव डाला। स्वाधीनता आंदोलन में सक्रियता की वजह से वकालत पर भी असर पड़ने लगा। लोकमान्य तिलक पर जब देशद्रोह का मुकदमा चला तो उन्होंने उनका केस लड़ने के लिए जनता से धन संग्रह किया। स्वयं इसमें बड़ा योगदान दिया, पर तमाम बहस और प्रयत्नों के बावजूद तिलक जी को 6 वर्ष के लिए मांडले जेल बर्मा में भेज दिया गया। सन 1911 में राजनीतिक आंदोलन दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार दमन की नीति अपना रही थी। तिलक जी के साथ उनकी सक्रियता को देखकर चरमपंथी के रूप में खापरडे जी भी खुफिया पुलिस के निशाने पर थे। उनकी सारी गतिविधियों पर नजर थी, लेकिन खापरडे जी इन सब से बेखबर, बेखौफ स्वाधीनता और स्वदेशी के प्रचार में जुटे रहे।

लोकमान्य तिलक के जेल जाने के बाद खापरडे जी इतने व्यथित हुए कि उन्होंने इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल में तिलक जी की सजा के खिलाफ मुकदमा लड़ा। लंदन में गोपाल कृष्ण गोखले के इंडिया हाउस में वो 2 वर्ष से भी अधिक समय तक रहे और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपील की। स्वतंत्र विचारकों और लेखकों के बीच भारत की स्वाधीनता के पक्ष में प्रखर वक्तव्य दिए उन्होंने। उनके भाषण बड़े रोचक हुआ करते थे और वे इंग्लैंड में भारत के मार्क ट्वेन के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। 2 वर्ष से भी अधिक समय तक केस लड़ने के बावजूद तिलक जी की रिहाई का फैसला नहीं हो सका। खापरडे जी लौटकर मांडले जेल आए और तिलक जी से मिलकर फिर वापस भारत लौटे। इस दौरान एक रोचक प्रसंग भी हुआ। दिसंबर सन 1911 में खापरडे जी के आंदोलन की तहकीकात करने एक ब्रिटिश जासूस शेट्टी को नाटेकर नाम से स्वामी बनाकर अमरावती भेजा गया। परंपरा अनुसार स्वामी जी खापरडे जी के परिवार के आतिथ्य में रहे। खापरडे जी रोज डायरी लिखा करते थे। गुप्तचर ने इन डायरियों को भी देखा। डायरी में शिरडी के साई बाबा का जिक्र पाकर जासूस शिरडी गए और वहां साई बाबा और अन्य लोगों से खापरडे जी के बारे में पूछताछ की। खापरडे जी की डायरियां ब्रिटिश सरकार के पास पहुंची पर उनमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। जासूस नाटेकर को खापरडे जी के पक्ष में अपनी रिपोर्ट देना पड़ी। खापरडे जी का मानना था कि सारा घटनाक्रम शिरडी के साई बाबा की इच्छानुसार स्वयं ही संचालित हुआ और वो सारे अभियोजनों से बच गए। तिलक जी की रिहाई के बाद 19 मई सन 1917 को खापरडे जी तिलक जी को साथ लेकर शिरडी आए। साई बाबा से भारत की स्वाधीनता के बारे में तिलक जी ने गुप्त रूप से विचार विमर्श भी किया। लोग ऐसा कहते हैं कि इस मुलाकात के बाद तिलक जी का रुख उग्र गतिविधियों की अपेक्षा अहिंसक आंदोलन के पक्ष में अधिक झुकने लगा था। इतना ही नहीं, लोकमान्य तिलक के शिरडी से जाने के बाद अहमदनगर के जिला कलेक्टर ने शिरडी के साई बाबा की गतिविधियों और उनसे मुलाकात करने वालों पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए गोपनीय तरीके से एक सीआईडी अधिकारी को शिरडी भेजा था। सन 1916 में तिलक जी द्वारा घोषित इंडियन होम रूल लीग में गणेश श्रीकृष्ण खापरडे उसके संस्थापक सदस्य बने। वे संवैधानिक सुधारों पर वासुका जोशी के साथ सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। मई सन 1919 और 1920 में खापरडे जी संयुक्त संसदीय समिति में होम रूल लीग के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड की यात्रा पर गए। सन 1920 से 25 तक वे केंद्रीय विधानसभा के सदस्य रहे। लेकिन सन 1920 में लोकमान्य तिलक के असामयिक निधन से खापरडे जी का मन भी टूट सा गया और उनके राजनीतिक जीवन पर कुहासा सा छा गया। 1 जुलाई सन 1938 को स्वाधीन भारत का स्वप्न आंखों में लिए बरार प्रांत का ये स्वाधीनता सेनानी हमसे विदा हो गया। शत शत नमन ऐसे महान देशभक्त को।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल।
1: ये वतन का राग।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम बाल सभा।
2: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है रक्षाबंधन। प्रकृति के लिए भी एक रक्षा सूत्र जरूरी है।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। सावन का महीना है, बाहर बारिश की रिमझिम है, पेड़ धुले धुले से लग रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है। सच कहूं तो सावन आते ही मन भी जैसे हरा हरा हो जाता है। भाग दौड़ के बीच भी मन करता है कि थोड़ी देर रुक कर बारिश को देखें, पेड़ों के पास बैठें और इस मौसम को महसूस करें। तो बस आज स्टूडियो में मैंने सोचा क्यों ना हम सावन के इस बहुत ही सुंदर से रंग को और सावन में आने वाले एक और भी सुंदर त्यौहार को आप सब बच्चों के साथ मनाएं। तो बच्चों, रक्षाबंधन का तो बहुत सारे बच्चों को इंतज़ार रहता ही है, और जब ये त्यौहार आने वाला है और हम इसे मना रहे हैं, तब ये ज़रूरी है कि हम कुछ कुछ बातें और सोचें। और आपको ये भी पता है कि जब भी बाल सभा होती है, मैं आपके लिए कुछ ऐसा, कहते हैं ना कि फूड फॉर थॉट, कुछ ना कुछ ऐसा फूड ज़रूर तैयार करती हूँ जो आपके दिमाग के लिए हो, विचारों के लिए हो, क्योंकि बच्चों सोचना बहुत ज़रूरी है। सोचने से दिमाग चलता है, और जब दिमाग चलता है तो एक वो गाना था ना एक फिल्म में, सोचो सोचो क्या ये पेड़ है, तो वही वाली बात है कि हम ज़रा चीज़ों को थोड़ा अलग तरह से सोचें तो बच्चों हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। तो आज हम लोग जो सोचने वाले हैं वो यही कि क्या रक्षाबंधन हम जैसे मनाते हैं उसमें हम कुछ थोड़ा सा, बहुत ज़रा सा ट्विस्ट दे सकते हैं क्या, क्योंकि बहनें तो इंतज़ार कर रही हैं भाई को राखी बांधने के लिए और उससे कोई सुंदर सी गिफ्ट लेने के लिए। लेकिन हम आपको ऐसे रक्षाबंधन की बात बताने वाले हैं बच्चों, जो आपको गिफ्ट में हो सकता है उस समय कुछ ना दे, लेकिन जीवन भर बहुत कुछ देता रहेगा। तो तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम आपको एक चीज़ सुनाने वाले हैं जो मुझे एक बच्चे ने लिखकर भेजी थी। उसने लिखकर भेजा था कि रिमझिम रिमझिम बरसे पानी, हरियाली की आई कहानी, पेड़ हंसे और धरती मुस्काए, सावन सबके मन को भाए। ये बच्ची है मेदिनी और वो आ जाने वाली थी। उसने मुझे ये छोटी सी कविता लिख के भेजी, लेकिन वो क्या हुआ ना, सावन में भीग गई, और भीग गई तो तबीयत खराब हो गई बच्चों। तो बस मैंने कहा जो तुमने छोटी छोटी सी कविताएं लिखी हैं वो मुझे भेजो, मैं आज बच्चों को सुनाऊंगी। अब क्या होता है बच्चों कि हम बाकी दिनों में कितनी भी चीज़ों में उलझे रहें, स्कूल, पढ़ाई, मोबाइल, टीवी, घर का काम, लेकिन बारिश आते ही हम और आप खिड़की के बाहर झांकते ज़रूर हैं, पेड़ों को देखते ज़रूर हैं, बारिश की आवाज़ सुनते ज़रूर हैं, मिट्टी की खुशबू को महसूस करते हैं। यानी हमें प्रकृति थोड़ा रुकना सिखाती है ना? और इसी को बच्चों माइंडफुल लिविंग कहा जाता है। यानी हम जिस पल में जी रहे हैं उसे हमें ध्यान से जीना है, और प्रकृति इसके लिए बहुत अच्छी जगह है। कभी आप लोग पेड़ों के नीचे बैठे हैं, अच्छा लगता है ना, पत्तियां हिलती हैं, कभी कभी चुपचाप बैठ जाते हैं बच्चे तो भी ऊपर से पत्तियां गिर रही होती हैं, और कभी कभी हवा चलती है तो बच्चों को और मज़ा आ जाता है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, जो हमारे मन को बहुत सुकून देती हैं, जैसे किसी पेड़ के पास बैठना, उसे छूना, उसकी छाया में सांस लेना, ये सब हमें प्रकृति से जोड़ता है। और पता है बच्चों, कुछ लोग तो पेड़ों को गले भी लगाते हैं, जैसे हम किसी अपने से मिलकर गले लगते हैं ना, वैसे ही, और इससे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस होता है। आप पता है आज जब मैं यहाँ आ रही थी, बहुत झिमिर झिमिर, बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो मैंने देखा कुछ बच्चे एक जगह पानी भर गया था, तो उस जगह ना बहुत तेजी तेजी से उछल रहे थे और वो बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे थे कि उनके कपड़े गंदे हो रहे हैं। बस यही बचपना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए आज जो बात मैं करने वाली हूँ आपसे रक्षाबंधन की, वो ये है कि बच्चों, रक्षाबंधन पे हम भाई को राखी बांधते हैं, लेकिन इस बार मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन के दिन या फिर कभी भी आपको जब लगे, तब एक रक्षा सूत्र किसी पेड़ को, किसी पौधे को बांध कर देखिए। इसलिए क्योंकि वो आपका प्रकृति से एक अलग तरह का रिश्ता बनाएगा बच्चों। क्योंकि रक्षा सूत्र, अगर हम रक्षा के लिए कहें तो पेड़ और प्रकृति भी तो कितनी चीजों से हमारी रक्षा करती है। ये पेड़ हमें सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं बच्चों, और उससे बड़ा क्या है बताइए। और जब हम उनको रक्षा सूत्र बांधेंगे तब हमारा एक रिश्ता कायम होगा पेड़ के साथ। कुछ बच्चे तो पौधों में पानी देते हैं और ध्यान रखते हैं कि कोई फूल ना तोड़े, कोई फल ना तोड़े, कोई पत्थर ना मारे पेड़ पर, ये सब ध्यान रखते हैं। लेकिन कुछ बच्चे शैतानी करते हैं, अगर आम लगा हुआ है तो फट से कंकड़ मार देंगे और आम तोड़ लेंगे, लेकिन आपको ये नहीं करना है। हाँ, तो इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना है, पेड़ को एक रक्षा सूत्र बांधना है, और हो सके तो कुछ और बच्चों को भी ले जाइए अपने साथ। जब आप ढेर सारे बच्चे लेकर पेड़ के पास जाएंगे, उसको तिलक करेंगे ऐसे सांकेतिक रूप से, और रक्षा सूत्र बांधेंगे, और कॉलोनी और मोहल्ले के बच्चों को जब आप ये बताएंगे कि इस बार रक्षाबंधन हम प्रकृति के साथ भी मनाएंगे, है ना, तो फिर आप देखेगा कि आपका उस पेड़ के साथ कितना गहरा नाता हो जाएगा, उसके प्रति आपकी एक जिम्मेदारी बन जाएगी। अब एक बहुत सुंदर सी बात है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जन्म देने वाली माँ और हमें पालने पोषण करने वाली मातृभूमि, दोनों का स्थान स्वर्ग के सुखों से भी ऊपर और महान होता है। तो बच्चों, इस धरती के लिए, इस जन्मभूमि के लिए अगर हम बच्चे कुछ सबसे अच्छा कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं अपनी प्रकृति की रक्षा और सेवा। ऐसे ही एक और गतिविधि मैंने देखी कि कुछ लोग नर्मदा नदी के किनारे जाते हैं, कलश में जल भरते हैं और जल पर रक्षा सूत्र बांधते हैं। और बच्चों, यही देखने के बाद आज मैंने आपसे ये बात कही है। क्योंकि क्या होता है ना बच्चों, जब वो रक्षा सूत्र बांधते हैं तो वो एक खुद से संकल्प भी लेते हैं कि अब से हम जल को बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेंगे। नर्मदा नदी आपको पता है हमारे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है, सालों से, लाखों वर्षों से ये नदी बह रही है बच्चों। और खास बात यह है बच्चों कि इस नदी के पास कोई ग्लेशियर से पानी नहीं आता। जो ये जंगल, जो ये बड़े बड़े पेड़, जो बहुत सारे जंगल मिलकर जो पानी को बचाते हैं, अपनी जड़ों में जो पानी को सोखते हैं, वो पानी धीरे धीरे रिस कर इस नदी में आता है, और फिर ये जाने कितने लोगों को जीवन देती हुई बहती है। तो कितनी बड़ी भूमिका है ना पेड़ों की। तो इस बार आप याद रखिए कि आपको पेड़ों के साथ, जल के साथ और प्रकृति प्रदत्त हर चीज के साथ रक्षा सूत्र का एक बंधन मन ही मन जरूर बांधना है, ताकि आप प्रकृति की सेवा करने का एक संकल्प अपने भीतर जरूर लें। और जो बच्चे ऐसा करेंगे वो मुझे बाल सभा में बाद में भी बता सकते हैं। आप लोगों को तो मैं मिलती ही रहती हूँ, कभी आपके स्कूल से निकलते वक्त, कभी आपके कॉलोनी, कभी आपके मोहल्ले, बहुत सारी जगह आप मुझसे मिल सकते हैं। और मुझसे ही क्या, आप अपनी माँ को बता सकते हैं, पिताजी को बता सकते हैं कि हमने इस बार रक्षाबंधन पर प्रकृति की जितनी भी संसाधन है, चाहे वो जल है, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो पौधे हैं, किसी ना किसी को रक्षा सूत्र बांधिए और खुद से प्रॉमिस कीजिए कि अब मैं जल को व्यर्थ नहीं बहाऊंगा, या नल खुला देखूंगा तो बंद कर दूंगा, और पेड़ों के साथ भी ये वचन निभाऊंगा कि मैं उसकी रक्षा करूंगा या रक्षा करूंगी। कुछ बच्चे मुझसे बता रहे थे कि हम पेड़ों को पानी रोज देते हैं, लेकिन मैडम क्या होता है ना, कुछ बच्चे आकर वहाँ बहुत कचरा कर देते हैं, घर का सारा कचरा लाकर पेड़ के पास फेंक देते हैं। तो मैंने बोला ये चीज़ कि बच्चों सब लोग मिल जाओ और एक छोटा सा क्लब बना लो, कॉलोनी का, मोहल्ले का, वो क्या होगा, आपका किड्स क्लब हो जाएगा, वो आपका बच्चों का क्लब हो जाएगा, और उसमें यही सब शिकायतें आए, आप लोग कहानियों की किताबें पढ़ो और उन्हीं कहानियों को फिर आप डिस्कस करो, कम से कम सप्ताह में एक

0: उन्हें निभाते हो तो बड़ा मजा आता है बच्चों। तो क्या मैं ये उम्मीद करूं कि एक बच्चों का क्लब जल्दी से बनने वाला है और फिर मुझे आप लोग बताने वाले हो? एक कहानी सुना दूं इसी बात पर आप लोगों को, एक ईमानदार बच्चे की कहानी सुनाती हूं, ईमानदारी का फल। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। माता पिता की इकलौती संतान, बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके माता पिता ने हमेशा अच्छाई और सच्चाई का पाठ पढ़ाया था। एक दिन रामू स्कूल से घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बटुआ पड़ा हुआ मिला। बटुआ समझते हो, जो हाथ में लोग लेकर चलते ना, बटुआ कपड़े का भी बनता है और उसमें वो पैसे रखे रहते हैं, मतलब पर्स समझ लीजिए आप एक तरह से। तो जैसे ही रामू ने बटुए को देखा, उसने बटुए को उठाया, उसने क्या देखा कि उसमें तो बहुत सारे पैसे थे। रामू ने सोचा, ये पैसे तो किसी के बहुत काम आ सकते हैं, मुझे इसे उसके मालिक तक पहुंचाना ही है। उसने बटुए में रखे पते को देखा और उसी दिशा में चल पड़ा। वो पता गांव के एक धनी व्यापारी का था। रामू ने उनके घर जाकर दरवाजा खटखटाया। व्यापारी ने दरवाजा खोला और रामू को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। रामू ने विनम्रता से बटुआ उन्हें वापस कर दिया। व्यापारी ने बटुआ खोलकर देखा और पाया कि उसमें सभी पैसे बहुत सुरक्षित थे। वो रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। व्यापारी ने रामू से पूछा, तुम्हें पता था कि इस बटुए में इतने सारे पैसे हैं, फिर भी तुमने इसे वापस कर दिया, तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? रामू ने जवाब दिया, सर, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। ये पैसा मेरा नहीं है, इसलिए मैं इसे आप तक वापस लाया हूँ। व्यापारी रामू की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे इनाम के स्वरूप कुछ पैसे दे दिए। उन्होंने रामू के माता पिता से भी मुलाकात की और उनकी परवरिश की प्रशंसा की। तब रामू के पिता ने कहा कि मुझे इसे आगे की पढ़ाई करवाने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब उस व्यापारी ने कहा कि जब आप इतनी अच्छी परवरिश कर सकते हैं, तो इतनी मदद तो मैं आपकी कर ही सकता हूं कि आपसे रामू की पढ़ाई लिखाई सब का खर्च मैं उठाऊंगा। फिर क्या था, उस व्यापारी ने रामू को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया और देखते ही देखते रामू ने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की और एक दिन बड़ा होकर वो एक सफल डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद वो फिर गांव लौटा और उसने जाकर उस व्यापारी के पैर छुए और कहा कि अगर आप ना होते तो मैं आज डॉक्टर ना होता। उस व्यापारी ने पता है क्या जवाब दिया? उस व्यापारी ने जवाब दिया, रामू, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे माता पिता की परवरिश का आज ये रिजल्ट मिला है तुम्हें, मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन जब तुमने मेरे पैसे लौटाए थे, तब मैं चकित था कि कोई बच्चा इतना ईमानदार कैसे हो सकता है कि इतने सारे पैसे देखने के बावजूद उसके मन में कोई गलत ख्याल नहीं आया। ऐसे बच्चे की मदद तो मुझे करनी ही थी। रामू ने उसके पैर छुए और वहां से निकल गया। फिर उसी गांव में गांव वालों के लिए एक क्लिनिक खोला। तो बच्चों, सुना आपने कि किस तरीके से छोटी सी घटना आपके जीवन पर कितना प्रभाव डाल देती है? अगर उस दिन रामू पैसे वापस ना करता और उनसे नहीं मिलता, तो क्या वो पढ़ने के लिए शहर जा पाता? हो सकता है चला जाता, लेकिन ज्यादा संभावना यह है कि नहीं जा पाता, क्योंकि उनके माता पिता के पास बच्चों इतने पैसे नहीं थे। वो गांव के ही किसी स्कूल में फिर आगे पढ़ाई करने के लिए भेजते नहीं भेजते, ये सब भविष्य के हाथों में था। लेकिन उस दिन की एक घटना ने रामू का भविष्य ही बदल दिया। तो कई बार आपके अच्छे काम का अंजाम हो सकता है आपको बच्चों उस वक्त दिखाई ना दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में, भविष्य में कुछ ना कुछ बेहतर जरूर होता है, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। तो जो बार बार मैं आप लोगों से बच्चों बात करती हूँ ना, कि आप अपने विचारों को बहुत अच्छा रखिए, अपनी बातचीत का लहजा, अपने बातचीत की तहजीब, बड़ों के प्रति सम्मान, आपकी भाषा, आपका व्यवहार, बच्चों ये बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। आपका हर दिन, हर पल, हर प्रतिपल आप जो व्यवहार करते हो बच्चों, आपको उसका ही रिजल्ट मिलता है। तो जिस तरह रामू अपनी ईमानदारी के बल पर इतना अच्छा व्यक्ति बनकर निकला, उसी तरह आप लोग भी अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए बच्चों। और फिर से हम उसी बात पर लौटते हैं कि हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी है, और इस रक्षाबंधन हमको क्या करना है, रक्षा सूत्र पेड़ों को या जल के कलश को भी बांधने का प्रयास करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। रक्षा का जो भाव होता है वो केवल हमारे परिवार तक क्यों रहे, हमारे जीवन में पेड़ हैं, नदियां हैं, जल हैं, इनके बिना तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है। इसलिए प्रकृति के नाम यदि हम रक्षा सूत्र बांधें, तो हमको उस समय ये नहीं सोचना है कि ये हम सिर्फ धागा बांध रहे हैं, इससे एक कदम और आगे बढ़िए। एक छोटा सा वादा करिए कि इस पेड़ को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसकी देखभाल करेंगे, इसको पानी देंगे, इसको बड़ा होते हुए देखेंगे। जब आप लोग अपने आप वादा करेंगे, और वो जो किड्स क्लब की बात मैंने कही, एक छोटी सी समिति बच्चों की बनाइए, वहाँ भी जब ये बात रखेंगे तो और बच्चों को भी समझाइएगा, और मिलकर अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में कोई जगह आपको खाली दिखे, कहीं भी आपको ऐसा लगे कि मिट्टी है और खाली जगह है, वहाँ पौधे लगा दीजिए। क्योंकि बच्चों पौधे आपसे कुछ नहीं मांगते, बस थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी जगह, और बदले में कितना कुछ देते हैं। एक आम का पौधा बड़ा होकर जब बड़ा आम का वृक्ष बनता है तो कितने लोगों को आम के फल देता है, देता है कि नहीं देता है। आपने सुबह सुबह देखा है नीम के पेड़ से कितने सारे आंटी अंकल जब निकल रहे होते हैं तो पत्तियां तोड़ते हुए चबाते हुए जाते हैं, कोई नीम की पत्तियां उबाल कर नहाने के लिए ले जाता है, क्योंकि नीम बहुत अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए भी, हमारी सेहत की बेहतरी के लिए भी। ऐसे कितने पेड़ हैं, कितने पेड़ हैं बच्चों, जो बहुत अच्छी गिलोय की बेल होती है बच्चों, जो अगर हम उसके पत्ते खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है गिलोय। ऐसे कितने पेड़, कितने फूल, कितने फल हैं जिनकी कहानियां अगर मैं आपको सुनाने बैठूं तो वो बच्चों ख़त्म ही ना हो। गुलाब के फूल तो आपने देखे ही हैं, टीचर्स डे हो या कोई भी खास दिन हो, आप बाहर से लेकर जाते हो, सोचो खरीदते हो आप, कितने लोग खरीदते हैं। लेकिन अगर आपके घर में ही पौधे लगे हों और खूब सारे फूल आ रहे हों, तो बस पौधे से ज़रा सी विनती कीजिए और एक छोटा सा फूल ले लीजिए। लेकिन इन सब के लिए हल्की फुल्की मेहनत तो लगती है, थोड़ा आपका डिटर्मिनेशन लगता है, थोड़ा आपका खुद के प्रति ईमानदारी लगती है कि अब आप पेड़ पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। अच्छा, मुझे एक बच्चा ये भी बता रहा था पिछली बार कि जब वो स्कूल में होता है हमेशा हाथ धोता है और भाग जाता है, क्यों, क्योंकि उसके पीछे कोई खड़ा नहीं होता है। घर में होता है, मम्मी डांटती है तो बंद कर देता है, और ये बात उसने खुद ही एक्सेप्ट की, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि देखिए गलती कर रहा है लेकिन स्वीकार भी कर रहा है। तो क्या आप में से भी कोई बच्चा है क्या बच्चों, जो नल खुला छोड़ने की आदत है जिसकी, अगर आप घर में हो, ब्रश कर रहे हो, नल बह रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है आप लोग के साथ? ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी बात हुई ना कि आपको पानी व्यर्थ नहीं बहाना है। याद रखना है बच्चों हमें कि प्रकृति के जो भी संसाधन है वो सीमित संसाधन है। आपने देखा है बच्चों, हम कई बार खरीद के पानी पीते हैं, बोतल का पानी खरीदते हैं और फिर पीते हैं। तो क्यों ना जब भी हम घर से निकलें, भले ही हम किसी यात्रा पे जा रहे हैं या हम खेलने जा रहे हैं, तो अपने लिए एक बोतल में पानी लेकर जाएं। उससे दो फायदे होंगे बच्चों, पूछे क्या, पूछ लिया आप लोगों ने अपने घर पे बैठ के, बोल दिया क्या, अब मैं बताती हूँ। फायदे ये होंगे, एक तो हर बार बच्चों जो प्लास्टिक की बोतल आप खरीद रहे हो ना, वो नहीं आपको लेनी पड़ेगी, वो बड़ी बड़ी लंबे समय तक परेशान करने वाली चीज़ है। और दूसरी बात, आपके पैसे भी खर्च होते हैं हर बार जब आप पानी खरीदते हो। कभी किसी ऐसी जगह फंस जाओ जहाँ आपका पानी ख़त्म हो गया है, वहाँ ठीक है, लेकिन एक आदत डालिए कि अपने घर से जब भी निकलेंगे तब हम पानी की बोतल लेकर ही निकलेंगे, और कोशिश करेंगे कि वो प्लास्टिक की ना हो। कोशिश ये भी करेंगे कि जब हम कुछ खरीदने जाएंगे या आपकी मम्मी या आपके पापा कुछ खरीदने जाएंगे तो क्या बोलेंगे आप, आपने थैला लिया या नहीं। क्योंकि जब हम घर से कपड़े का थैला लेकर चलते हैं ना बच्चों, तब फिर हमें वो पॉलीथिन नहीं लेनी पड़ती जो सामान के साथ बेवजह हमारे घर में आ जाती है। और एक पॉलीथिन, एक जो वो पन्नी भी बोलते हैं, पॉलीथिन भी बोलते हैं, प्लास्टिक की थैली भी बोलते हैं, उस एक पॉलीथिन को डिस्ट्रॉय होने में बहुत लंबा समय लगता है बच्चों, बहुत लंबा। आप सोच भी नहीं सकते कि वो ज़मीन में बरसों बरस पड़ी रहती है, नष्ट नहीं होती। और उसके कारण कई बार जानवरों को बहुत नुकसान होता है। कई बार जब नदी में आप जाते हैं और पॉलीथिन को ही छोड़ आते हैं, अपना सामान जो आप पॉलीथिन में लेकर आते हैं, तो जो जलीय जीव हैं उनको बहुत नुकसान होता है बच्चों। कई ऐसे रिसर्च हैं बच्चों, कई। अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत थोड़े से दिन पहले की बात है, बच्चे कुछ बात कर रहे थे कि महासागर, अगर हम नदी को गंदा कर रहे हैं तो क्या महासागर भी गंदे हो जाएंगे। हाँ, एक छोटी सी की जाने वाली गलती बहुत लंबे समय तक, कई कई वर्षों तक वो गलती ही रहती है। जैसे नदी में अगर आप पानी गंदा कर रहे हैं तो आप सिर्फ नदी में नहीं कर रहे हैं, वो समुद्र तक, फिर समुद्र से महासागर तक वो सब कुछ पहुंच रहा है। कहते हैं ना कि पृथ्वी एक ऐसा प्लैनेट है जिसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा भाग पर जल है ना बच्चों। तो उस जल को सुरक्षित रखने के लिए, उस जल को स्वच्छ रखने के लिए, हमारी नदियों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है हमको? हमको नदियों के पास केमिकल यूज नहीं करना है। जब हम नदियों के पास जाएं तो हमें साबुन से नहीं नहाना है, है ना, जो साबुन में भी केमिकल होते हैं और वो नदी के पानी को खराब करते हैं बच्चों। केमिकल फ्री साबुन, अब आप सोचोगे कि केमिकल फ्री साबुन कैसे ले जाएं, तो बच्चों जो मुल्तानी मिट्टी होती है और जो खुद नदी की मिट्टी होती है वो भी बड़ी अच्छी होती है। आप चाहें तो नदी में आप वैसे ही पानी से नहाकर आ जाएं, लेकिन कोशिश करें कि कोई गंदगी नहीं करेंगे। तो बच्चों, आज मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं ना, अगर उनको आप अपनाएंगे तो आप थोड़े से और समृद्ध हो जाएंगे, आपका व्यक्तित्व और बेहतर हो जाएगा। तो बस इस बार त्योहारों के इस मौसम में हमें अपनी प्रकृति के किसी भी संसाधन को, चाहे वो जल हो, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, आपको किसी ना किसी को रक्षा सूत्र जरूर बांधना है। ध्यान रखिए, जल को कलश में लेकर रक्षा सूत्र बांध सकते हैं आप। और जब आप बांधेंगे तो खुद से एक प्रॉमिस जरूर कीजिएगा कि हम प्रकृति के किसी भी संसाधन का दुरुपयोग नहीं करेंगे। अब चलिए थोड़े से संकल्प ले लेते हैं, आंखें बंद कर लीजिए। आज के बाद मैं कभी भी जल को व्यर्थ नहीं बहाऊंगा या बहाऊंगी। रक्षा का रिश्ता इंसानों के अलावा प्रकृति के साथ भी निभाऊंगा या निभाऊंगी। अपनी नदियों को स्वस्थ और स्वच्छ रखने की कोशिश करेंगे। मैं प्रकृति से प्रेम करूंगी या करूंगा। अब एक आखिरी संकल्प, जहां तक संभव हो घर से थैला लेकर निकलेंगे, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। बस अब आंखें खोल लीजिए, हल्के हल्के से अपने दोनों हाथों को मलिए और अपनी आंखों पर लगा लीजिए। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगता है बच्चों। जब भी हम इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में दो पल ठहर कर कुछ अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही लगता है। अब बस आज से नई शुरुआत और रक्षाबंधन के लिए भी एक नया विचार। अब मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलूंगी आपसे कुछ और बातें करने के लिए। लेकिन अभी के लिए बच्चों नमस्ते, अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा। बाय बाय। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। आज बाल सभा का विषय था प्रकृति के लिए रक्षा सूत्र। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और आपके साथ थी मैं आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
1: बाल सभा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को और ये कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। अभिवादन स्वीकार कीजिए पूर्वा खले का। श्रोताओं, ये दुनिया आज एक नए युग की दहलीज पर खड़ी है, जहां युद्ध के मैदानों की कोई तय सीमाएं नहीं होती और विजय के लिए केवल शक्तिशाली राष्ट्र का होना ही जरूरी नहीं, बल्कि विजय के लिए शक्ति के साथ ही हमेशा ही मुस्तैद और तत्पर राष्ट्र का होना भी उतना ही जरूरी है। श्रोताओं, अपनी सदियों की परंपराओं से प्रेरित और भविष्य के लिए तैयार, हिमालय से लेकर थार मरुस्थल तक भारतीय सशस्त्र सेना का हर कदम उभरते हुए भारत की नियति को आज आकार देता हुआ दिखाई देता है। सम्मान में निहित और नवाचारों से प्रेरित एक सशक्त और सुदृढ़ भारत के लिए आज हमारी भारतीय सशस्त्र सेनाएं प्रतिबद्ध दिखाई देती हैं। श्रोताओं, पिछले कुछ दशकों से भारतीय सेना नए कलेवर में अपना रूप ले रही है, एक अत्याधुनिक और आत्मनिर्भर शक्ति के रूप में, जहां ज्ञान, डेटा, ड्रोन्स और नई तकनीकें सैनिकों के साथ समान गति से चलती हैं। कभी आयात पर निर्भर भारतीय सेना के हथियार अब स्वदेशी हैं और हमारा देश इनका निर्माता ही नहीं, निर्यातक है। थार से लेकर अरुणाचल और लद्दाख से लेकर अंडमान तक हर प्रणाली पर स्वदेशी छाप है। ये कहना ना होगा कि इस नए स्वरूप में पहुंचने के लिए भारत की सशस्त्र सेनाओं ने एक लंबा सफर तय किया है। देश की आजादी के बाद लगभग 8 दशकों में हमारी भारतीय सेना ने जिन महत्वपूर्ण पायदानों को पार किया है, इसका जिक्र हम इस कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में करते हुए चले आ रहे हैं और इसका हमने पूरा प्रयास भी किया है, और इस प्रयास का श्रेय हमारे कार्यक्रम विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा सर को है, जो हर कड़ी में बड़ी ही शिद्दत और गहन अध्ययन के साथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं से संबंधित जानकारी हमारे लिए संजोते रहे हैं। श्रोताओं, भारतीय सेना को जानते समझते अब इस कार्यक्रम की हम अंतिम कड़ी पर आ पहुंचे हैं। आइए आज की इस कड़ी में हम पुनरावलोकन करें, फिर से दृष्टि डालें हमारी सेनाओं की भूमिका पर, जिनके कारण आज हमारा राष्ट्र पूरे विश्व में सशक्त और सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में पहचाना जाता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज फिर हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्हें लगभग 20 वर्षों का सेना में अपनी सेवाओं का अनुभव है। सर, स्टूडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है।
3: जय हिंद पूर्वा जी, जय हिंद श्रोताओं। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं,
2: जी,
3: आप सबको मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: जी सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: दिस ईयर वी आर 79th ईयर ऑफ अवर इंडिपेंडेंस,
2: जी,
3: एंड आई मस्ट से दैट द चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट।
2: बिल्कुल,
3: इन दिस वर्ल्ड
2: जी, परिवर्तन हमेशा का नियम रहा है संसार का सर।
3: एग्जैक्टली,
2: जी,
3: उसी हिसाब से देखें
2: जी,
3: there are a lot of changes which has taken place, development has taken place, upgradation has taken place in our country,
2: जी,
3: और उसी के साथ साथ जो है हमारी जो सेनाएं हैं वो भी निरंतर जो है अपग्रेडेड हो रही हैं, मॉडर्नाइज हो रही हैं।
2: बिल्कुल,
3: हमने सीरीज जब शुरू करी थी तो हमने 47 से शुरू करी थी
2: जी,
3: और हमने देखा था कि 47 से लेके अभी तक हमारी सेना निरंतर जो है वॉर्स में इन्वॉल्व रही है।
2: बिल्कुल,
3: 47 में, 65 में, 71 में हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा
2: जी,
3: और चाइना के साथ हमने 62 में युद्ध लड़ा है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, कारगिल में रहा, सियाचिन में रहा, इंडियन आर्म फोर्सेस ने IPKF में, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के तहत श्रीलंका में जो है इंसर्जेंसी में पार्टिसिपेट किया
2: जी,
3: था।
2: बिल्कुल,
3: अभी भी अगर हम देखते हैं जो आर्म फोर्सेस हैं वो टेररिज्म के अगेंस्ट जो है एंटी टेररिज्म रोल में J&K में जो है जहाँ पे कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, आतंकवाद है उससे लड़ रही है, नॉर्थ ईस्ट में भी जो है काफी जगह पे इंसर्जेंसी से लड़ रही है। इसके अलावा भी जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी और जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी को तो देखते ही हैं
2: जी बिल्कुल,
3: एंड एड टू सिविल अथॉरिटी के लिए भी जो है आप देखते हैं कि जो सेनाएं हैं हमेशा जो है तत्पर रहती हैं, हमेशा जो है उनका प्रयास रहता है, हर जगह जो है सपोर्ट करती
2: जी।
3: तो ओवरऑल इफ यू सी द आर्म फोर्सेस हैज बीन इन्वॉल्वड थ्रू आउट सिंस इंडिपेंडेंस गार्डिंग अवर नेशंस इंटरेस्ट एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है, एंड सपोर्टिंग
2: जी राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है।
3: तो ये सब हमने जो है हमारी जो पूरी सीरीज में हमने जो है देखा था
2: जी।
3: तो जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ा है वैसे वैसे जो है आर्म फोर्सेस भी कॉन्स्टेंटली जो है अपग्रेडेड हुई
2: जी।
3: है
2: देश के विकास के साथ सेना का भी विकास
3: जी, सेना का भी विकास हुआ
2: जी।
3: और जो ये चेंजेस हैं अपग्रेडेशन है मॉडर्नाइजेशन है ये मतलब हर तरह से हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि पॉलिसीज में चेंजेस आए हैं
2: जी,
3: ट्रेनिंग में चेंजेस हैं, जो हमारे पास वेपन्स हैं इक्विपमेंट्स हैं वो उनका मॉडर्नाइजेशन अपग्रेडेशन रेगुलरली हुआ है। तो इससे जो है हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स को डील करने की कैपेबिलिटी हमारी जो बढ़ती है,
2: बढ़ती है।
3: आपका दुश्मन जो कर सकता है तो आपको वो अपग्रेडेशन होना चाहिए
2: कि मुकाबला कर पाए,
3: उसका आप मुकाबला कर सकते हैं,
2: ठीक
3: है, ओके, रादर आप उससे आगे रहें, ठीक है। हमने 47 के वॉर में जो देखा था जब शुरू हुआ था 47 में जो श्रीनगर में जब शुरू हुआ था, इफ यू सी वी वेर काइंड ऑफ अ रिएक्टिव रोल, हमारे पर अटैक हुआ कबाइलीज का अटैक हुआ, उसके बाद वो संधि साइन हुई थी एंड देन वी एंटर्ड, ठीक है, तो इट वाज अ रिएक्टिव एक्शन बिकॉज उस समय जो पॉलिसीज थी 47 में, क्योंकि हमने जो ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी उसी समय हम आजाद हुए थे तो जस्ट फॉलोइंग द ब्रिटिश आर्मी, उसी तरह का हमारा ऑर्गेनाइजेशन था, उसी तरह से हमारी पॉलिसीज थी, उसी तरह से हमारे बैटल फॉर्मेशन थे। ब्रिटिशर्स के लिए तो हम तो इट वॉज मोर ऑफ ए पुलिसिंग, ठीक है, डिफेंसिव रोल वाला
2: था।
3: तो उस समय जो हमारा रिस्पॉन्स था एंड जो पॉलिसी के हिसाब से डिफेंसिव होता था,
2: केवल प्रतिक्रिया स्वरूप था,
3: प्रतिक्रिया स्वरूप। अभी अगर मैं सीधे जंप करूं 2025 जब हम आप सिंदूर देखते हैं आप बंदर देखते हैं तो यू फाइंड एब्सोल्युटली
2: पूरी तरह से विपरीत हो गई है वो हमारी जो नीतियां,
3: वी आर एक्चुअली प्रोएक्टिव
2: जी बिल्कुल सर।
3: अब हम मतलब वो है कि आप कुछ करोगे तो हम पूरी हिम्मत रखते हैं और हम करके दिखाते हैं
2: जी।
3: तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, ये बहुत बड़ा चेंज है, ये बहुत बड़ा मतलब आई विल से अपग्रेडेशन है एंड ये एक माइंडसेट चेंज होता है
2: जी।
3: और जब ये माइंडसेट ऐसा चेंज होता है तो इसके साथ साथ फिर बहुत सारी चीजें
2: बदलती हैं,
3: बदलती हैं
2: जी बिल्कुल सर।
3: जो ये मॉडर्नाइजेशन है या अपग्रेडेशन है वो किस कारण से आता है, पहले तो जो हमने लड़ाइयां लड़ी हैं जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उनसे हमें सबक मिले
2: जी बिल्कुल सही।
3: हर लड़ाई ने हमें कुछ ना कुछ
2: सिखाया है,
3: हर युद्ध में हमें कुछ सीखा है, हर कॉन्फ्लिक्ट में सियाचिन हो कारगिल हो कहीं पे भी
2: जी,
3: IPKF हो हर जगह हमने कुछ सीखा है। तो वो जो हमें सिखलाई मिली उसने हमको प्रेरित किया कि हम ये चेंजेस लेकर आए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हो, चाहे वो इक्विपमेंट में चेंजेस हो, चाहे हमारे बैटल फॉर्मेशंस में हो, हमारी डॉक्ट्रिन्स में हो, ये ट्रेनिंग में है
2: जी।
3: तो ये चेंजेस उसके कारण है। दूसरा बहुत बड़ा रीजन होता है द चेंजिंग एंड द प्रेजेंट सिनेरियो, रीजनल इंटरनेशनल सिनेरियो,
2: आसपास क्या चल रहा है,
3: आसपास क्या चल रहा है, आपके इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या है, मतलब जियोपॉलिटिकल कंडीशंस
2: क्या है,
3: उनका जो इम्पैक्ट होता है। देन अगर हम देखें हमारी जो सीमाएं हैं उसपे हमें एक साथ दोनों सीमाओं पे यानी कि पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ
2: जी
3: लड़ने की हमारी काबिलियत कैपेबिलिटी होनी चाहिए
2: बिल्कुल सर।
3: तो वो एक और फैक्टर है तो
2: सर ये हमारे पारंपरिक दुश्मन है समझ लीजिए इस तरह से कहा जा सकता है
3: बिल्कुल कहा जा सकता है। तो ये एक और फैक्टर होता है विच इज द की ड्राइविंग फैक्टर जो कि चेंजेस में अपग्रेडेशन में
2: जी हमें हमारे सेना में हमेशा परिवर्तन बनाए रखना इनके लिए जरूरी है,
3: इनके लिए जरूरी करेक्ट है जी। देन गार्डिंग अवर सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अगर देखें तो हमारा 90% जो ट्रेड होता है थ्रू सी लेन्स
2: समुद्र के द्वारा
3: द्वारा है, तो उसमें हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं उसको सेफ गार्ड करने का, देन लाइक द एयर डिफेंस ऑफ द कंट्री, सर्विलेंस एंड एयर डिफेंस ऑफ द कंट्री, सो दैट हमारे ऊपर जो है कहीं मतलब स्पेस कुछ ना हो. तो ये सब जो है कि ड्राइवर्स होते हैं जिनके तहत जो है हम नई पॉलिसीज आती हैं, नए ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है, नए डॉक्ट्रिन्स बनते हैं नेशनल लेवल पे जो डिसाइड होता है. तो अगर हम अपने देश की बात करें
2: जी,
3: हम सब जानते हैं कि जो हमारी प्रगति है इस समय
2: जी,
3: उसमें निसंदेह अगले 25 साल में 20 साल में जो है हम वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में शामिल हो जाएंगे. उसके लिए जो है ये बहुत जरूरी है कि हमारी आर्म फोर्सेस भी
2: उसी के हिसाब से तैयार हों जी, बिल्कुल.
3: क्योंकि अगर एक कंट्री को इकोनॉमिकली ग्रो करना है
2: जी,
3: ठीक है, पीसफुल एग्जिस्टेंस लेना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि वो किसी भी तरह के एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट्स का मुकाबला करने के लिए उसके पास फोर्सेस हो
2: जी, बिल्कुल,
3: और वो फोर्सेस की कैपेबिलिटी भी उस हिसाब से हो. ये जो है एक बहुत जरूरी फैक्टर है, ठीक है
2: जी.
3: टुडे अवर फोर्सेस, अगर हम अपने फोर्सेस की आज बात करें तो वर्ल्ड में इसको ऑलमोस्ट फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स कहा जाता है. रिपोर्ट्स जो होती हैं उससे बेस पे कि व्हाट इज अवर स्ट्रेंथ, व्हाट इज अवर इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, सबको
2: मिला जुला
3: जाता है
2: जी जी.
3: एंड आपको पता ही है कि हमारी भारतीय सेना में ये वॉलंटियर फोर्स है
2: जी, स्वैच्छिक संगठन है,
3: बिल्कुल. एंड इट इज वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो है वॉलंटियर फोर्स है,
2: बिल्कुल सर.
3: इसके अलावा जो है अगर आप देखें हमारी फौज को, वी आर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ यूएन मिशन. ये सब जो चीजें हैं इसको देखते हुए ये जो हमारे अचीवमेंट्स हैं उसी तरह से जो है हमारा प्रोग्रेस भी रहा है. ये है भी इसीलिए क्योंकि हमने जो है अपने आप को मॉडर्नाइज किया है. और ये जो मॉडर्नाइजेशन है, एडवांसमेंट है
2: जी,
3: अगर आप देखेंगे पिछले दो दशकों में
2: बहुत
3: तेजी से हुआ है
2: जी, बिल्कुल सर.
3: और उसका कारण भी बहुत ही ज्यादा विदित है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत जल्दी हुआ. 2009-2007 में ड्रोन्स यूज्ड टू बी अ वेरी बिग थिंग, मतलब जो है आज ड्रोन्स हैज बिकम अ वेरी कॉमन थिंग
2: जी, बच्चा जानता है सर
3: जी उसके बारे में जो है. तो डिफेंस फोर्सेस ने जो ये अडॉप्शन किया है टेक्नोलॉजी का, इससे देखिए कम्बैट एफिशिएंसी बढ़ी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है. एक और जो बात है
2: जी,
3: जो हमारी तीनों फोर्सेस हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनकी जो जॉइंटमैनशिप है, उनकी जो काबिलियत है इकट्ठे काम करने की
2: जी,
3: उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है. क्योंकि इससे क्या है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, टेक्नोलॉजी जो है स्पेशली द कम्युनिकेशन
2: जी,
3: ठीक है,
2: द
3: ट्रांसपेरेंसी. आज क्या है कि आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसी से भी बात करने के लिए रहते हैं, द रियल टाइम इन्फॉर्मेशन जो है हमें सबको मिलता है एक साथ मिलता है,
2: सूचनाएं तुरंत मिल जाती
3: है, बिल्कुल. और समय पे जो है बिल्कुल जो रियल टाइम होता है वो मिलता है.
2: हमने इसे सर ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छे से देखा,
3: एग्जैक्टली
2: जो चल रहा था हमने उसको लाइव देखा कि क्या हो रहा है,
3: क्या हो रहा है,
2: मतलब हर व्यक्ति ने, देश के हर नागरिक ने इसे देखा.
3: ये ऑफ कारगिल वॉर के बाद शुरू हुआ है जो है, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट
2: जी.
3: नॉट ओनली आई विल से कि अमंग द फोर्सेस, इवन जो और भी एजेंसीज हैं
2: जी,
3: जो डिसाइसिव एजेंसीज हैं वो भी जो है जुड़ती हैं, उनसे भी मदद मिलती है. और अगर हम जिक्र करें जो हमारी एडवांसमेंट है, उसमें जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं
2: जी,
3: नेचुरल है उनका तो सबसे बड़ा योगदान रहता ही
2: जी,
3: है
2: सर,
3: और उनके कारण जो है बहुत मेजर डेवलपमेंट्स आए हैं. ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो रिसेंटली आपने 2019-20 में जो है आप देखा होगा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की अपॉइंटमेंट,
2: हाँ जी, ये नया पद बनाया गया
3: था जिसकी डिमांड काफी टाइम से हो रही है, ऑलमोस्ट कारगिल के बाद से भी चल रहा था
2: जी.
3: He is the head of the Department of Military Affairs. And जो CDS होते हैं, ये the Principal Military Advisor to the Defense Minister.
2: सर यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, इनकी काबिलियत क्या होती है, इनको किस तरह से चयन किया जाता है सर?
3: ठीक है, इनके चयन प्रक्रिया ये रहती है कि ये मतलब लेफ्टिनेंट जनरल जनरल के रैंक के होते हैं
2: जी,
3: एंड पॉलिसीज के हिसाब से होता है कि उनकी कितनी एज होगी, क्या
2: अच्छा,
3: होगा, और तीनों सेनाओं में से कोई भी हो सकते हैं,
2: अच्छा,
3: आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में से कोई भी जो है जो सीनियर होते हैं
2: अच्छा,
3: वो इसमें मतलब जो है बन सकते हैं
2: अच्छा.
3: अब उनका अगर रोल देखें तो ही इज वन पर्सन हु लुक्स आफ्टर ऑल द थ्री सर्विसेज, स्पेसिफिकली वो एक सर्विस के नहीं होते, वो तीनों के लिए देखते हैं, तो उसके कारण जो है, ज्वाइंट मैनशिप जो है बढ़ता है, देन ही इज एबल टू, मतलब दिस इज हिज प्राइम जॉब रादर, कि जो एक्विजिशन है मतलब डिफेंस के लिए
2: जी,
3: उसको प्लान करना, उसको इम्प्लीमेंट कराना जो है, उनका बहुत बड़ा काम रहता है
2: जी। यानी किस तरह से बांटा जाएगा सोर्सेज को तीनों सेनाओं में,
3: एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ही कैन हैव ए होलिस्टिक व्यू ऑफ द ऑल थ्री फोर्सेस कि कैसे किसको क्या जरूरत है
2: जी,
3: एंड अकॉर्डिंगली ही कैन एडवाइज द गवर्नमेंट, ही कैन एडवाइज सब जो है डिफेंस मिनिस्टर।
2: यानी इस तरह से वो सरकार और सेना के बीच की कड़ी है।
3: बिल्कुल
2: जी,
3: बिल्कुल सही बोला आपने, जो है वो एक कड़ी है जो कि मिसिंग थी।
2: बिल्कुल सर।
3: अभी एक और पॉलिसी आने हुए है जिसको हम बोल रहे हैं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड।
2: अच्छा,
3: अभी क्या है जैसे आर्मी एयरफोर्स नेवी ऑल्दो जॉइंट मैनशिप में भी काम करते हैं
2: जी, जी।
3: लेकिन उनका अपना अपना एक रोल होता है, वॉर में भी अपना एक रोल होता है
2: जी,
3: वो अपने हिसाब से होता है। अभी एक नया कंसेप्ट ये आने वाला है कि थिएटर कमांड।
2: अच्छा,
3: थिएटर कमांड का मतलब होगा कि जैसे एक एरिया है तो उसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स जो भी है, आर्मी एयरफोर्स जैसे भी है,
2: जैसा भी कॉम्बिनेशन
3: कॉम्बिनेशन है, वो एक ही कमांडर के अंडर में होंगे।
2: अच्छा,
3: नेचुरल है कि उसमें जो है रिएक्टिवेशन अच्छा रहेगा, रिएक्टिव टाइम कम होगा,
2: कम होगा,
3: ठीक है। तो उसके लिए जो है इवन कॉमन लॉजिस्टिक्स नोट्स रहेंगे, ठीक है। और मतलब यू कैन से कि जो थ्रेट है उसको डील करने की हमारी क्षमता जो है बहुत
2: बढ़ जाएगी
3: जी,
2: बिल्कुल सर।
3: तो वेरी सून वी विल फाइंड दिस कमिंग अप, ठीक है, जो की ज्योग्राफिकल एरिया फंक्शनिंग के हिसाब से
2: जी बनाए
3: जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली जो है ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि जो ज्वाइंट ट्रेनिंग्स हैं, कोर्सेस हैं, सेमिनार्स, एक्सरसाइज हैं, वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं।
2: बढ़ गई।
3: टेक्निकल इंटीग्रेशन जो है वो काफी हाई है
2: जी।
3: अभी जैसे डिफेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि तीनों सर्विसेज को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है,
2: जोड़ता है।
3: आप भी जानती हैं एक और चीज है, आत्मनिर्भर भारत जो हमारा जो एक कंसेप्ट है
2: जी,
3: सेल्फ रिलायंस, उसने डिफेंस के ऊपर जो है उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। आपने अपने अभी इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि हम एक
2: निरातक की भूमिका में आ गए हैं सर।
3: बिल्कुल है ना,
2: तो कहां तो हम हथियार आयात करते थे सेना के लिए, आज हम यूज तो कर ही रहे, उनका निर्यात भी कर रहे हैं।
3: या तो इंपोर्ट डिपेंडेंट मिलिट्री फोर्स से जो है हम बिकम सेल्फ रिलायंस
2: जी, सेल्फ
3: रिलायंस, इंडिजिनियस प्रोडक्शन जो है हमारा बहुत बड़ा है
2: जी जी।
3: तो मेक इन इंडिया जो पॉलिसी है इसके तहत जो है हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है
2: जी,
3: उसमें जो है आत्मनिर्भरता का जो है फैक्टर जो है इमर्ज हुआ है। एंड जो हमारा नेशन है नाउ इट इज इमर्जिंग एज ए हब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट
2: जी,
3: जहां हम बाहर से जो है क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी हो गई हैं कि मतलब इवन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है
2: जी,
3: उसको अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। देन डिफेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन जो है, प्राइवेट कंपनीज काफी आ गई हैं। एक और चीज है वो है जैसे डीआरडीओ जो हमारा है।
2: हाँ जी सर, मेरा यही प्रश्न था कि अंतरिक्ष में अनुसंधान जो है वो एक एक नया आयाम है। आकाश, धरती और जल तो था ही, अब एक अंतरिक्ष भी एक नया आयाम है जो सेना के लिए एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है।
3: स्पेस
2: जी,
3: स्पेस
2: कमांड। हाँ जी, स्पेस के लिए
3: जिसके ऊपर आईएसआरओ काम करते
2: जी, इसरो काम करते। तो सर इसका क्या उसमें भूमिका है हमारे सेना के लिए?
3: इसकी जो भूमिका है मतलब इन द सेंस यू सी द सैटेलाइट्स जो हम लॉन्च कर रहे हैं
2: जी,
3: एंड नाउ वी हैव गॉट द डिफेंस सैटेलाइट्स
2: जी,
3: ठीक है, जो कि हमारे को डिफेंस पे मदद मिलती है
2: जी,
3: हमारे ऑपरेशन प्लानिंग्स पे, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में मदद मिलती है। एंड स्पेस इज गोइंग टू बी द न्यू एरिया
2: जी,
3: वही इन फ्यूचर,
2: जी
3: फ्यूचर वॉर का एरिया है, एंड इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड दैट वी डोमिनेट दैट। ओके
2: जी,
3: उसी तरह इसमें भी काफी जो है प्रगति हुई है और चल रही है, ठीक है। इसी तरह से जो है हमारे डीआरडीओ से,
2: हाँ जी जी,
3: तो इसमें जो है काफी गवर्नमेंट ने एनकरेजमेंट दिया है, एनहांस फैसिलिटीज बढ़ाई है, एंड इवन दे प्रमोटेड इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो क्षेत्र में काफी जो है प्रमोशन है। इवन अगर आप देखेंगे कि इनोवेशन जो होती है, आपने देखा होगा आजकल स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा
2: प्रोत्साहन
3: दिया जाता
2: जी,
3: है
2: बिल्कुल।
3: तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस बोलते हैं, आईडेक्स बोलते हैं, जिसमें कि ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि डिफेंस से कनेक्टेड जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं
2: जी,
3: और उनके लिए जितने नई टेक्नोलॉजीज हैं, प्रोडक्शन हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, और उसके कारण जो है काफी ज्यादा स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट मिल रहा है
2: जी।
3: जाहिर है कि इन सब से जो है हमें आगे बढ़ने में मदद मिल रही है।
2: बिल्कुल सर,
3: हमारे को मॉडर्नाइजेशन में मदद मिल रही है। तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं इसके कारण अगर आप देखें तो आज काफी जो है इक्विपमेंट जो हम बाहर से लगवाते थे, जैसे अभी तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट जो इंडक्ट हुए हैं, कम्बैट हैप्टर्स हैं हमारे पास, मिसाइल सिस्टम्स तो खैर हमारा मतलब बहुत ही एडवांस लेवल पे है। रिसेंटली वी हैव टेस्टेड द अग्नि 4000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल को, ICBM को हमने टेस्ट किया है, एंड नाउ वी आर गनिंग लुकिंग फॉरवर्ड फॉर के 5000 किलोमीटर रेंज में जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स व्हिच इज न्यूक्लियर केपेबल। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी मारक क्षमता जो है
2: बहुत बढ़ जाएगी,
3: बहुत बढ़ जाएगी। हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं जो है इट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट जिसका कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें मिसाइल सिस्टम्स को देखेंगे तो वी हैव डन अ ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन दिस फील्ड। सिमिलरली लाइक इंडिजिनियसली बिल्ड सबमरीन्स हैं जो है इस समय, देन आवर केपेबिलिटीज जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड साइबर वॉरफेयर में काफी हद तक बढ़ गई है। ड्रोन्स के बारे में हमने पहले भी जिक्र किया था, अभी तो इस टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल है, हम देख भी रहे हैं यूक्रेन वॉर में भी हमने देखा
2: जी,
3: है
2: बिल्कुल।
3: तो इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा अभी बढ़ा है
2: जी,
3: ये टेक्नोलॉजी को इतना जो है प्रमोट किया गया है कि इवन एट द बटालियन लेवल वी आर हैविंग
2: जी। ऑफ सिंदूर में तो हमने देखा सर इसका भरपूर इस्तेमाल हुआ,
3: भरपूर इस्तेमाल हुआ
2: जी।
3: एंड मॉडर्नाइजेशन में एक बहुत बहुत अच्छी आई है जो मुझे लगती है कि जो हमारा स्मॉल आर्म्स एंड इक्विपमेंट है सोल्जर्स का,
2: हाँ जी,
3: उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। अभी लाइक हम AK-203 राइफल्स हमारे यहाँ बननी शुरू हुई एंड बाकी भी जो है हमने जो इक्विपमेंट में जो बहुत इम्प्रूवमेंट लाया है, जैसे जो रिमोट एरियाज हैं जैसे सियाचिन हो गया, कारगिल हो गया, वहाँ के लिए जैसे स्पेशल इक्विपमेंट है वो तैयार करना मौसम के अनुकूल, वहाँ पे रहने के लिए जो है शेल्टर्स जो है
2: जी,
3: वो हमने खुद
2: आधुनिक बनाना
3: जी, उसको किया है। और सिमिलरली लाइक कम्युनिकेशन एस्पेक्ट इट हैज टू चेंज्ड अ लॉट,
2: बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लेके आए, आमूलचूल परिवर्तन है सर, संचार के कारण, मोबाइल के कारण।
3: आप कह सकते हैं मैं अपनी जिंदगी में ऐसी जगह पे रहा हूँ मतलब जहाँ 6-6 महीने मेरी घर से कभी बात नहीं होती थी, लेकिन आज बहुत अच्छा लगता है सुनकर कि वो लोग अपने घर से रोज बात कर लेते हैं।
2: क्या बात है,
3: तो इट्स अ मेजर चेंज। एंड इससे क्या होता है कि टेलीकम्युनिकेशन ने एक बहुत बड़ा बदलाव ये लाया है, नाउ इट हैज गॉट द वीडियो फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है, तो कमांड एंड कंट्रोल एस्पेक्ट हैज गॉन अप वेरी हाई।
2: सूचना तेजी से मिल जाती है तो फिर उसके ऊपर कार्यवाही भी उतनी तेजी से होती है।
3: एग्जैक्टली, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती है तो रियल टाइम डिसीजंस जो है वो काफी जल्दी लिए जा सकते हैं, और उसी तरह से जो है हमारा एक्शन टाइम जो है हमारा काफी अच्छा है। We had done a major improvement, you see, in the transport also, जो पुरानी गाड़ियों के हिसाब से अभी जो है व्हीकल्स जो है FPV Casper जैसे व्हीकल्स हैं जो कि माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल्स हैं एंड ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं अभी हमारे पास, तो there's a lot of improvement in this।
2: एक कार्य सर मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, रेल और सड़क, इसके निर्माण में भी सेना का, विशेष रूप से सीमावर्ती जो क्षेत्र है उनमें सेना का बहुत बड़ा योगदान रहा है सर।
3: बल्कि रादर सेना का डेवलपमेंट के लिए इनका होना बहुत बड़ा योगदान हुआ है।
2: बिल्कुल सर।
3: और उसमें गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं कि हम जो बॉर्डर एरियाज को डेवलप करेंगे, जैसे सेला में टनल बनी है, सेला पास
2: जी,
3: तो जिसे तवांग जो है अरुणाचल वाला जो है वो एरिया है वेस्ट कमांड का, वो हमारे लिए बहुत कम्फर्टेबल हो गया। अभी जोजिला में जो है टनल बन रही है, देन उसके बाद जो है रोहतांग पास के ऊपर जो है टनल, जिसने की मतलब बहुत ही मेजर चेंज लाया है। नहीं तो लदाख यूज टू गेट कट ऑफ फॉर 6 months,
2: ठीक है,
3: ऐसी तवांग जो है मुश्किल हो जाता था एक वक्त में, एंड जैसे जो ब्रिजेस आए हैं, जो रोड डेवलपमेंट हुआ है हमारा, इवन ट्रेन्स जो है अभी श्रीनगर तक जा रहे हैं, उसके आगे तक जा रही है, तो दीज आर द मेजर डेवलपमेंट विच हैड टेकन प्लेस।
2: तो सर युद्ध और सीमा की सुरक्षा के अलावा जो सेना ये कार्य कर रही है उसका योगदान तो हम कभी भूल ही नहीं सकते, सड़कों के रूप में या पुलों के रूप में या रेलवे के रूप में, खुद स्वयं सेना का योगदान है।
3: सेना को इससे फायदा हुआ है कि बनने से जो है हमारी जो मोबिलिटी बढ़ गई है
2: ना,
3: तो उससे हमें फायदा हुआ है। जो सेना का एक अंग है, दैट इज मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट दैट कम्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हिच इज BRO, ग्रेफ एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो आती है, यस, उनका बहुत बड़ा योगदान है सड़कें बनाने में। ऑफकोर्स उसमें जो कमांड कंट्रोल एलिमेंट्स होते हैं वो फौज के होते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है सड़कें बनाने में, पुल्स बनाने में, दैट इज राइट। इन चीजों को अगर आप देखेंगे जो है, लाइक अभी बॉर्डर एरियाज पे यू फाइंड कि जो एयरफील्ड्स हैं वो डेवलप हुए हैं, एडवांस एयर बेसिस हैं जो बॉर्डर एरियाज में हैं, इम्प्रूव कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत इम्प्रूव है, रोड नेटवर्क बहुत ज्यादा इम्प्रूव है। तो आई विल से कि जब हम 47 से देखा है और 2025 पे जब हम आते हैं तो हमें सिनेरियो पूरी तरह से चेंज
2: बदलाव
3: मिलता है। और ये सिर्फ आर्मी में नहीं है, जब हम नेवी की कभी जिक्र करते हैं या एयरफोर्स का भी जिक्र करते हैं तो उनका भी एडवांसमेंट उतना ही उस लेवल से बड़ा है। आज एयर डिफेंस सर्विलेंस सिस्टम, आवर डोमिनेशन इन द सी, ठीक है, अवर कैपेबिलिटीज हैव गॉन अप टू वेरी हाई,
2: बहुत उच्च स्तर की
3: है, उच्च स्तर की है। हमारे जो इतने फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, साइबर टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स हैं, ठीक है, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, तो इन सब के कारण जो है कैपेबिलिटीज जो है हमारी, जो डिफेंसिव ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज है, उसमें काफी इजाफा हुआ है।
2: कुल मिलाकर हमारी सेना जो है आज बेहद ही सशक्त स्थिति में है।
3: बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन एक बात का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा।
2: जी सर।
3: जो है एडवांसमेंट है, सब कुछ है, लेकिन आज भी
2: जी
3: सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सोल्जर।
2: जी बिल्कुल सर।
3: सदियों से चाहे हम हमारे पास्ट में, मतलब इवन प्रीहिस्टोरिक में भी जाएंगे, जब से हम देखते आ रहे हैं, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन हु मैटर्स। एंड आज भी जो ये इंडियन सोल्जर है, हमारे जो सोल्जर हैं, जो मतलब सतत खड़े हैं देश की सुरक्षा के लिए जो है, वो सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है।
2: बिल्कुल,
3: सबसे महत्व रखते हैं, ये उनकी स्पिरिट है, देश प्रेम है जो है, मतलब दे आर द ड्राइविंग फोर्स जिसके कारण जो है देश की जो है सुरक्षा।
2: जी सर, तकनीक और हथियार अपनी जगह है, लेकिन सैनिक का जब तक साहस नहीं होगा तब तक तकनीक और हथियार भी कुछ नहीं कर सकते।
3: बिल्कुल, और उनका जो जज्बा है बलिदान का,
2: बिल्कुल,
3: जो है
2: मातृभूमि के प्रति समर्पण,
3: मातृभूमि के प्रति उनका जो समर्पण है वो मतलब ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज माय कंट्री, ठीक है, देन कम्स एनीथिंग एल्स। वो जो जज्बा है, जब तक वो है तब तक कोई हमें हाथ नहीं लगा।
2: स्वयं से पहले सेवा।
3: बिल्कुल, स्वयं से पहले सेवा, ठीक है। आज जो भी कुछ हम हैं, I must say it is because of the bravest of the braves, all those people who had contributed so much to for the country, people like Major Somnath Sharma, Flying Officer Nirmaljit Singh Sekho, Captain Mahendra Mula, and Captain Vikram Batra, bravest of the braves, and aur bhi bahut jitne hain का हमने इन सब का जिक्र भी किया था अपनी पूरी सीरीज में।
2: हम पिछली कड़ियों में इन सबको हमने कभी भी भुलाया नहीं है और हर एक को याद करने का अपने इस कार्यक्रम में प्रयास किया
3: जी। और इसके अलावा भी जो हर वो जवान जिसने जो है इस देश के लिए बलिदान दिया है, उनके लिए तो उनके सामने हम नतमस्तक हैं।
2: बिल्कुल सर, ये हमारे देश के अनसंग हीरोज हैं सर।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वक्त में भी ये जो सोल्जर्स हैं, इन्हीं के कारण जो है हमारा देश हमेशा जो है स्ट्रांग रहेगा, सुरक्षित रहेगा।
2: बस सर, यही भावना हमारी भी है और इसी भावना से प्रेरित एक गीत है, कुछ पंक्तियां हैं सर, वो मैं जरूर आज शेयर करना चाहूंगी कार्यक्रम में अंत में। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे अभी कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजा कर भाल जब स्वीकार कर लेना दया कर ये समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे अभी कुछ और भी दूं। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, इस आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे अभी कुछ और भी दूं। तो श्रोताओं, हम भी अर्पित करते हैं अपनी श्रद्धांजलि देश के उन वीर सपूतों को जिन्होंने राष्ट्र को, अपनी मातृभूमि को सर्वप्रथम रखकर अपना सर्वस्व बलिदान दिया। और हम आभारी हैं हमारी सेना और हमारे सैनिकों को जो हमें हमारी स्वतंत्रता का हमेशा आभास कराते रहते हैं। आज की कड़ी और इस कार्यक्रम को भी अब हम यहीं समाप्त करते हैं। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने भारतीय सेना के बारे में, हम जैसे आम नागरिकों को इतनी अच्छे से सेना के बारे में समझाया और बताया कि हमारे जीवन में सेना का क्या महत्व है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: वेलकम। एंड इनफैक्ट I must say thanks to you and to the organization which has provided this opportunity to me to share the views. Thank you very much. And saluting all the soldiers. Jai Hind.
2: Jai Hind, sir. तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना की अदिति गौड़ ने, ध्वनि संपादन रहा अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का। मैं थी आपके साथ आपके अपने रेडियो मित्र पूर्वा कले। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: ये प्रस्तुति हुई भोपाल के रविंद्र भवन के हंसध्वनि सभागार में।
1: जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का।
2: प्यार भरा नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। ये मेरे सौभाग्य कि आज ऐसे मीठे वाले दिन में मुझे गाने का मौका मिल रहा है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब साल की शुरुआत होती है और 15 अगस्त को मुझे गाने का मौका मिलता है, मुझे लगता है कि ईश्वर ने बहुत मेरे पर कृपा की। और आप जैसे लोग जो भोपाल हम जानते हैं, भोपाल इतना कल्चरली कॉन्शियस है, यहाँ पे शास्त्रीय संगीत की इतना प्रचार है इस स्टेट में और भोपाल में, आज के दिन मैं यहाँ गा रही हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर टुडे। मैं सबसे पहला जो गीत गा रही हूँ ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत निर्देशन में मैं गा रही हूँ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मुझे फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहला गाना दिया था और ये मैंने फिल्म भैरवी के लिए गाया, जिसके शब्द, बहुत सुंदर शब्द अमित खन्ना साहब ने लिखा है। इसी गीत से शुरुआत कर रही हूँ।

रोक ले और चक्कर मुझे चूम ले।

0: बहुत शुक्रिया।
1: आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति का गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने और परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे मिश्र धातु निगम लिमिटेड यानी मिधानी और धातुओं में छिपी रक्षा की ताकत के बारे में।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान। श्रोताओं, पिछले कुछ दिनों से हम दादू और रुचि के साथ भारत की समुद्री यात्रा पर थे। कभी मुंबई के मझगांव डॉक में पनडुब्बियों और युद्धपोतों के निर्माण को समझा, तो कभी गोवा शिपयार्ड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की कहानी के माध्यम से जाना कि कैसे भारत ने समुद्र में अपनी शक्ति को नई पहचान दी। आज दादू और रुचि अपनी यात्रा पूरी करके घर लौट आए हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। युद्धपोत, लड़ाकू विमान, रॉकेट, मिसाइल, पनडुब्बियां, इन सब में एक ऐसी चीज समान होती है जिसे हम अपनी आंखों से तो देखते हैं पर इसके महत्व को शायद ही समझते हैं। वो है धातु।
1: लेकिन क्या हर धातु एक जैसी होती है? क्या साधारण इस्पात से लड़ाकू विमान बनाए जा सकते हैं? रॉकेट का इंजन हजारों डिग्री तापमान कैसे सह लेता है? और भारत ने ऐसी विशेष धातुएं स्वयं से बनाना कब शुरू की? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए आज दादू और रुचि हमें लेकर चलेंगे हैदराबाद, जहां स्थित है मिश्र धातु निगम लिमिटेड अर्थात मिधानी। तो आइए चलते हैं दादू के घर।
2: दादू, आखिरकार हम घर लौट ही आए। सच कहूँ ना तो इस बार की यात्रा मेरी सोच से भी ज्यादा रोचक निकली है।
3: हाँ बेटा, लेकिन इस यात्रा ने बूढ़े शरीर को थका दिया है।
2: दादू, थोड़ी सी थकी सी तो मैं भी हूँ, लेकिन मैंने ना बहुत कुछ जाना है आपसे। थैंक यू सो मच दादाजी।
3: जी बेटा, मुझे खुशी है कि तुम्हें इस यात्रा से कुछ नया सीखने को मिला।
2: दादू, एक बात मेरे मन में बार बार आ रही है।
3: पूछो पूछो बिटिया।
2: दादू, हमने जहाज देखे, पनडुब्बियों के बारे में जाना, लड़ाकू विमानों के बारे में जाना, लेकिन एक बात मैंने हर जगह सुनी, विशेष इस्पात, विशेष धातु, मिश्र धातु। आखिर ये सब इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्या साधारण लोहे या इस्पात से काम नहीं चल सकता?
3: शांत शांत रुचि बेटा। वाह, तुम्हारा ये प्रश्न बताता है कि हमारी यात्रा सफल रही। अब तुम केवल ये नहीं पूछ रही कि क्या बनता है, बल्कि ये जानना चाहती हो कि वो कैसे बनता है।
2: तो फिर तो ये सस्पेंस खोल ही दीजिए दादाजी।
3: हाँ हाँ, बताऊंगा बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें रसोई तक चलना होगा।
2: रसोई? मिश्र धातु और रसोई का क्या संबंध है भला?
3: बहुत गहरा संबंध है बेटा। चलो चलो, आज की पढ़ाई प्रयोग करके करेंगे, ठीक है?
2: चलिए।
3: चलो आओ। देखो, रसोई में कप रखे जाने की आवाज सुनो। ठीक है, सुनी कि नहीं सुनी?
2: हाँ हाँ।
3: हाँ, अब गैस पर पानी उबलने की हल्की ध्वनि को सुनो।
2: दादू, अब बताइए बिना, मैं सोच रही थी कि आज हम हैदराबाद की बात करेंगे और आप मुझे रसोई में लेकर आ गए।
3: विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में नहीं होता बिटिया, वो हमारे घरों में, रसोई में, खेतों में, हर जगह छिपा हुआ होता है। बस उसे पहचानने वाले की नजर चाहिए।
2: तो क्या मिश्र धातु भी हमारे घर में मिल जाएगी?
3: सीधे सीधे नहीं, लेकिन उसका सिद्धांत जरूर समझ में आ जाएगा। देखो, ये स्टील का चम्मच, ठीक है, और ये पीतल की कटोरी,
2: ठीक है,
3: दोनों धातुओं से बने, लेकिन दोनों के गुण एक जैसे नहीं है।
2: वो तो है, दोनों का रंग भी अलग है और वजन भी अलग है।
3: बिल्कुल। अब जरा सोचो, अगर हमें ऐसी धातु चाहिए जो बहुत मजबूत भी हो, जल्दी जंग भी ना लगाए, बहुत अधिक गर्मी भी सह सके और वजन में हल्की हो, तो क्या केवल एक धातु से काम चल जाएगा?
2: शायद नहीं।
3: यही सोच वैज्ञानिकों ने भी अपनाई। उन्होंने अलग अलग धातुओं को उचित अनुपात में मिलाकर ऐसी नई धातुएं बनाई जिनमें कई अच्छे गुण एक साथ हो गए। इन्हें ही मिश्र धातु या एलॉय कहते हैं।
2: यानी जैसे अलग अलग मसालों को सही मात्रा में मिलाकर एक नया स्वाद तैयार किया जाता है।
3: बिल्कुल वैसे ही बेटा। यदि किसी व्यंजन में केवल नमक ही डाल दिया जाए तो स्वाद नहीं आएगा, लेकिन जब हल्दी, धनिया, जीरा, मिर्च और दूसरे मसाले सही सही मात्रा में मिलते हैं तभी भोजन स्वादिष्ट बनता है। ठीक उसी तरह धातुओं के साथ भी होता है बेटा।
2: वाह दादू, अब मुझे मिश्र धातु का मतलब समझ में आया।
3: लेकिन बिटिया कहानी यहीं समाप्त नहीं होती।
2: कहानी समाप्त नहीं होती मतलब?
3: घर में इस्तेमाल होने वाली मिश्र धातुएं और लड़ाकू विमान या रॉकेट में इस्तेमाल होने वाली मिश्र धातुएं एक जैसी नहीं होती हैं।
2: ऐसा क्यों होता है दादाजी?
3: क्योंकि उनकी परीक्षा साधारण नहीं होती बेटा। सोचो, एक लड़ाकू विमान ध्वनि की गति के आसपास उड़ रहा है। उसके इंजन के भीतर तापमान कई स्थानों पर 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। दूसरी ओर पनडुब्बी समुद्र की गहराइयों में अत्यधिक दबाव झेल रही होती है। वहीं रॉकेट को प्रक्षेपण के समय भीषण कंपन, अत्यधिक ताप और अपार बल का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में साधारण धातु अपना आकार बदल सकती है, कमजोर पड़ सकती है या टूट भी सकती है।
2: यानी हर कठिन काम के लिए अलग तरह की धातु चाहिए दादाजी।
3: बिल्कुल, और ऐसी ही विशेष धातुओं का निर्माण करने के लिए भारत को एक ऐसे संस्थान की आवश्यकता थी जो केवल उत्पादन ना करे बल्कि लगातार नई धातुओं पर अनुसंधान भी करे।
2: क्या तभी मेधानी की स्थापना हुई थी? लगता है यही बताना जा रहे हैं आप मुझे।
3: अब तुम सही दिशा में पहुंच गई हो। ये अखबार वाला आया है क्या?
2: हाँ दादू, रुकिए मैं अखबार लेकर आती हूँ।
3: हाँ हाँ।
2: अरे दादू, इसमें तो किसी रॉकेट प्रक्षेपण की तस्वीर छपी है।
3: देखा, हम रोज ऐसी खबरें पढ़ते हैं बेटा। रॉकेट उड़ गया, मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ, नया लड़ाकू विमान बना, लेकिन शायद ही कभी सोचते हैं कि इन सब के पीछे उन धातुओं का भी योगदान है जिनके बिना ये सब संभव नहीं होता।
2: सच दादू, हम मशीन तो देखते हैं लेकिन उसे बनाने वाली धातु के बारे में शायद ही सोचते हैं।
3: और आज की हमारी यात्रा उसी अनदेखे नायक की कहानी है।
2: दादू लगता है हमारी ये यात्रा किसी पाठशाला से कम नहीं रही।
3: सही सही, बिल्कुल सही कहा बेटा।
2: एक बात तो मुझे अब समझ में आई है कि विशेष मिश्र धातुएं क्यों जरूरी हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जब आज से 50-60 साल पहले ना तो इतने आधुनिक कंप्यूटर थे न इतनी मशीनें थीं, तो भारत ने इतनी कठिन धातुएं बनाने की शुरुआत कैसे की होगी?
3: बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, और इसी प्रश्न का उत्तर हमें सन 1973 में ले जाता है।
2: 1973 यानी आज से लगभग आधी सदी पहले।
3: स्वतंत्रता के बाद भारत ने ये निश्चय तो कर लिया था कि हमें रक्षा, अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में किसी पर निर्भर नहीं रहना है। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी।
2: समस्या? कौन सी समस्या दादू?
3: भाई मान लो तुम्हारे पास दुनिया का सबसे अच्छा डिजाइन हो, सबसे अच्छे वैज्ञानिक हो, सबसे कुशल इंजीनियर हो, लेकिन जिस धातु से मशीन बननी है वही तुम्हारे पास ना हो तो क्या होगा?
2: फिर तो सारी योजना ही रुक जाएगी दादाजी।
3: बिल्कुल, उस समय भारत के सामने बिल्कुल यही चुनौती थी। विशेष धातुएं विदेशों से मंगानी पड़ती थी। वो बहुत महंगी होती थी, हर समय उपलब्ध भी नहीं हो पाती थी, और रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कोई भी देश अपनी सर्वोत्तम तकनीक आसानी से साझा नहीं करता था।
2: यानी यदि किसी कारण से वे धातुएं मिलना बंद हो जाती तो हमारे कई बड़े वैज्ञानिक कार्यक्रम भी प्रभावित हो सकते थे।
3: ठीक यही चिंता हमारे वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के मन में भी थी। उन्होंने सोचा जब रॉकेट, लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां हमारी होंगी तो उन्हें बनाने वाली धातु भी हमारी ही होनी चाहिए।
2: ये तो है।
3: इसी दूरदृष्टि का परिणाम था वर्ष 1973 में हैदराबाद में स्थापित हुआ मिश्र धातु निगम लिमिटेड। क्या हुआ?
2: मिश्र धातु निगम लिमिटेड,
3: वेरी गुड, जिसे आज पूरा देश मिधानी के नाम से जानता है।
2: यानी मिधानी की स्थापना केवल एक नया कारखाना बनाने के लिए नहीं हुई थी बल्कि भारत को उन धातुओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हुई थी जिन्हें भविष्य की तकनीक की रीढ़ माना जाता है।
3: बिल्कुल शाबाश, और यही कारण है कि मिधानी केवल धातु नहीं बनाती, वो भारत के वैज्ञानिक सपनों को आकार देती है।
2: ओहो दादू, लो अब बिजली चली गई, इन्वर्टर क्यों नहीं चला लेकिन?
3: हाँ बेटा, लगता है इन्वर्टर भी थोड़ी देर आराम करना चाहता है।
2: अच्छा दादू, एक बात बताइए ना, अगर बिजली चली जाए तो हम थोड़ी देर असुविधा में रहते हैं, लेकिन अगर किसी देश को जरूरत के नाम पर विशेष धातुएं ही ना मिले तो?
3: तब केवल असुविधा नहीं होती बिटिया, देश की सुरक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष अभियान, यहाँ तक कि कई महत्वपूर्ण उद्योग भी प्रभावित हो सकते हैं।
2: अब समझ में आया, इसलिए विशेष धातुओं में आत्मनिर्भर होना किसी भी विकसित राष्ट्र के लिए उतना ही जरूरी है जितना भोजन, ऊर्जा और सुरक्षा।
3: और अभी तो तुमने मिधानी की दुनिया का दरवाजा ही खोला है, अभी तुम्हें टाइटेनियम की कहानी सुननी है, सुपर मिश्र धातुओं का विज्ञान समझना है, विशेष इस्पात की ताकत जाननी है।
2: अच्छा दादू, ये टाइटेनियम धातु में ऐसा क्या होता है कि पूरी दुनिया इसकी इतनी चर्चा करती है?
3: मान लो तुम्हें तीन अलग अलग काम करने हैं। एक ऐसा पुल बनाना है जिस पर रोज हजारों वाहन चलेंगे,
2: ठीक है।
3: एक ऐसा हवाई जहाज बनाना है जो आसमान में ध्वनि की गति से उड़ सके, और एक ऐसा रॉकेट बनाना है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर अंतरिक्ष तक पहुंच जाए। तो क्या तुम इन तीनों में से एक ही प्रकार की धातु का उपयोग करना चाहोगी?
2: नहीं दादू, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तीनों की जरूरतें अलग अलग हैं। देखिए ना, अब पुल को मजबूती चाहिए, हवाई जहाज को हल्कापन चाहिए, और रॉकेट को इतनी ताकत चाहिए कि वो आग और अत्यधिक तापमान को भी सह सके। सही कहा ना मैंने?
3: बिल्कुल, यही कारण है बेटा कि मिधानी केवल एक धातु नहीं बनाती बल्कि अनेक प्रकार की विशेष धातुओं और मिश्र धातुओं का निर्माण करती है, और ऐसी ही एक धातु है टाइटेनियम।
2: दादाजी, टाइटेनियम का नाम मैंने कई बार सुना है।
3: चलो चलो चलो, एक छोटी सी कल्पना करते हैं। अगर मैं तुम्हें दो छड़ें दूं, पहले लोहे की, दूसरी टाइटेनियम की, और दोनों की मजबूती लगभग समान हो, लेकिन टाइटेनियम वाली छड़ वजन में काफी हल्की निकले, तो तुम किसे चुनोगी?
2: जाहिर है दादाजी, टाइटेनियम वाली ही चुनूंगी, क्योंकि उसमें मजबूती भी है और उसका वजन भी कम है।
3: सही कहा बेटा, टाइटेनियम बहुत मजबूत होता है और वजन अपेक्षाकृत कम होता है, इस पर जंग भी बहुत कम लगती है, ठीक है, और ये अत्यधिक तापमान को भी सह सकता है, इसी कारण इसे अंतरिक्ष, रक्षा और विमानन जगत की सबसे महत्वपूर्ण धातुओं में गिना जाता है।
2: यानी लड़ाकू विमानों में इसका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि विमान मजबूत भी रहे और भारी भी ना हो।
3: यदि विमान का वजन आवश्यकता से अधिक हो जाएगा तो उसे उड़ाने के लिए अधिक ईंधन लगेगा, गति कम होगी और उसकी क्षमता भी प्रभावित होगी, इसलिए हर अतिरिक्त किलोग्राम बचाना वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।
2: अच्छा, और रॉकेट में?
3: रॉकेट में इसका महत्व और बढ़ जाता है बेटा, क्योंकि वहाँ हर ग्राम वजन की कीमत होती है। समझ में आ रहा है? रॉकेट जितना हल्का होगा उतना अधिक भार अंतरिक्ष तक ले जा सकेगा।
2: वाह दादू, एक धातु का चुनाव भी पूरे मिशन की सफलता पर तय कर सकता है।
3: सिर्फ टाइटेनियम ही नहीं, मिधानी की प्रयोगशाला में ऐसी धातुएं भी बनती हैं जिन्हें सुपर मिश्र धातुएं कहा जाता है।
2: सुपर मिश्र धातु? दादू, क्या ये सचमुच किसी सुपर हीरो जैसी होती है?
3: हाँ हाँ बेटा, इसलिए इन्हें गैस टर्बाइन इंजनों, लड़ाकू विमानों, रॉकेट इंजनों, अंतरिक्ष यानों और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों जैसे अत्यंत कठिन वातावरण में उपयोग किया जाता है।
2: मिधानी जैसी संस्थाओं में केवल धातु नहीं बनाई जाती बल्कि वर्षों तक उनका परीक्षण भी किया जाता होगा ना?
3: हाँ बेटा, हर नई मिश्र धातु को कई कसौटियों पर परखा जाता है, उसकी मजबूती, गर्मी सहने की क्षमता, दबाव झेलने की क्षमता, जंग से बचाव और लंबे समय तक टिके रहने जैसे अनेक गुणों की जांच की जाती है।
2: दादू, आपने टाइटेनियम और सुपर मिश्र धातुओं की बात बताई, लेकिन क्या मिधानी केवल यही बनाती है?
3: नहीं नहीं बेटा, मिधानी की एक और बड़ी पहचान है, विशेष इस्पात।
2: दादू, इस्पात तो हम रोज सुनते हैं, फिर विशेष इस्पात में क्या अंतर होता है?
3: बहुत अच्छा प्रश्न। जिस प्रकार हर विद्यार्थी एक जैसा नहीं होता, उसी प्रकार इस्पात भी एक जैसा नहीं होता। किसी इस्पात को अधिक कठोर बनाया जाता है, किसी को अधिक लचीला, और किसी को ऐसा कि वो वर्षों तक कठिन परिस्थितियों में कभी खराब ना हो।
2: मतलब जरूरत के अनुसार उसके गुण बदले जाते हैं।
3: बिल्कुल बेटा, रक्षा उपकरणों, पनडुब्बियों, मिसाइल प्रक्षेपण प्रणालियों और अनेक भारी मशीनों के लिए ऐसे विशेष इस्पात की आवश्यकता होती है जिसमें मजबूती और टिकाऊपन दोनों होता है।
2: शायद इसलिए मिधानी को देश की रक्षा और वैज्ञानिक प्रगति की एक मजबूत नींव कहा जाता है।
3: बिल्कुल बेटा, और अब समय आ गया है उन लोगों की बात करने का जो इन धातुओं को केवल बनाते ही नहीं बल्कि उन्हें निरंतर बेहतर भी बनाते रहते हैं।
2: मैं बताती हूँ। मिधानी के वैज्ञानिक और अभियंता।
3: हाँ बेटा, बिल्कुल सही। धातुओं की असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है।
2: दादू, अब मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई है। आखिर मिधानी के वैज्ञानिक और अभियंता करते क्या हैं? क्या उनका काम केवल धातु बनाना होता है?
3: यही तो सबसे सुंदर बात है बिटिया। धातु स्वयं कभी महान नहीं बनती, उसे महान बनाते हैं वे लोग जो उसके गुणों को समझते हैं। मिधानी के वैज्ञानिक और अभियंता केवल धातु नहीं बनाते बल्कि उसकी प्रत्येक विशेषता को गढ़ते हैं।
2: यानी किसी विशेष धातु के बनने के पीछे भी अनेक लोगों की मेहनत, अनुभव और वैज्ञानिक सोच होती होगी।
3: यही तो किसी बड़े वैज्ञानिक संस्थान की विशेषता होती है। यहाँ हर व्यक्ति एक अलग जिम्मेदारी निभाता है। कोई नई मिश्र धातु की संरचना तैयार करता है तो कोई उसे पिघलाने की प्रक्रिया तय करता है, कोई उसकी गुणवत्ता की जाँच करता है और कोई ये सुनिश्चित करता है कि वो धातु रक्षा या अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पूरी तरह उपयुक्त है या नहीं।
2: यानी एक छोटी सी धातु तैयार करने के पीछे भी पूरी एक टीम काम करती है।
3: हाँ बेटा, कई बार तो किसी नई मिश्र धातु को विकसित करने में महीनों नहीं बल्कि वर्षों का समय लग जाता है।
2: दादू, क्या वैज्ञानिक सचमुच बहुत मुश्किल परिस्थितियों में काम करते हैं?
3: हाँ बेटा, जहाँ विशेष धातुओं का निर्माण होता है वहाँ अत्यधिक सावधानी रखनी पड़ती है। विशेष सुरक्षा वस्त्र, सुरक्षा चश्मे, दस्ताने और आधुनिक उपकरणों की सहायता से ये कार्य किया जाता है क्योंकि यहाँ साधारण लोहे को नहीं बल्कि भविष्य की तकनीक को आकार दिया जा रहा होता है।
2: भविष्य की तकनीक, दादू कितना सुंदर विचार है ना।
3: और याद रखो, विज्ञान में केवल कल्पना पर्याप्त नहीं होती बेटा, हर नए विचार को प्रयोगों से सिद्ध करना पड़ता है।
2: यानी असफलता भी उनके काम का हिस्सा होती है।
3: एक वैज्ञानिक असफल प्रयोग से निराश नहीं होता बल्कि ये समझता है कि अब उसे कौन सा रास्ता नहीं अपनाना है।
2: दादू, आपने बताया था कि मिधानी के वैज्ञानिक नई नई मिश्र धातुएं विकसित करते हैं, लेकिन मेरे मन में ये जानने की उत्सुकता है कि किसी नई धातु की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है।
3: देखो, किसी भी विशेष धातु का जन्म भट्टी में नहीं बल्कि एक आवश्यकता से होता है।
2: आवश्यकता से?
3: मान लो रक्षा वैज्ञानिकों को ऐसा लड़ाकू विमान बनाना है जो पहले से अधिक तेज उड़ सके, या अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को ऐसा रॉकेट चाहिए जो अधिक भार लेकर अंतरिक्ष तक पहुंच सके। तब वे सोचते हैं क्या वर्तमान धातुएं इस काम के लिए पर्याप्त हैं?
2: और यदि उत्तर ना हो तो?
3: तो वहीं से मिधानी के वैज्ञानिकों का नया सफर शुरू हो जाता है।
2: नया सफर? तो दादू, सबसे पहले क्या किया जाता है?
3: सबसे पहले वैज्ञानिक ये तय करते हैं कि नई धातु में कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसे कितना मजबूत होना है, कितना हल्का होना है, कितनी गर्मी सहनी है और कितने वर्षों तक बिना खराब हुए काम करना है।
2: यानी पहले लक्ष्य तय होता है फिर धातु बनाई जाती होगी।
3: बिल्कुल बेटा, उसके बाद कंप्यूटर की सहायता से धातु की संरचना पर काम किया जाता है। वैज्ञानिक ये अध्ययन करते हैं कि किन किन धातुओं को किस अनुपात में मिलाने से अपेक्षित गुण प्राप्त हो सकते हैं।
2: लेकिन दादू, क्या केवल अनुपात बदल देने से धातु के गुण बदल जाते?
3: कई बार हाँ, जैसे भोजन में मसालों का संतुलन स्वाद बदल देता है, वैसे ही मिश्र धातु में प्रत्येक तत्व की मात्रा उसके गुणों को प्रभावित करती है।
2: और उसके बाद?
3: फिर चुनी हुई धातुओं को विशेष भट्टियों में अत्यधिक तापमान पर गलाया जाता है। कई बार ये प्रक्रिया निर्वात अर्थात वैक्यूम वातावरण में की जाती है ताकि धातु में कोई अशुद्धि ना मिल सके।
2: दादू, यानी हवा भी तो कभी कभी धातु की गुणवत्ता पर असर डाल सकती है?
3: बिल्कुल, ऑक्सीजन या अन्य गैसें कुछ धातुओं के गुण में बदल जाती हैं। इसलिए विशेष धातुओं के निर्माण में वातावरण तक को नियंत्रित किया जाता है बेटा।
2: फिर धातु तैयार की जाती होगी?
3: नहीं बिटिया, अभी तो ये शुरुआत है। पिघली हुई धातु को सांचे में डाला जाता है, उसके बाद उसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है ताकि उसकी आंतरिक संरचना सही बन पाए।
2: यानी जल्दी ठंडा करने से भी फर्क पड़ सकता है।
3: कई बार ठंडा करने की गति ही धातु की मजबूती तय करती है बेटा, इसलिए हर चरण समय और तापमान के अनुसार नियंत्रित किया जाता है।
2: उसके बाद?
3: उसके बाद बेटा फिर बारी आती है फोर्जिंग प्रेस की। इसमें भारी दबाव देकर धातु को नया आकार दिया जाता है, इससे उसकी आंतरिक संरचना और अधिक मजबूत हो जाती है।
2: मतलब धातु को केवल पिघलाया ही नहीं जाता, उसे गढ़ा भी जाता है।
3: हाँ बेटा, जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाता है, वैसे ही अभियंता धातु को आकार देकर उसे उपयोग के योग्य बनाते हैं।
2: और दादू, फिर उसकी जांच होती होगी?
3: हाँ हाँ बेटा, यहीं से शुरू होती है सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा। वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप से उसकी सूक्ष्म संरचना देखते हैं, उसकी कठोरता मापते हैं, उसे खींच कर, मोड़ कर और दबाव देकर परखा जाता है। कई नमूनों को अत्यधिक तापमान और कठिन परिस्थितियों में भी जांचा जाता है।
2: दादू, इतनी सारी परीक्षाएं?
3: क्योंकि बेटा रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुमान की कोई जगह नहीं होती, वहाँ केवल वही धातु पहुँचती है जिसने हर परीक्षा सफलता से पार की हो।
2: सो तो है दादाजी। अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि मिधानी में बनी हर धातु की अपनी एक कहानी होती होगी।
3: हाँ बेटा, बल्कि मैं तो कहूँगा कि हर विशेष धातु की अपनी एक यात्रा होती है।
2: यात्रा?
3: हाँ बेटा, कल्पना करो, अभी अभी मिधानी की प्रयोगशाला में एक विशेष मिश्र धातु तैयार हुई है। गुणवत्ता की हर परीक्षा में वो सफल रही, अब उसे सावधानी से पैक किया जा रहा है। अब जब देश को जहाँ उसकी आवश्यकता होगी वो वहीं पहुँच जाएगी।
2: यानी एक ही संस्थान से निकली धातु अलग अलग क्षेत्रों में जा सकती है।
3: इसी तरह अंतरिक्ष में उपयोग होने वाली सामग्री का चयन बहुत सोच समझ कर किया जाता है। वहाँ ना मरम्मत करने कोई मिस्त्री जा सकता है, ना कोई पुर्जा बदलने की कोई गुंजाइश होती है। इसीलिए धातु पहली बार में ही विश्वसनीय होनी चाहिए।
2: अच्छा दादू, क्या मिधानी की धातुएं समुद्र तक भी पहुंचती हैं?
3: हाँ बेटा, युद्धपोतों और पनडुब्बियों के अनेक उपकरणों में भी विशेष धातुओं की आवश्यकता होती है। समुद्र का खारा पानी सामान्य धातुओं पर जल्दी असर डाल सकता है, लेकिन कुछ विशेष मिश्र धातुएं ऐसी होती हैं जो कठिन समुद्री वातावरण में भी लंबे समय तक अपना काम बखूबी कर सकती हैं।
2: दादू, क्या केवल रक्षा क्षेत्र ही इन धातुओं का उपयोग करता है?
3: नहीं नहीं बेटा, विशेष धातुओं की आवश्यकता ऊर्जा क्षेत्र में भी पड़ती है। कुछ धातुएं ऐसे उपकरणों में उपयोग होती हैं जो बहुत अधिक तापमान और दबाव पर लगातार काम करते हैं। यदि वहाँ साधारण धातु लगा दी जाए तो पूरा संयंत्र प्रभावित हो सकता है।
2: यानी धातु का चुनाव केवल मजबूती नहीं सुरक्षा से भी जुड़ा होता है।
3: बिल्कुल बेटा, इसीलिए वैज्ञानिक किसी भी धातु को उपयोग में लेने से पहले उसके प्रत्येक गुण का गहराई से अध्ययन करते हैं।
2: अच्छा दादू, इन विशेष धातुओं का उपयोग और कहाँ कहाँ होता है?
3: ये जानकर तुम्हें आश्चर्य होगा, कुछ विशेष धातुओं का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है।
2: सच में?
3: हाँ बेटा, जब किसी व्यक्ति के शरीर में कृत्रिम जोड़ हड्डी का विशेष इम्प्लांट या कुछ अन्य चिकित्सा उपकरण लगाए जाते हैं, तब भी ऐसी धातुओं की आवश्यकता होती है जो शरीर के अनुकूल हों, मजबूत हों और लंबे समय तक सुरक्षित रहें।
2: दादू, मिधानी तो देश के सपनों को आकार देती है।
3: हाँ बेटा, उन सपनों में कहीं एक सैनिक का विश्वास होता है तो कहीं एक वैज्ञानिक का वर्षों का परिश्रम, कहीं एक वैमानिक का साहस होता है और कहीं एक मरीज की नई उम्मीद।
2: दादू, मुझे लगता है कि ये कहानी केवल मिधानी की नहीं बल्कि उन सभी लोगों की है जो चुपचाप देश को मजबूत बनाने में लगे रहते हैं।
3: सही कहा बेटा तुमने, और मैं देश के विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा, यदि तुम्हें विज्ञान अच्छा लगता है, यदि तुम्हें नई चीजें सीखने और समस्याओं का समाधान खोजने में आनंद आता है, तो याद रखना, भविष्य का कोई वैज्ञानिक, अभियंता या शोधकर्ता आज किसी विद्यालय की कक्षा में बैठा हो सकता है। हो सकता है अगली पीढ़ी के विमान, रॉकेट या अंतरिक्ष यान के लिए नई धातुएं खोजने वाला वैज्ञानिक आज हमारी ही तरह जिज्ञासु होकर प्रश्न पूछ रहा हो।
2: यानी बड़े सपनों की शुरुआत छोटे छोटे प्रश्नों से होती है।
3: हाँ बेटा, जिज्ञासा ही विज्ञान की पहली सीढ़ी है और परिश्रम उसकी सबसे बड़ी शक्ति।
2: रुकिए, आप बैठिए, मैं देखती हूँ कौन आया है।
3: हाँ बेटा हाँ, जरा पानी का गिलास दे देना।
2: हाँ दादू, ये रहा आपका गिलास। दादू, मेरी दोस्त आई है, मैं थोड़ी देर में नीचे से आती हूँ।
3: अच्छा बेटा, ठीक है।
1: श्रोताओं, आज के इस रोचक सफर में हमने जाना कि मिधानी केवल विशेष धातुओं का निर्माण करने वाला संस्थान नहीं है, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक क्षमता और रक्षा शक्ति का एक महत्वपूर्ण आधार है। यहाँ कार्यरत वैज्ञानिक और अभियंता अपने ज्ञान, शोध और अथक परिश्रम से ऐसी धातुएं विकसित करते हैं जो हमारे लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, युद्धपोतों, अंतरिक्ष अभियानों और अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को नई शक्ति प्रदान करती है। तो आइए हम भी संकल्प लें कि विज्ञान के प्रति हम जिज्ञासा बनाए रखेंगे, प्रश्न पूछेंगे, सीखते रहेंगे और अपने ज्ञान से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का प्रयास करेंगे। तो श्रोताओं, इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ अब हमें दीजिए अनुमति।
3: नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, लेखन था स्वाति गिरी का। मैं थी आपके साथ भगवती सक्सेना
3: और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा।

हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।

0: अरे काका मजा आ गया, क्या बात है। लोकल ट्रेन, अरे काका कितनी ऊंची बिल्डिंग है मुंबई में, बाप रे बाप।
1: हाँ बेटा, मैं इस मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 150 साल पुरानी मुंबई की बात कर रहा हूँ। उस समय ऐसी बिल्डिंग तो नहीं थी, लेकिन इस मुंबई में एक रईस मुसलमान परिवार रहा करता था। अच्छा? और उसमें एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी।
0: अरे काका बदरुद्दीन तैयब जी तो नाम सुना है मैंने।
1: हाँ, जैसा कि तुम जानते हो कि पढ़ाई लिखाई करके वो 16 साल का हुआ और सन 1860 में वो बैरिस्ट्री पास करने इंग्लैंड गया।
0: अच्छा, मुंबई से इंग्लैंड।
1: 150 साल पुराना इंग्लैंड।
2: यार बदरुद्दीन, लगता है हम इंग्लैंड में नहीं यार, हिमालय की वादियों में आ गए। हिमालय की वादियों में।
3: बिल्कुल ठीक कहा यार तुमने।
2: ये यार कहाँ हमारे बम्बई का प्यारा मौसम और कहाँ ये इंग्लैंड की जानलेवा ठंड यार।
3: अरे जनाब, आईने में जाकर अपनी नाक देखिए, ठंड के मारे कैसी टमाटर जैसी लाल हो रही है।
2: अरे हाँ, नाक का जिक्र किया तुमने तो मुझे याद आया। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन डियर।
3: अरे किस बात के लिए भला?
2: अरे मुल्क की और अपने वालदेन की नाक ऊंची करने के लिए।
3: अच्छा अच्छा, समझा। छोड़ो भी अब उस किस्से को।
2: अरे वाह, छोड़ो कैसे, लेक्चर कंपटीशन में अव्वल आए हो अव्वल।
3: अरे वो तो बस यूं ही।
2: जिनकी मादरी जबान अंग्रेजी, उन अंग्रेजों को अंग्रेजी जबान में ही पटकनी दे दी और कहते हैं बस यूं ही। क्या दाए मिया।
3: अरे भाई, इंग्लैंड में रहते हमें 150 साल भी तो हो गया है।
2: तुम कुछ भी कहो बदर, लेकिन कमाल तुमने किया है, केवल 150 साल। अरे सिर्फ 150 साल में अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच, बाप रे बाप, तीन तीन जबानों पर कमाल की पकड़ की है तुमने।
4: भाई वल्लाह।
3: नहीं, कमाल कुछ नहीं यार, बस मन किया सीखने का, मेहनत की और सीख ली।
2: हम तो ना सीख पाए।
0: डेढ़ साल में अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच, तीनों भाषाओं पे कमांड।
1: अरे सल्लू, हमने पहले ही कहा था कि मियां बदरुद्दीन कमाल के होनार थे। अब दिमाग तो अल्लाह के फजल से तेज पाया ही था और दिमाग तेज बना भी रहा, पर नजरें कमजोर हो गई उनकी यार। सो मियां बदरुद्दीन को पढ़ाई बीच में ही छोड़कर मादरे वतन यानी हिंदुस्तान लौटना पड़ा।
3: अच्छा।
1: लेकिन सेहत ठीक होने पर बदरुद्दीन पढ़ाई जारी रखने के खातिर फिर लौट गए इंग्लैंड।
0: अरे वाह, ये हुई ना बात का, ये हुई ना बात।
2: ओहो, वेलकम बैक, वेलकम बैक मियां बदरुद्दीन। कहिए जनाब, सेहत कैसी है?
3: थैंक्स थैंक्स, सेहत तो बिल्कुल उम्दा है। तुम सुनाओ, क्या हाल चाल है यहाँ का?
2: यहाँ भी सब उम्दा ही है। कल ही फिरोज शाह मेहता जी से एक मीटिंग में हिंदुस्तान की मौजूदा हालात पर तकरीर सुनी है।
3: उमेश चंद्र बैनर्जी और वाडिया भी रहे होंगे मीटिंग में, क्यों ठीक है ना?
2: अरे भाई बदरुद्दीन, कल पहली बार मैंने दादा भाई नौरोजी को देखा।
3: हाँ, हाँ।
2: भाई देखकर मैं तो हैरान ही रह गया।
3: मेरे साथ भी बिल्कुल ठीक यही हुआ था।
2: अच्छा?
3: अरे कहने को तो उम्र में 20 साल बड़े हैं मुझसे।
2: अच्छा?
3: पर मिलते हैं तो हम उम्र दोस्त हो जैसे।
2: अरे अच्छा, ये और सुनाओ, मुल्क के हालचाल सुनाओ। तुम तो
3: एक गुलाम मुल्क के जैसे होते हैं वैसे हैं। 1858 के महारानी विक्टोरिया के ऐलान के बाद हिंदुस्तान पर हुकूमत गोरों की हो गई।
2: ठीक कहा भाई, उस दिन फिरोज शाह मेहता जी ने भी अपनी तकरीर में यही कहा था कि महारानी विक्टोरिया अब हिंदुस्तान की भी महारानी हो गई है।
3: कितनी शर्मनाक बात है ये हम सब के लिए।
2: पर यार हम लोग कर भी क्या सकते हैं यहाँ?
3: जो कुछ होना है और जो कुछ करना है वो हमें ही करना होगा। रियासतें और रियासतदार तो महारानी के इस ऐलान से कि अब उनकी रियासतों को अंग्रेज नहीं हड़पेंगे खुश हैं। उनसे उम्मीदें लगाना फिजूल है।
2: अरे भाई, जनता गदर के बाद पहले से ही सहमी हुई है और फिर कौन करेगा?
3: मैंने अभी तो कहा ना तुमसे कि जो कुछ करना है हमें ही करना होगा।
2: यहाँ गोरों के मुल्क में रहते हुए
3: क्या दिक्कत है इसमें? गोरे हजारों मील दूर रहकर हमारे मुल्क में घुसकर हम पर हुकूमत करने की हिमाकत कर सकते हैं, तो हम उन्हीं के मुल्क में घुसकर इस हिमाकत पर उनको सबक सिखाने का काम क्यों नहीं कर सकते?
2: वाह भाई वाह भाई, देख रहा हूं कि तुम्हारे दिल में आजादी का दिया टिमटिमाने लगा है।
3: नौरोजी, बैनर्जी और मेहता जी की जलाई मशाल को दिया तो ना कहो मेरे दोस्त।
2: मुल्क के हालातों से मन में बेचैनी होने लगी है, लेकिन इसका असर हमारी तालीम पर ना हो इसका ख्याल हमें रखना चाहिए।
3: बजा फरमाते हैं जिल्ले इलाही, बाखुदा तालीम बेहतर ढंग से ही ली जाएगी, कोई बेनियाजी ना बरती जाएगी।
4: आमीन
2: सुम्मा आमीन।
4: दरबार की आज की कार्रवाई बर्खास्त। शब बखैर।
0: अरे काका, फिर क्या हुआ?
1: तालीम बेहतर ढंग से हासिल की बदरुद्दीन ने और कानून की पढ़ाई पूरी करके बंबई लौट आए।
0: फिर से बंबई लौट आए?
1: हाँ भाई, वो फिर बकाला शुरू कर दी।
0: अच्छा अच्छा।
5: क्या मैं भीतर आ सकती हूँ?
3: कौन? बेगम लाहौल विलाकुवत, हमारे कमरे में आने के लिए आपको कब से इजाजत की दरकार होने लगी?
5: दूसरे कमरों की बात और है, दफ्तर दफ्तर होता है आखिर। किसी मुवक्किल से बात चल रही हो और हम यूं ही दफ्तर में घुसे चले आए, क्या ये ठीक होगा?
3: मुवक्किल? कह तो आप ऐसे रही हैं जैसे हालात से ना वाकिफ हों। क्या समझे हम इसे कि आप भी हमारा मजाक?
5: तौबा तौबा, हम आपका मजाक उड़ाएंगे भला? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया?
3: अरे आप तो नाहक ही नाराज होने लगी।
5: हमारी नाराजगी बेवजह नहीं थी। खैर छोड़िए।
3: छोड़ दिया। हाँ अब बताइए, मसला क्या है जो आपने दफ्तर की ओर रुख किया?
5: कुछ खास नहीं, बस यूं ही आजकल आप काफी उलझे नजर आते हैं, खासकर तब जब आप अदालत से लौट कर आते हैं। क्या वहाँ कोई परेशानी है?
3: हाँ परेशानी है, लेकिन मेरे अकेले की नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तानी वकीलों की है।
5: भला ऐसी कौन सी परेशानी है?
3: हाई कोर्ट में सभी जज विलायती हैं और वे हिंदुस्तानी वकीलों के मुकाबले विलायती वकीलों को ज्यादा तरजीह देते हैं।
5: ये तो सरासर नाइंसाफी है।
3: हालात तो यहाँ तक खराब है कि तमाम काबिलियत के बावजूद ये म्यूनिसिपैलिटी, रेलवे, डाक्टर और तमाम कंपनियों के मालिक हिंदुस्तानी वकीलों को विलायती वकीलों के मुकाबले कमतर समझते हैं, क्योंकि वो सारी विलायती कंपनियां हैं ना।
5: ओहो, ये तो परेशानी की बात है।
3: परेशानी सहने की भी एक हद होती है। फिरोज शाह मेहता को ही देख लीजिए, आजकल हिम्मत हार कर घर पर बैठे हुए हैं। वाडिया तो उकता कर सब कुछ छोड़ छाड़

0: हाँ तो सल्लू, ऐसा था बद्रुद्दीन का जज्बा मुल्क के लिए और मुल्क वालों के लिए।
1: वाह
0: अपनी लगन, मेहनत, विषय की पकड़, सूझबूझ और सॉलिसिटर भाई कमरुद्दीन की मदद से बद्रुद्दीन ने धीरे धीरे पैर जमा लिए।
1: वाह काका वाह।
2: तो एडवोकेट बदरुद्दीन तैयब जी साहब ने आखिरकार तमाम मुश्किलातों पर फतह पा ही ली।
3: इस फतह में आप बराबरी से शरीक हैं बेगम, मुबारकबाद कबूल करें।
2: या अल्लाह, हम किस तरह शरीक हैं भला? बिना वकालत किए आपकी बीवी होने के नाते वकीलन भी कहलाती हैं जरूर, पर वो अलग बात है।
3: अरे आप साथ रहकर हौसला अफजाई ना करती तो मुमकिन है कि हम भी हालात का सामना ना कर पाते। भाई
2: इतने मक्खन के बाद तो आपकी पेश की हुई मुबारकबाद दोनों हाथों से थामना पड़ेगी, वरना चिकनाई पर खड़ी फिसल कर गिर जाएगी।
3: इस वक्त कौन आ गया दाल भात में? मूसल चंद।
4: अरे भाई बद्रू,
2: बग्घी से तो मूसल चंद नहीं, आपके मित्र गोपी चंद उतर रहे हैं।
3: नाम भले ही गोपी चंद हो, काम तो मूसल चंद का ही किया है।
5: आया भाई।
6: अस्सलाम वालेकुम मियां।
3: वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए।
6: ये मूलचंद कौन है मियां? क्या कोई नया मुवक्किल है?
3: उसे छोड़ो मियां, आप तो ये बताइए आना कैसे हुआ?
6: बस तुम्हारी याद खींच लाई यार दोस्त।
3: बैठो बैठो बैठो, जाए नसीब हुजूर ने याद तो फरमाया।
6: अरे सोचा मुलाकात के साथ दो दो बातें भी हो जाएंगी। अरे हाँ, ये बताओ कि क्या तुम्हें बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉर्ज कैंप बेल के नए फतूर के बारे में पता है कि नहीं है?
3: अब गोरों की तो आदत हो गई है, कोई ना कोई नया गोल खिलाते रहते हैं। अरे अब कौन सा नया गोल खिलाया है इस कैंप बेल ने?
6: अरे सुनोगे तो हैरान रह जाओगे।
3: अच्छा सुना लीजिए अब आप। बस
6: हुजूर, कैंप बेल साहब ने प्रस्ताव रखा है कि वकालत और वकीलों वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया जाए।
3: वल्लाह क्या दिमाग पाया है हुजूर ने, काबिल तारीफ सच में।
6: अरे आपका दिमाग चल गया है हुजूर मेरे ख्याल से तो। अरे वो आपके पेट में लात मारने का प्रस्ताव लेकर आया है और आप हैं तो उसके दिमाग की तारीफ कर रहे हैं, भाई हद है।
3: पहली बात तो ये है कि कोई किसी के पेट पर लात मारने की कुव्वत नहीं रखता।
6: अच्छा,
3: अरे सब अल्लाह मियाँ का दिया हुआ खाते हैं यार। रही दूसरी बात, तो मियाँ बिलाशक दिमाग तो कमाल का पाया है उसने, आप कुछ भी कह लीजिए।
6: अरे मैं कुछ समझा नहीं।
3: मैं समझाता हूँ। देखिए, अंग्रेजों को शुभा है कि हिंदुस्तानी वकील, खासकर इंग्लैंड में पढ़े लिखे बैरिस्टर, उनकी हुकूमत के दुश्मन साबित हो सकते हैं।
6: इससे ज्यादा अहमकाना ख्याल दूसरा हो ही नहीं सकता।
3: ना ना ना ना, इसे अहमकाना ख्याल समझना आपकी भूल है हुजूर। कैंपबेल बहुत तेज दिमाग शख्स है, इसीलिए आने वाले समय के खतरों को वो पहले ही पहचान चुका है।
6: मैं अभी भी कुछ नहीं समझ पाया हूँ यार।
3: देखिए, वकील जनता के हिमायती बनकर जनता को उनके हकों के बारे में जगा सकते हैं।
6: अच्छा
3: ठीक है। बहस मुबाहिसे और तकरीरों में हम वकील ही तो माहिर होते हैं मियाँ।
6: वाकई कमाल का दिमाग पाया पट्टे ने।
3: नमूने के लिए देख लीजिए, बंगाल में जो उमेश चंद्र बनर्जी, मनमोहन घोष और लालचंद घोष कर रहे हैं, तीनों वकील,
6: और यहाँ मुंबई में फिरोज शाह मेहता, तेलंग और खुद आप जनता को जगाने का काम जो कर रहे हैं, तीनों वकील।
3: अब मेरी छोड़िए, मैं कुछ खास नहीं कर पा रहा हूँ।
6: अरे खास ही कर रहे हैं आप जनाब, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जनता के हर आंदोलन के पीछे आप वकीलों का ही तो हाथ है, और किसका है?
3: लगता है मियाँ अंदर करवा गई, मानोगे?
6: अच्छा चलते हैं, खुदा हाफिज।
3: अरे जा रहे हो?
6: अरे
3: अरे तो चाय
6: नहीं नहीं
3: थोड़ा सा
6: बस।
3: अरे
0: हाँ तो सल्लू, देखा तूने?
1: हाँ काका,
0: बद्रुद्दीन सिद्धांत के पक्के और आत्मसम्मानी शख्स थे।
1: ये तो दिखा काका।
0: बहुत गंभीर सौम्य बद्रुद्दीन साहब को किसी किस्म की कोई लत नहीं थी, सिगरेट शराब से कोसो दूर।
1: अच्छा?
0: सारे काम नियम पूर्वक करते और समय के पावन थे। आत्मसम्मान तो जैसे कूट कूट कर भरा था उनमें।
1: वाह।

0: ये मिस्टर पार्सन क्या समझते हैं अपने आप को?
1: क्या हो गया मिस्टर पार्सन को और आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए?
0: अरे नया आया है बम्बई में जज बनकर, इसलिए सोचा कर्टसी विजिट दे आऊं।
1: ठीक किया आपने।
0: पर मिस्टर पार्सन ने कहाँ ठीक किया?
1: आखिर किया क्या उसने?
0: कहने लगा इस वक्त बिजी हूँ।
1: अरे ये तो सरासर बदतमीजी है।
0: वही तो मैं कह रहा हूँ।
1: पता नहीं ऐसे लोगों को क्या देखकर जज बना दिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने।
0: अरे रंग देखकर, गोरा होने से बड़ी और कोई काबिलियत नहीं होती उनकी नजर में।
1: ओह इसीलिए आप इतनी जल्दी चले आए?
0: मैंने भी कह दिया बहुत काम रहते हैं मेरे पास, बहुत बिजी हूँ, जल्दी वहाँ से मैं।
1: ठीक किया आपने।
0: उसे उसकी गलती का एहसास हो गया था शायद, इसीलिए मेरे पीछे पीछे बग्गी तक चला आया और लगा घोड़ों की तारीफ करने, पर मैंने उसकी बातों पर कान नहीं दिया, चला आया वहाँ से मैं।
2: वाह काका, बड़े स्वाभिमानी थे बदरुद्दीन साहब।
3: हाँ सल्लू, ऐसे स्वाभिमानी थे बदरुद्दीन तैयब जी साहब। बकाला धीरे धीरे जमने लगी थी, अब उन्होंने सार्वजनिक कामों में भी खुलकर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सन 1872 में एक नया कानून पास हुआ जिसके तहत 1873 में बम्बई कॉरपोरेशन के कुछ सदस्यों का चुनाव हुआ।
4: अरे बदरुद्दीन साहब, आदाब अर्ज़ है, आइए।
5: आदाब।
4: बदरुद्दीन साहब, सुना है आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं?
5: ठीक सुना है आपने।
4: हमारे लायक कोई काम हो तो बताइए।
5: अरे हम तो सिर्फ खड़े हो रहे हैं मियाँ, सारे काम तो आप लोगों को ही संभालने हैं।
2: अरे इत्मीनान रखिए, माशाल्लाह फतह हमारी होगी।
5: आमीन आमीन।
4: बदर साहब तो इजाजत दीजिए, आज ही से काम में लगना होगा।
3: हाँ तो सल्लू, बम्बई कॉरपोरेशन का चुनाव उन्होंने शानदार तरीके से जीता, फिर 1882 बम्बई व्यवस्थापिका परिषद में नामजद हुए।
2: अरे वाह।
3: पर खराब सेहत होने के कारण इस्तीफा देना पड़ा, पर जब तक रहे तब तक भारतीयों के अधिकारों की जोरदार तरीके से वकालत करते रहे।
2: वाह वाह।
0: बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के सदर होने के नाते एक और अहम जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ पड़ी है।
1: सदर हैं तो जाहिर है कि जिम्मेदारियां भी होंगी ही।
0: ठीक फरमाती हैं आप, पर इस बार एक अलग किस्म की और ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी एसोसिएशन के कंधे पर आ पड़ी है।
1: ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है भला जिसने आपको इतना परेशान किया हुआ है?
0: परेशान नहीं है हम, परंतु जिम्मेदारी तो आखिर जिम्मेदारी होती है ना, जिसे अच्छे से निभाना होता है। एसोसिएशन के झंडे तले इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन भी होगा और चुनाव भी।
1: फिर तो आपकी मसरूफियत आने वाले दिनों में बहुत बढ़ जाएगी।
0: ठीक फरमाती हैं आप।
1: हमारा तो कहना है कि जो भी करना है जरूर करिए, पर पहले खुद की सेहत का ख्याल रखिए।
0: अच्छा अच्छा, आज आपने वो आपकी हमेशा वाली कहावत नहीं दोहराई, क्या है वो? एक से
1: हाँ,
0: क्या
1: एक से सेहत हजार
0: नियामक।
1: हाँ हाँ, उड़ा लीजिए मजाक।
3: इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए खूब धूमधाम से तैयारियां की गईं, पर आखिरी वक्त बदरुद्दीन साहब को किसी काम से कैम्बे जाना पड़ा और वे कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग न ले पाए। दूसरे अधिवेशन में भी वे उपस्थित न रह पाए क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं थी।
1: लीजिए, आ गए आपके दोस्त।
0: आइए आइए, पूरे 3.5 मिनट लेट हैं आप, सुनाइए क्या हाल है?
4: 3 मिनट और 41 सेकंड। खैर हमारे हाल चाल तो ठीक है, पर सुना है अंग्रेजों के ठीक नहीं है।
0: जो सबके हाल खराब किए रहते हैं उनके हाल खराब है क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया?
4: ये पूछो कि क्या नहीं हुआ है, कांग्रेस का गठन हुआ है
0: तो
4: अरे अंग्रेज सरकार फिक्रमंद हो गई है, उन्हें शक होने लगा है कि कांग्रेस आगे चलकर उनके लिए मुसीबत का कारण न बन जाए।
0: अरे इन गोरों को तो हम हिंदुस्तानियों की हर बात पर शक होता है,
4: और इस शक का इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं होता है।
0: अरे इलाज करना किसे है, कांग्रेस के अपने मकसद हैं और वो उन मकसदों के लिए काम करेगी।
4: अरे सुनने में तो और बहुत कुछ आया है।
0: और क्या सुना है आपने?
4: ब्रिटिश गवर्नमेंट उसी पुरानी फूट डालो राज करो वाली नीति चला रही है, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ।
0: 100% सच, 100%।
4: क्या कह रहे हो?
0: लॉर्ड डफरिन बम्बई आकर मुझसे मिलकर गए हैं, दोनों कौमों को बांटने वाली भड़काऊ बातें, बोले कांग्रेस तो हिंदुओं की संस्था है और हम लोग कैसे झांसे में आ गए। देखिए
4: आपने क्या जवाब दिया?
0: हमने साफ साफ कह दिया कि मियां डफरीन साहब आपकी दाल यहां नहीं गलने वाली, और बेहतर तो यही होगा कि इस मकसद से आप कहीं और बात करने न जाएं, अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो।
4: आपकी बात समझ में आई या यूं ही सर के ऊपर से निकल गई?
0: देखो मियां, कुछ तुम्हें 12 साल बाद भी नलकी से बाहर निकालो तो टेढ़ी ही निकलती हैं। और कुछ मर्दूत तो नलकी को भी टेढ़ा कर देती हैं।
4: भैया दुम वाली मिसाल तो खूब दी आपने।
0: कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में सेहत खराब होने की वजह से हम नहीं जा पाए, पर पता चला कि उसमें मुस्लिमों ने भाग नहीं लिया था।
4: हाँ भाई, हमें भी इस बात का पता चला था और सुनकर बहुत अफसोस हुआ था इस पर।
3: कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन का अध्यक्ष सर्वसम्मति से बदरुद्दीन तैयब जी को चुना गया। अध्यक्ष पद से उन्होंने बड़ा प्रभावशाली, ओजस्वी और मर्मस्पर्शी भाषण दिया। जाति के आधार पर आपस में भेदभाव ना करने की सलाह दी और बंटवारे के खतरों से आगाह किया।
0: कौन है भाई, कौन है?
2: अरे साहब, आपकी चिट्ठी आई है पोस्टमैन ने।
0: ओ, आता हूँ, ठहरो एक मिनट, मैं जाता हूँ, तुम बैठो।
3: ले लीजिए।
0: कैसे हो?
5: डियर मिस्टर बदरुद्दीन तैयब, प्लीज मेक ऑफ दिस ऑफ जज।
0: बेगम, बेगम मुबारकबाद। अरे भाई, अदालत में एक जगह खाली है जज की, सरकार ने हमें जज बनने का ऑफर दिया है।
1: क्या? अरे सच में?
0: खत का मजमून तो यही कह रहा है भाई।
1: फिर क्या सोचा है आपने?
0: अब सोचना क्या है, कबूल करेंगे और क्या।
1: क्या अंग्रेज सरकार की मुलाजिमत करेंगे?
0: बेगम, इसका दूसरा पहलू देखिए। इन गोरे जजों के हाथों तो हिंदुस्तानियों को इंसाफ मिलने से रहा, कम से कम एक काला हिंदुस्तानी दूसरे काले हिंदुस्तानियों को इंसाफ तो दिला पाएगा।
1: बात तो एकदम सच है, पर क्या ये मुमकिन होगा?
0: देखिए बेगम, आदमी उसूलों का पक्का बना रहे बस, फिर कुछ नामुमकिन नहीं रहता। किसी ताकत या खतरे से टकरा जाने की ताकत आ जाती है उसमें। कल ही अपना जवाब भिजवा दूंगा।
1: कल क्यों, आज क्यों नहीं? भूल गए पुरानी सीख, काल करे सो आज कर।
2: अरे वाह, तो काका बदरुद्दीन तैयब जी जज बन गए।
3: और थोड़े ही समय में बदरुद्दीन तैयब जी साहब जज के रूप में खासे मशहूर हो गए।
2: वो तो होना ही था काका। क्या बात है।
3: काबिलियत और स्वतंत्र विचारों के दम पर उन्होंने अच्छे अच्छों को कायल कर दिया। उनकी निष्पक्षता और न्याय प्रियता की चर्चा हर कहीं हर कोई करता था।
2: वाह।
4: अरे कमाल कर दिया बदर साहब, आपने तो वाकई कमाल कर दिया। काफी लोगों की निगाहें लगी थी इस मसले पर, किस पेचीदा मामले पर, देखें जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं।
0: हमें भी इस बात का भली भांति एहसास था।
4: अच्छा, ऐसे फैसले करते समय कुछ घबराहट होती है क्या?
0: यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं होता।
4: अगर हम आपकी जगह होते तो हमें तो घबराहट होती, क्यों भाई?
0: हमारे ख्याल से एक बात बहुत साफ होनी चाहिए हर जज के दिमाग में।
4: और वो क्या है?
0: यही कि इंसाफ केवल कानून की किताबों में ढूंढने से नहीं मिलता, क्योंकि उनमें केवल दफाएं और उन दफाओं में दी जाने वाली सजाएं होती हैं बस।
4: तो इंसाफ कहां रहता है?
0: आपके साफ दिलो दिमाग में रहता है। दिल की गहराई से आवाज उठे और उसकी ताईद आपका दिमाग भी करे तो समझिए कि आप इंसाफ की राह पर हैं।
3: वकालत और फिर जज का काम करने के अलावा बदरुद्दीन साहब ने राजनीति, शिक्षा और समाज सुधार के कामों को भी बखूबी किया।
2: अच्छा।
3: जज रहते हुए भी उनकी इजलास में एक बार लोकमान्य तिलक की जमानत का मामला भी आया।
2: अरे वाह। अच्छा। लोकमान्य तिलक।
3: हाँ सुनो, तो किस्सा कुछ यूं था कि जून 1897 में रैंड नाम के एक अंग्रेज की हत्या कर दी गई।
4: आदावर्जे बदर साहब, और क्या हाल चाल है?
0: आदावर्जे, आजकल तो ये रैंड मर्डर का मामला बहुत गर्म है
4: भाई। पता चला है कि अंग्रेज बहुत बौखलाए हुए हैं। हुकूमत के खिलाफ इसे साजिश समझ रहे हैं।
0: ठीक कहा आपने, ये अशांति और उत्तेजना फैलाने के इल्जाम में सरकार ने तिलक के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है।
4: लेकिन ये रैंड मर्डर से तिलक जी का क्या संबंध?
0: बात
5: आपको समझ में आ गई है, पर सरकार को नहीं मियां।
4: मामला क्या है?
0: अरे देखिए, तिलक एक अखबार निकालते हैं, केसरी, पता है ना आपको?
4: जी जी जी।
0: तिलक ने शिवाजी मेले में शिवाजी द्वारा की हत्या को उचित ठहराने वाले भाषण दिए, हाँ, और यही भाषण केसरी में छाप दिए। माना मिल गया सरकार को।
4: सरकार तो नाइंसाफियों की हदें पार कर रही है।
0: तिलक की जमानत की दरखास्त 2 बार खारिज की जा चुकी है। तीसरी बार मेरे सामने मेरी अदालत में जमानत के लिए दरखास्त दाखिल की गई है, मालूम है आपको?
4: तीसरी बार? अरे साहब, आपको तो कोई परेशानी नहीं होगी ना?
5: बिल्कुल नहीं, कल जमानत की दरखास्त पर फैसला सुनाना है।
3: और अगले रोज फैसला सुनाया बदरुद्दीन तैयब जी साहब ने।
6: ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर।
0: तिलक एक सज्जन और विद्वान पुरुष हैं, लिहाजा सुनवाई के वक्त वे अदालत नहीं पहुंचेंगे, ऐसा शक करने की कोई वजह नहीं बनती। जमानत मंजूर न होने की दशा में इंसाफ का गला घुट जाएगा, क्योंकि मुमकिन है कि 1 महीने बाद वे बेगुनाह साबित हो जाएं। इसीलिए जमानत मंजूर करना ही न्याय संगत होगा।
3: निष्पक्ष न्यायाधीश के रूप में बदरुद्दीन की ऐसी धाक थी सल्लू कि इस फैसले के खिलाफ बोलने का साहस किसी को ना हुआ, अंग्रेजों को भी नहीं हुआ। इस महान देशभक्त और समाज सुधारक ने 11 साल जज के रूप में गुजारे और 19 अगस्त 1906 को इंग्लैंड में हार्ट फेल से वे गुजर गए। सारा देश शोक में डूब गया। हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं भोपाल के रविंद्र भवन में, जहां बुधवार की शाम स्वर उत्सव कार्यक्रम के तहत कलाकारों ने अपने गायन की दिलकश प्रस्तुतियां दी।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार ख्वाजा अल्ताफ हुसैन,

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद के भारत भ्रमण के अंतिम पड़ाव के रूप में वे दक्षिण भारत के केरल राज्य में पहुंचे। वहां वे प्रोफेसर सुंदरराम अय्यर के घर पर 9 दिन ठहरे थे। सुंदरराम जी के लेखन से उन दिनों की घटनावली हमें मालूम पड़ती है। सुंदरराम जी वहां के राजकुमार मार्तंड वर्मा के गृह शिक्षक थे। दूसरे ही दिन सुंदरराम जी स्वामी जी को लेकर राजकुमार से मिलने गए। बातों के क्रम में स्वामी जी ने बताया कि भ्रमण के दौरान अनेक देशी राजाओं के साथ उनकी भेंट हुई थी और वे अनेक राज दरबारों में भी उपस्थित थे। ये सुनकर राजकुमार ने पूछा,
1: स्वामी जी, आप तो इतने राजा महाराजाओं से मिले हैं, इनमें से सबसे अच्छे राजा कौन है?
2: मैं जितने राज्यों में गया हूँ उन सब में बड़ौदा के गायकवाड़ की राज्य संचालन क्षमता, देश प्रेम, उत्साह और दूरदर्शिता ने मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया है। छोटे से खेतड़ी राज्य के राजा से भी परिचय हुआ और वहां के राजा के उत्कृष्ट गुणों को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। परंतु उसके बाद जितना दक्षिण की ओर आगे बढ़ा हूँ, राजाओं और सामंत राजकुमारों के गुणों और क्षमता में क्रमशः कमी होती दीख पड़ी है।
3: इसके उपरांत स्वामी जी ने राजकुमार से पूछा,
2: राजकुमार, आप तो अभी विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है और आप आगे क्या करना चाहते हैं?
1: मैं राज्य के लोगों से घनिष्ठ रूप से मिलना जुलना चाहता हूँ, उन लोगों के कल्याण साधन के लिए यथा साध्य करूंगा, यही मेरी इच्छा है।
4: एक दिन उन्होंने कहा, मानव के सनातन विश्वास पर कुछ लोग विज्ञान का सहारा लेकर मनमाने तरीके से प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा,
2: यदि धर्म के क्षेत्र में अंधविश्वास है तो विज्ञान के क्षेत्र में भी यथेष्ट अंधविश्वास है। विश्व प्रपंच के संबंध में जो यांत्रिक व्याख्या या विकासवादी व्याख्या की जाती है, ये दोनों समुचित और संतोषजनक नहीं पाई गई हैं। फिर भी ऐसे अनेक लोग हैं जिन्हें लगता है कि विश्व के सारे रहस्य उद्घाटित हो गए हैं। पाश्चात्य मनोविज्ञान मानव प्रकृति के छुपे हुए पक्षों और उनकी रीति नीति की थाह पाने में बुरी तरह विफल रहा है। पाश्चात्य विज्ञान की गति जहां रुक गई है, वहां भारतीय मनोविज्ञान आगे बढ़कर मानव सत्ता की उच्चतर अवस्था और सहानुभूति के क्षेत्र में जो नियम कार्य करते रही हैं, उन्हें किस प्रकार वास्तविक जीवन में उतारना होगा वो समझा देता है, दिखा देता है और सिखा देता है।
4: महाराज, विषय को थोड़ा विस्तार से समझाइए।
2: भारतीय ऋषियों महात्माओं सनातन का धर्म ही मानव मन के गुप्त एवं सूक्ष्म क्रियाकलापों का तत्व समझ सकता है और उसकी गलत वासनाओं और लालसाओं पर विजय प्राप्त कर सत्य का अनुभव करा सकता है। अन्य सारे विषय माया हैं और उसी के पास प्रकाश है, इसे समझा देता है।
0: उन्होंने और भी कहा था कि भारत के सभी वर्गों के लोगों को तथा नारियों को भी संस्कृत पढ़ना चाहिए ताकि वे वेद उपनिषद वेदांत पढ़ सकें, समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। इस तरह वे स्वयं ही अपनी सभी समस्याओं का निराकरण कर सकेंगे।
4: स्वामी जी के ठहरने के तीसरे या चौथे दिन मैंने उनके अनुरोध पर मद्रास के महालेखापाल के सहायक श्री मन्मथनाथ भट्टाचार्य जी की खोज की। तब से स्वामी जी सुबह का समय भट्टाचार्य के घर पर ही व्यतीत किया करते एवं भोजन भी वहीं करते। एक दिन जब मैंने अनुरोध किया कि वे सारा समय भट्टाचार्य को ही देते हैं, तब उन्होंने एक ऐसा उत्तर दिया जो स्वामी जी के मुख से ही शोभा देता है। उन्होंने कहा कि भट्टाचार्य उनके विद्यालय या महाविद्यालय के सहपाठी थे और कलकत्ता संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य पंडित श्री महेश्वर चंद्र न्याय रत्न के सुपुत्र होने के नाते स्वामी जी पर उनका विशेष अधिकार है।
3: श्री सुंदरराम ने अपने संस्मरण में और भी बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख किया है।
4: एक बार श्री पिराबी पेरुमल पिल्लई नामक त्रिवेंद्रम के हुजूर ऑफिस के एक सहायक दीवान या पेशवर ने स्वामी जी को बातचीत में काफी देर तक रोके रखकर उन्हें अपने बंगाली मित्र श्री भट्टाचार्य के घर नहीं जाने दिया। वो ये पता करने आए थे कि स्वामी जी भारतीय उपासना पद्धति और धर्म के संबंध में कितना क्या जानते हैं। स्वामी जी ने ललित विस्तार से बुद्ध के वैराग्य के संबंध में कई श्लोकों का ऐसे मीठे स्वर में पाठ किया कि आगंतुक का हृदय विगलित हो गया। स्वामी जी ने तब बुद्ध के वैराग्य, सत्या अनुसंधान की आकांक्षा, अंत में सत्य की उपलब्धि और 45 वर्षों तक जाति वर्ण का बिना विचार किए स्त्री पुरुष का भेद भूलकर उस सत्य के प्रचार के विषय में बोला। इस प्रसंग में प्रायः एक घंटा बीत गया। बातचीत के अंत में पिल्लई साहब भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि वे कम से कम उतनी देर के लिए सांसारिक तुच्छ और मिथ्या विषयों से ऊपर उठ गए थे। विदा के समय उन्होंने बारंबार भक्तिभाव से भरकर साष्टांग प्रणाम किया और वे कह गए कि उन्होंने जीवन में कभी उनकी तरह कोई व्यक्ति नहीं देखा और इस उपदेश की बात वे कभी भूलेंगे नहीं।
0: सुंदर राम ने और भी कहा था,
4: एक बार मैंने उनसे एक सार्वजनिक व्याख्यान देने का आग्रह किया। इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले कभी भी सार्वजनिक व्याख्यान नहीं दिया है और ऐसा व्याख्यान देने पर वे निश्चय ही दयनीय रूप से विफल और हास्यास्पद होंगे। तब मैंने पूछा कि यदि सच है तो वे शिकागो धर्म महासभा के गणमान्य प्रबुद्ध व्यक्तियों के समक्ष कैसे खड़े हो सकेंगे। मैंने पहले ही उनसे सुन रखा था कि मैसूर के महाराजा ने उनसे सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में वहां उपस्थित रहने का अनुरोध किया। स्वामी जी ने मेरे प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया कि मुझे लगा था कि ये टाल मटोल कर देने के सिवाय और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा,
2: परमेश्वर की यदि यही इच्छा है कि मुझे उनका प्रतिनिधि बनना होगा और यदि उन्हें मेरे माध्यम से ही सत्य एवं पवित्र जीवन यापन के लिए कार्य करा लेना होगा तो परमेश्वर ही मुझे उपयुक्त शक्ति देंगे।
4: मैंने उन्हें तभी बता दिया था कि मैं ऐसी दैवीय सहायता की संभावना में विश्वास नहीं करता। उसी क्षण उन्होंने हथौड़े की चोट की भांति तीक्ष्ण भाषा में मेरी भर्त्सना करते हुए कहा,
2: हालांकि आप बाहर से आचार निष्ठा और बातचीत में कट्टर हिंदू हैं, परंतु भीतर से संदेहवादी, क्योंकि भगवान की कृपा से मैं संसार के कल्याण साधन में कहां तक समर्थ हो सकूंगा, इस विषय में आपको संदेह है।
0: सुंदरराम जी आगे लिखते हैं,
4: वे जब तक हम लोगों के घर में थे सदैव हम लोगों के हृदय को उन्होंने विमोहित रखा था। हर एक के प्रति उनका व्यवहार अत्यंत मधुर, दोस्ताना और सौजन्यमय था। मेरे लड़के अक्सर उनके साथ रहा करते और एक तो अब भी बात बात में उनके विचारों को उद्धृत करता है। हम लोगों के घर में उनके आगमन एवं उनके आकर्षक हाव भाव और बोल चाल उसे अत्यंत पूरा याद है। स्वामी जी ने तमिल भाषा के अनेक शब्द सीख लिए थे और हम लोगों के रसोइये से तमिल में बोलकर वो आनंदित होते थे। उनके चले जाने पर हम लोगों को बहुत दिनों तक ऐसा लगता था जैसे हम लोगों के घर का प्रकाश ही बुझ गया है।
3: सुंदरराम जी संस्मरण के अंत में लिखते हैं कि स्वामी जी अपने बंगाली साथी श्री भट्टाचार्य के साथ 22 दिसंबर 1892 ईस्वी में जब मेरे घर से जाने वाले थे उसी समय एक घटना हुई जिसका उल्लेख करना आवश्यक है। आचार्य एवं जन समाज में धार्मिक पंडित और विनयी के रूप में परिचित श्री वंचीश्वर शास्त्री श्रावणकोर के प्रथम राजकुमार के आचार्य थे और मेरे अनुरोध पर राजकुमार ने उन्हें मेरे पुत्र का संस्कृत अध्यापक नियुक्त कर दिया था। स्वामी जी के इतने दिनों तक मेरे घर में रुकने के दौरान एक भी शास्त्री वाहन नहीं आए। अब ठीक यात्रा के समय मेरे पास आकर अनुनय विनय करने लगे कि स्वामी जी से थोड़ी देर के लिए, यहाँ तक कि 2-4 मिनट के लिए ही मैं बातचीत करा दूं। उन्हें ये समाचार तो मिला था कि उत्तर भारत से एक परम विद्वान साधु आकर मेरे घर में रह रहे हैं, तथापि बीमारी के कारण वे मिलने नहीं आ सके थे। स्वामी जी और भट्टाचार्य उस समय घोड़ा गाड़ी से जाने के लिए सीढ़ियों से उतर ही रहे थे। स्वामी जी को पंडित का अनुरोध बताने पर उन्होंने पंडित से 7-8 मिनट तक संस्कृत में बातचीत की। उन दिनों मुझे संस्कृत का ज्ञान नहीं था, अतएव उन लोगों के आलोच्य विषय को मैं समझ नहीं सका। बाद में पंडित जी ने कहा था कि आलोच्य विषय था व्याकरण की जटिल एवं तर्क बहुल समस्या, किंतु उतने थोड़े समय में भी स्वामी जी ने अपना व्याकरण ज्ञान और संस्कृत भाषा में अपनी दखल दिखाई थी। सन 1892 ईस्वी के अंत में स्वामी जी त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी गए। समुद्र शार्क नामक खतरनाक समुद्री मछलियों से भरा था। नाव से समुद्र पार करके विशाल शिलाखंड तक जाने के लिए माझी ने एक आना मांगा, पर स्वामी जी के पास एक फूटी कौड़ी तक

0: वे लगभग समस्त भारत भूमि का पर्यटन करके आए थे और भारत की वर्तमान दुर्दशा वे खुद ही देखकर आए थे। उनका मन अशांत हो उठा। रात भर के चिंतन ने दूसरों के लिए जीने वाले सन्यासी को एक सुधारक, महान संगठनकर्ता और शक्तिमान देशनायक में रूपांतरित कर दिया।
1: उन्होंने समझ लिया कि धर्म ही भारत की अगणित संतानों का मेरुदंड है। उनके शांत समाहित विशुद्ध चित्त में यही वाणी ध्वनित हुई।
2: जिस प्रगाढ़ आध्यात्मिक अनुभूति के प्रभाव से भारतवर्ष एक दिन विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न धर्मों की जन्मभूमि और मिलन स्थल में परिणत हुआ था, एकमात्र उसी अनुभूति के बल पर भारत का पुनः उत्थान और पुनः प्रतिष्ठा संभव है।
0: उन्होंने उन्नति और अवनति के दोनों चित्रों को मिलाकर समझा कि भारत की दुर्गति का कारण यही है कि सनातन धर्म का जीवन में कहीं भी सक्रिय भाव से प्रयोग नहीं हुआ है। धर्म यथार्थ रूप में पालन कर और जीवन में उसे स्थापित कर कोई जाति कभी भी अधःपतित नहीं हुई, बल्कि इतिहास से ज्ञात होता है कि जो देश सफलता पाने में समर्थ हुए हैं उनमें सक्रिय धर्म ही उनकी श्रेष्ठतम शक्ति थी।
1: भारत की दरिद्र जनता के दुख दरिद्र के साथ समान सर में बंधा उनका हृदय रो उठा। वे भारत की अवहेलित निम्न जातियों के साथ एकाकार हो गए। उन लोगों का अपमान उनका अपमान था। धर्म के संरक्षक ही युगों से जनता को पैरों तले दबाकर रखना चाहते हैं, इस बात को सोचकर वे दुखी हो उठे। उनका चिंतन कितना गहन था उसका परिचय उनके लिखे एक पत्र में पाया जाता है। उन्होंने लिखा था,
2: ये सब देखकर, खासकर देश में गरीबी और अज्ञानता को देखकर मुझे नींद नहीं आती। मैंने एक योजना सोची तथा उसे कार्यान्वित करने का मैंने दृढ़ संकल्प किया। कन्याकुमारी में माता कुमारी के मंदिर में बैठकर, भारत की अंतिम चट्टान पर बैठकर मैंने सोचा कि भारत में कितने सन्यासी घूमते फिरते हैं और लोगों को दर्शन शास्त्र की शिक्षा देते हैं। ये सब निरा पागलपन है। क्या हमारे गुरुदेव नहीं कहा करते थे कि खाली पेट से धर्म नहीं होता? वे लोग जो जानवरों सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसका कारण उनका अज्ञान है। संभ्रांतों ने युग युग से उनका खून चूसकर पिया है और उन्हें अपने पैरों से कुचला है। भारत के लोग भला धन देंगे, इसलिए मैं अमेरिका आया हूं। स्वयं धन कमाऊंगा और तब देश लौटकर अपने जीवन के इस एकमात्र उद्देश्य की सिद्धि के लिए अपना शेष जीवन निछावर कर दूंगा।
1: त्याग और सेवा के माध्यम से उनकी कार्य प्रणाली तैयार हो गई। धर्म की निंदा न कर उन्होंने उसे देश के मर्म स्थल में पुनः प्रतिष्ठित देखना चाहा था। शिक्षा का विस्तार, सर्वहारा जाति का अभ्युत्थान और दारिद्र का नाश। इसके लिए वे अमेरिका जाना चाहते थे। वहां भारत के सनातन धर्म के प्रचार के साथ साथ भारतवासियों के लिए धन संग्रह भी करना चाहते थे। वे भारत की आध्यात्मिक संपदा पाश्चात्य जगत में वितरण कर उसी के विनिमय के रूप में अर्थ लाभ करने की आशा रखते थे। ये उनकी परिकल्पना थी। उन्होंने ये भी चाहा था कि पश्चिम के कर्म के साथ पूर्व के भगवत ध्यान का मिलन कराना होगा।
0: इसके बाद सन्यासी हाथ में दंड कमंडल लेकर पैदल ही रामनाथ की ओर चल पड़े। वहां पर रामनाथ के राजा श्री भास्कर सेतुपति से उनकी मुलाकात हुई। स्वामी जी राजा के नाम से एक परिचय पत्र लाए थे। भारतीय राजाओं में वे अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान और धार्मिक थे। स्वामी जी के गुणों से मुग्ध होकर उन्होंने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। राजा के समक्ष स्वामी जी ने भारतीय जीवन की तत्कालीन समस्याओं एवं उनके समाधान के बारे में चर्चा की। भारतीय धर्म की महिमा एवं पाश्चात्य देशों में उसके प्रचार आदि की संभावना की बातें भी कही। सब कुछ सुनकर सेतुपति ने उन्हें शिकागो धर्म सभा में सम्मिलित होने के लिए बार बार अनुरोध किया एवं आर्थिक सहायता करने की बात भी कही।
3: स्वामी जी, शिकागो जरूर जाइए, मैं यथा साध्य आपकी मदद करूंगा। अरे, आपके जाने से संपूर्ण विश्व की निगाहें भारतीय आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होंगी और आपके कार्य का मार्ग भी सुगम होगा। ऐसा मौका हमेशा नहीं मिलता। कहिए, आप जाएंगे ना?
2: मेरी भी इच्छा जाने की है, पर भगवान की जैसी इच्छा होगी वही करूंगा। फिलहाल तो मैं रामेश्वरम जाना चाहता हूँ, वहीं जाऊंगा।
1: और राजा से विदा लेकर वे रामेश्वरम की ओर चल पड़े। रामेश्वरम दक्षिण भारत की वाराणसी कहलाता है। वहां के मंदिर प्रांगण के चारों किनारे निर्मित बड़े बड़े बरामदे शिल्प कार्य से सज्जित हैं। कहते हैं लंका विजय कर लौटते समय श्री रामचंद्र ने यहाँ शिव मंदिर की स्थापना कर देवाधिदेव महादेव की आराधना की थी। यहाँ शिव दर्शन और पूजा समाप्त कर स्वामी जी मद्रास की ओर चले।
0: इस समय सन 1893 प्रारंभ हो गया था। ये वर्ष स्वामी जी के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण का वर्ष रहा। इसी वर्ष उन्होंने 30 वर्ष की उम्र पार कर अपने 31वें वर्ष में प्रवेश किया।
1: स्वामी जी मद्रास से मदुरई होकर पौंडिचेरी आए। वहाँ उनके पूर्व परिचित मन्मथ बाबू कार्यवश आए हुए थे। दोनों कई दिनों तक साथ साथ रहे। वहाँ एक दिन एक प्राचीन पंथी पंडित से धर्म और समाज सुधार विषय पर स्वामी जी का घोर तर्क वितर्क हो गया। संकीर्ण हृदय वाले पंडित की बातें स्वामी जी के कानों में शूल की भांति कष्टदायक लग रही थी। क्रमशः समुद्र यात्रा की बात चल पड़ी। पंडित ने जब जाना कि स्वामी जी समुद्र यात्रा करना चाहते हैं तो वे भीषण नाराज होकर मुंह बनाकर कदापि न अर्थात कभी नहीं कहते रहे। अंत में स्वामी जी ने कहा,
2: बंधुवर आप कहते क्या हैं? प्रत्येक भारतवासी का तो यही परम कर्तव्य है कि धर्म तत्व की परीक्षा कर देखे। ऐसा करने के लिए हम लोगों को अतीत के संकीर्ण गर्त से बाहर निकलना होगा और बाहर की दुनिया किस प्रकार वर्तमान समय में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही है ये देखना होगा। और ऐसा करने पर यदि हम ये देखें कि यहाँ अनेकों युक्तिहीन परंपरागत आचार हैं जो हम लोगों के जीवन की उन्नति या दार्शनिक विचारों के प्रतिकूल हैं, तो निश्चय ही समय आ गया है जब इन सब का त्याग करने के लिए आगे बढ़ना होगा।
0: स्वामी जी बार बार यही बात समझाना चाहते थे कि सर्वहारा जन समाज में शिक्षा दान कर सामाजिक समता की बात का प्रचार करना होगा, पुरोहितों के अत्याचार को दूर करना होगा और जाति प्रथा की कुरूपता और धर्म के विकृत प्रयोग के फलस्वरूप जातीय जीवन में जो उथल पुथल आ गई है उसे दूर करना होगा। गरीब जातियों की उन्नति के लिए तत्पर होना उच्च वर्ण का आवश्यक कर्तव्य है।
1: अलवर की भांति मद्रास में भी स्वामी जी की गुरु भावना कमोबेश अभिव्यक्त हुई थी। अलवर में मुख्य रूप से धर्म चर्चा होती थी, भक्ति की चर्चा होती थी, किंतु मद्रास में उनके विराट व्यक्तित्व का विकास हुआ जो जन समूह के उत्थान के लिए नेतृत्व ग्रहण कर रहा था।
0: एक दिन स्वामी जी ऊंचे आध्यात्मिक तत्वों की विवेचना कर रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति ने प्रश्न किया,
4: स्वामी जी वेदांतवादी होने पर भी हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं?
2: कारण हमारे देश में हिमालय है। हमारा देश इतना प्राकृतिक सौंदर्य और गंभीर से परिपूर्ण है कि ईश्वर की आश्चर्यमय रचनाओं के दर्शन से मुग्ध भारतवासी इन दृश्यमान वस्तुओं को भगवत चिंतन के प्रेरणा के रूप में ग्रहण करते हैं, समझे?
1: एक बार की बात है, एक पंडित ने स्वामी जी से पूछा,
5: समयाभाव के कारण त्रिसंध्या, गायत्री जप या संध्या वंदन आदि अगर ना कर पाए तो कोई हर्ज है क्या?
2: वे सारे विराट पुरुष, वे सारे प्राचीन ऋषि जो इतने बड़े थे कि मिट्टी पर पांव रखे बिना देश विदेश लांग जाते थे, जिनकी बातों का मात्र क्षण भर चिंतन करने पर आपकी तरह के लोग अपने को शुद्र कीट पतंग छोड़कर और कुछ नहीं सोच सकते, उन लोगों तक को समय था महाशय और आपको नहीं है।
0: उसी बैठक में एक पश्चिमी व्यक्ति ने स्वामी जी से कहा,
4: आप बेकार ही ये सब उपदेश दे रहे हैं, आपको क्या उन वैदिक ऋषियों की बातें सही लगती हैं? मुझे तो निरर्थक लगते हैं।
0: स्वामी जी कुछ देर तक धैर्य पूर्वक उनकी बातों को सुनते रहे, फिर गरज कर बोले,
2: आप किस साहस से पूर्वजों की इस प्रकार निंदा कर सकते हैं? अल्प विद्या भयंकारी, क्या आपको ऋषियों द्वारा आविष्कृत विज्ञान का ज्ञान मालूम है? और वहां केवल पढ़कर ही क्या आपने देखा है कि वेदों में क्या लिखा है? ऋषिगण वहां खड़े होकर समस्त विरोधों का सामना करने को प्रस्तुत हैं। प्रतिस्पर्धा करने का साहस है तो आगे बढ़िए।
0: वे सज्जन चुपचाप वहां से निकल गए। अविराम वाद विवाद विचार विवेचना से हुई थकावट को दूर करने के लिए वे पांडिचेरी में समुद्र तट पर शाम को घूमने निकल पड़ते। एक दिन टहलते समय उन्होंने देखा कि कुछ दरिद्र स्त्रियां समुद्र में मछली पकड़ने की कोशिश कर रही हैं और उनके नंगे दुबले बच्चे कमर तक पानी में खड़े होकर अपनी माँ को कार्य में मदद दे रहे हैं। ये देखकर उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उन्होंने खेद पूर्वक कहा,
2: हे भगवान, इन अभागों को जन्म क्यों देते हो? मेरे लिए तो ये दृश्य असहनीय है। हे भगवान, ये कितने दिनों तक चलेगा? कितने दिनों तक?
0: ऐसा था स्वामी जी का कोमल चित्त।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें, गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें, तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।